ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਤ ਪਾਏ ਕੈਦ ਕੈ ਕਾਪੂਠਾ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु छंछरु आहे, जून महीने जी 20 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। प्रोग्राम जा तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देर में तव्हां भगत कंवर राम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ 6:25 ते तबसरो पेश कयो वेंदो। तंहिंखां पोइ 6:41 ते तव्हां नाटक जो लुत्फ़ माणींदा, जंहिंजो अनवान आहे पंहिंजो कुतो।

प्रोग्राम जे आखिर में खास खास खबरों नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधो भगत कंवरराम साहब खे।

नाम प्रकट कवराम साबके बुद्धि रहा हुआ हेयर आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हेयर पेश आए तबसरो प्रधानमंत्री विवा टेक समिट में शिरकत कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2026 ते पेरिस जो दौरो कयो एवियन में G7 समिट में शिरकत करण का पोए दितरफी गालियों ला शिरकत कई श्री मोदी यूरोप के सब का वडे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप समिट विवा टेक में शिरकत कई प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में भारतीय लोकल के पण खिताब कयो फ्रांसीसी राजधानी में पहुंचण ते प्रधानमंत्री जी भारतीय बिरादरी जे मेंबरन पारा उत्साह ए गर्मजोशी से आजिया कई हुई सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी भारत जे डायस्पोरा जी सारा कई उनन जे गर्मजोश स्वागत ए भारत ए फ्रांस के वेझो आणण जे कोशिशन लाए उन जिक्र कयो ते भारत फ्रांस पार्टनरशिप असन जे प्लैनेट जी तरक्की ला अहम आहे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी संगत में विवा टेक 2026 में पेरिस में हिस्सो वरतो टेक्नोलॉजी कारोबारी स्टार्टअप्स सीड़पकार ए कारोबारी अगवान जे गडजानी के खिताब कंदे प्रधानमंत्री मोदी भारत जे इंसान

आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऑन एयर मोबाइल ऐप

0: हींअर पेश आहे नाटक पंहिंजो कुतो। इन प्रोग्राम तहत तव्हां इन पंहिंजो कुतो नाटक जो लुत्फ़ वठंदा। अचो त ॿुधूं इन नाटक खे।
1: लक्ष्मी, तूं त बसि अर्जी वए, रमेश अचण जो वक़्तु थी वए ऐं तूं अञा तयारी कोन थी।
2: मूंखे तयार थी करे करिणो मुछाए, हू जंहिंखे ॾिसां था अथनि सां त अञा तयारी कोन थी आहे।
1: छा मीना अञा तयार कोन थी आहे? हे भॻवान, हीअ छोकिरी आहे या छा आहे? ख़बर नाहे हिन खे अञा छा थी वियो।
2: थी वरी छा वियो अथसि? कॉलेज जी हवा लॻी अथसि, कॉलेज जी अञा पढ़ायोसि। मां त पंहिंजी धीअ खे पीअ पाढ़ींदुसि, एम ए पाढ़ींदुसि, पढ़ायोसि न अञा पढ़ायोसि।
1: मीना, ओ पुट मीना।
3: जी दादा।
1: मीना पुट, तूं हेॾां थी अचे?
3: अचां पई दादा।
1: तूं वरी छो बि चई? तूं वरी पंहिंजो कमु कर, मां थो पंहिंजे पुट खे सम्झायां। हाणे भलो वञ बि साईं।
2: वञा त पई, थोरो ई थो कमु थिए त सॼो घर था खणी मथे ते खणो।
1: चङो चङो, तूं वरी आंगण में बीह, न त घर सुधो तूं न मथे ते चढ़ी वञी। पर हाणे वञ पई।
4: दादा, तव्हां सॾु कयो?
1: हा पुट, ऐं छा तूं अञा हथ में न धोतो आहे?
4: दादा, हथ में त मां सुबुह जो ई धोई छॾियो हो।
1: मुंहिंजो मतिलबु आहे त तूं अञा तयारु कोन थी।
4: तयारु छो दादा?
1: तूं त ईअं थी ॻाल्हाए ॼण कुझु ॼाणे ई कोन। ॾिस पुट, रमेश ॾाढो सुठो छोकिरो आहे, ॾिसण में ठाहुको थो लॻे ऐं सुरक्षो बि आहे। अहिड़ा छोकिरा ॾाढो ॾुखिया मिलंदा आहिनि। जेकॾहिं हीउ वाधन मां निकिरी वियो त ॾोह खणी ॻोल्हण सां ॾाढो छोकिरो कोन मिलंदो। छा तूं रोअण में लॻी वई? छा तोखे माइट पसंदि कोन्हे? मीना, मीना पुट,
4: इहा ॻाल्हि कोन्हे।
1: इहा ॻाल्हि कोन्हे, सुणी छो थी? पुट मीना, मां तोखे हूंदो ॾिसी सही कोन सघंदुसि। मुंहिंजा सुठा वक़्तु आहे, भुल हलो पुट नाच। हा हा, ॿुधाए, तूं मूंखे पंहिंजे मन जी ॻाल्हि ॿुधाए। जेकॾहिं तोखे हीउ छोकिरो पसंदि आहे त मां हुनखे साफ़ इनकार करे छॾींदुसि। रामो, डॉक्टर साहब अची वियो।

0: misspellen. Total,
1: Weil das ne? Meinen Mann mit der Tugismutter.
0: Das mit der Wahrheit, das bin ich alle. पर बोल मम्मी की कोशिश तो करें कुछ
1: हाँ बिना कोशिश से तो दुनिया में कोई काम थी ना सर मैं
0: तो भी मैं पहले भाव के चौंधिस इस पत्ता खुलें का पहले तुम है तो बोल ये सब ना दिस अरे क्या कुछ सोचे लगा क्या सोचे रहा है
1: तो जी माँ सोचे रहा है तो तुम्हारे विचार तुम हम लोग सर हैं
0: जी कुछ ना थोड़ा हाथ में दीजिए ऐसे कॉप के लिए तो
1: नहीं
0: ना कॉप खाली हो हाथ रमेश बाबू अस्पताल खोलने जो तो आप पकड़ लाते थे रहे ना
1: जी अगर तुम तो पकड़े हम तो आज इतने दुखी हो गए
0: पर तुम ये दुखी हो तो हल करने जो रास्ता बोलो चले हो ना
1: सोचो था तुम पको को नहीं
0: जी कहाँ के एतराज में हो जी तो मुझे ही बुदाई दिसो ना माँ पेंजी नंदे भाई ने तो ये ही सोच रही है
1: तो मुझे ख्याल है तुम रास्ता ना पूछो जखम तुम रास्ता कामयाब थे तो जाने उन्हें मुखी खातरी को नहीं जितने कामयाब थे तो जरूर बुदाई ना साओ
0: माँ समझाती तो तुम्हारा जो रास्ता सही को रहे मत
1: तुम्हारी कुछ बात जब शुरू गए था
0: नौ नौ शौक है तीन साल का पाया था फिलहाल तब बन जाए तुम इस चीज का कितना का पाया करो
1: तुम समझो मैं
0: तो है समझे ना देखो ना अच्छा ऐसा होने को तंगी पंची अलग अलग साथ जाए
1: चलो चलिए उनके मुझे कुछ तंग का दिलचस्पी बोले
0: इंदर ही होना अच्छा ना इसका एक कुत्ता भी बिठा हुआ है इन्होंने हर चीज करवाए
1: खाने पर जिद्दी था क्यों कह लो

0: तो आके पसंद आया।
1: आप हमें शौक के सारा काम कर रहे थे सलाम
0: मिस्टर राजी। मिस्टर राजी काम है काम है
1: काम नहीं चाहूँगा
0: जी। राजी सर क्यों कुछ अजीब तो लगे ना हाँ वो ठीक अच्छा थी ना जो इन्हें सपने का नाना ही ऐसा है मिस्टर रमेश या है मिस्टर राजेश या है मिस्टर यही था मिस्टर प्रभात या है मिस्टर नारायण यही मुझे को बड़ा स्वस्थ रहता है उन्हें जो लालो वाला को रखे को भी ना तो उन्हें जब लालो चल रखे हुए तो जी हाँ उन्हें जब नाला ही आधा को ना है तो उन्हें जो कीमत को आ रहा है तो आगे विश्वास को नहीं दो मिस्टर राजेश जी कीमत आई 10,000 मिस्टर अरुण और मिस्टर नारायण जी कीमत 18,000 मिस्टर प्रभात काफी सस्ता है सिर्फ 15,000 मुझे को बेचारों पे नाम सुस्त रखा है मुझे कीमत क्या को नतय किया है मुझे कभी काम मुखाने तो नाले से अगर अगर कीमत होते थी मैंने
1: आई हजार अजीब है मिस नीना आए थाले मुखे कुछ पैचे नहीं करने सुस्त है
0: डॉक्टर साहब तेरे बिखे ना ये बेचारा कमजोर थी ना था उन्हें अदालती थ्रू बैंक बैलेंस को नहीं चाहिए जो फिर भर सके दादा जी हित पूजा है वो आए मुझे बहल दिखाए पर उन्होंने कहा कि कोई मतलब बोले ठीक है कहा कि पढ़ चुके नहीं थी हाँ बताइए माता पीछे जाओ तो तुम हम बताया को ना तो हमने बेचारे पंजे कुत्ते जो नालो एक कीमत छा रखी
1: कुत्ते का सिखाए मैंने बीचे में पटो सुनाए
0: पर तुम्हें जी आए तो सिखो को ने अरे तुम्हें क्या कर सोचो
1: जी

0: los hacen dentro de panes grandes, ya hay con la café. Porque es lo que con el chacante y echar un penado y pico trayendo. Ajá, no lo que pasa que se gusta, pero aquí va a cocinar.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué es eso? मैं कोशिश करूँ तो बाबा जन हित बचने जरूर तरसन मैंने कुछ कर ली पर मैं उन्होंने साहब पहले अस्पताल के बारे में गलाइंग दूसरा नहीं दादा तो मैंने के कुछ नहीं चाहिए जो मुंह तय के वाइट अस्पताल चेंज पहले सालों का पूरी खोली ने
1: सच्चा हाँ
0: चलो नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते खुश रहो पुटा खुश
2: तो नाटक पंजो कुत्तों बुद्धि रहा हुआ हीर पेश आहिन खास खास खबरों परडेही वजीर डॉक्टर एस जयशंकर जोर दिनों तो भारत के पंजे कौमी मफादन की पैरवी कदे जोग्राफियाई तौर से लागापन के बेहतर बनाने घुर्जे लेबनान ते इजरायली हमले सबब अमेरिका ए ईरान के विच में अमन गाल्य मुलतवी थे इजरायल ए हिजबुल्ला सीज फायर से राजी थी अफगानिस्तान पाकिस्तान में आईएसआईएस लागापियल हंडन से हवाई हमला शुरू कर ए क्रिकेट में भारत ए अफगानिस्तान के विच में टों आखिरी वनडे मैच अज मंझंद जो चेन्नई में खेडियो वेंदो।

0: तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरूपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Pashchim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination.

तो अभी आप सुन रहे थे संगीतिका, जिसमें आप सुन रहे थे शाहरुख हसन के भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीतू भरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अपने सभी श्रोताओं का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूरज हर दिन यही संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला फिर लौटकर जरूर आता है और एक गहरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही होती है, जो आपके हर दिन को एक अच्छा बनाती है। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए संकल्पों और नई ऊर्जा का समय होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो दिन भर अधिक सक्रिय रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाट और उगते सूरज की किरणें मन को एक शांति प्रदान करती है, और जो सुबह को जीत लेता है समझो वह पूरा दिन जीत लेता है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है येसुदास ने।

आप सुन रहे हैं गीत ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग अपने दोस्त अमित के साथ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले एक खूबसूरत सा एहसास होता है अपने से जुड़ने का, हवा में ताजगी, मन में एक नई उम्मीद, पक्षियों की चहचहाट और एक खूबसूरत सा

ऐसा एहसास जो हमें एक नई ऊर्जा नई उमंग देता है जीवन में आगे बढ़ने की। ये वो समय होता है जब आप अपने आप के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो सुबह हमें मौका देती है कि कल की यानी कि पिछली जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखें और नई सुबह के साथ आगे बढ़ें।

अमिता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना और आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे यानी अमित के साथ।

दोस्तों जीवन में जब भी आप में व्यस्तताएं हो तो सुबह का एक पल ऐसा जरूर होना चाहिए जब हम अपने मन की आवाज को सुन सके और गहराई से उसको समझ सके, क्योंकि सुबह का समय केवल समय नहीं बल्कि जीवन को जीने का एक नया अवसर है, क्योंकि हर सुबह एक ताजगी और एक खूबसूरत एहसास लेकर आती है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक अगला बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों सुबह का सूरज कहता है उठो बढ़ो और मुस्कुराओ, कल जो अधूरा रह गया है आज उसे पूरा करके दिखाओ। हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो ताकि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और अपने जीवन को एक खूबसूरत दिशा दे सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, मन प्रसन्न रहे और आपके जीवन में उम्मीदों का दीपक सदैव जलता रहे। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, लेकिन चलते चलते इस प्यारे से गीत के साथ आपको इस कार्यक्रम में छोड़े जाता हूं और बने रहिए हमारे साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजे को है, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लोग फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ प्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन

ऑय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लोग फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ प्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लोग फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ प्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं।

0: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को होगी पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
3: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के

0: विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइंस थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रूपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में यह हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं। चिप दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
1: वही भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च उपग्रह निर्माण और संचालन डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विश्वास। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटबॉल पर

0: चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 47,000 करोड़ रुपीज इन ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट टुडे। Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers for Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and a celebration marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors, including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashwani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate 3 indigenously built warships, INS Bunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agra, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 590 crore, a new 300-bed railway hospitals in Howrah and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 km.

0: scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates his commitment to combat terror financing. NTA to conduct a nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. With that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरब बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निपटने के अपने अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौत शुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरब बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसे मगरब बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरब बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद यह उनका पहला दौरा है। अपने काम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरब बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। यहां मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरब बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीप अंदाज गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसमें अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, योग एक अत्यंत प्राचीन और अमूल्य भारतीय जीवन शैली है जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का एक संपूर्ण विज्ञान है। संस्कृत की युज धातु से उत्पन्न इस शब्द का अर्थ है जुड़ना, जो व्यक्ति को प्रकृति और आंतरिक शांति से जोड़ता है। नियमित रूप से योगासन करने से हमारे शरीर न केवल लचीला फुर्तीला और मजबूत बनता है बल्कि प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव चिंता और अवसाद से भी मुक्ति मिलती है। योग हर आयु वर्ग के लिए एक वरदान है, विशेषकर हमारे बुजुर्गों के लिए। ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और बुढ़ापे को गतिशील और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। इसकी इसी वैश्विक उपयोगिता को देखते हुए हर वर्ष 21 जून को पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को एक निरोगी अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ग्लोबल लीडर डॉक्टर टोनी नादर का संदेश।
1: Namaskar to all listeners across India on the occasion of International Yoga Day. I am honored to address the people of Bharat, the country that gave yoga to the world. India is not today sharing yoga with the world for the first time. The world has been receiving yoga from India for many centuries. What this day marks is the recognition on every continent of what India has always known, that yoga is one of the deepest gifts to humanity that any civilization has ever given. I want to begin with the word itself. Yoga in Sanskrit means union, from the root yuj, to join, to yoke. Yoga is not fundamentally exercise. It is not fundamentally posture. It is the science of joining what has been separated, joining body and mind, individual and universal, action and stillness, the small self and the deeper, infinite, bigger self. Every asana, every breath practice, every meditation, every act of conscious daily living is a step in that joining. That is what yoga has always meant, and that is what the world is now finally ready to hear. This year's theme draws attention to yoga's contribution to overall well-being, with emphasis on healthy aging, meditation, and conscious living. I would like to say a few practical words about each. On mental health, stress, and clarity,

0: समय को योगा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
1: बॉलीवुड अभिनेता जिम से ज्यादा समय योग को दे रहे हैं। वजन कम करने में योग के फायदे के बारे में हमें ये बताया अभिनेता स्पर्श शर्मा ने।
2: जब मैं योग में आया तो मुझे बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क जो नजर आया योग में और जिम में वो ये है कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है काफी स्टिफ हो जाती है। वहीं जब योग की मैं बात करता हूँ तो योग एक बहुत ही आत्मिक बहुत ही नेचुरल क्रिया है जो आपको अपने आप से मुखातिब करवाती है। आप अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। आपके अंदर जो आप है, आपके अंदर का ईश्वर है या खुदा है या भगवान है, आपकी आत्मा है, उनसे आप रूबरू हो पाते हैं थ्रू योग। और योग की खास बात सबसे बेहतरीन ये है कि जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे होते हैं, अगर हम कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं योग में, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं योग में, तो उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में वापस आती है। आपको वेट लॉस करना है, योग अपनाइए। आपको फिट होना है, योग अपनाइए। आपको अपने से अपने आप को बेहतर जानना है, योग अपनाइए। योग अपनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस उम्र के साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। कहते हैं कि एक मजबूत इमारत के पीछे उसकी मजबूत नींव का हाथ होता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को जीवन भर संभाले रखने के लिए हमारी हड्डियां बहुत जरूरी काम करती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ढलती उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। विषय है बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल। आज के हमारे सेहत के अंक में हम जानेंगे कि हड्डियों की ये समस्याएं क्यों होती हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं और किस प्रकार संतुलित खानपान, नियंत्रित व्यायाम और समय पर उपचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, मैं हूँ रश्मि गुप्ता और आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर देवेश जालान, प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है या इसे रोका भी जा सकता है?
0: ये जो समस्या है जो कि हम बुजुर्गों में देखते हैं, यह एक सामान्य समस्या है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है
1: जी।
0: और जैसे हमारी हर उम्र में कुछ हड्डियां बनती हैं और कुछ हड्डियां लॉस होती हैं, जो कि एक नेचुरली चलता प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है और जो बोन लॉस हो रहा है वो ज्यादा तेजी से होता है एज कम्पेयर टू जितना बोन नया बनता है
1: जी।
0: इस वजह से ये प्रोसेस हमारा एक नेचुरल मैकेनिज्म की तरह बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो हड्डी की कमजोरी है, चूंकि बोन उतना नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो कमजोरी बढ़ने लगती है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नॉर्मल है, लेकिन अगर यह चीज तेजी से बढ़ रही है तो हम उसको नॉर्मल में नहीं आंक सकते, क्योंकि कुछ लोगों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर वो एक परेशानी का कारण बनती है, चाहे वो फ्रैक्चर के रूप में बने या फिर दर्द के रूप में बने, तो उस प्रोसेस को हम नॉर्मल नहीं कर सकते
1: जी।
0: इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो तेजी से भाग रही है और वो नॉर्मल नहीं है।
1: यदि हम बुजुर्गों की बात करें तो उनमें हड्डियों से जुड़ी सबसे आम समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं?
0: तो सबसे आम समस्या जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हड्डियों की कमजोरी है
1: जी,
0: जो कि तेजी से बढ़ जाए, तो जिसको हम बहुत कॉमनली नाम जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की कमजोरी की तेजी से बढ़ना और जिसकी वजह से हमारा जो रोजमर्रा का काम है, जैसे हम बाथरूम में नहाने जाते हैं, एक हल्का सा झटका लगा और हमें लगता है कि हमारी हड्डी टूट गई
1: जी,
0: तो वो जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल एक्टिविटी से हो रहे हैं, कोई चोट नहीं लग रही
1: जी,
0: वो इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि हमारी हड्डी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। दूसरी जो कॉमन समस्या हम देखते हैं जिसमें कि एज के साथ हमारी नॉर्मल बॉडी के जो जोड़ हैं, जैसे घुटने हैं, कोहनी के जोड़ हैं, वो हाथों के जोड़ हैं, वो जोड़ अपने नॉर्मल धीरे धीरे घिस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो घिस गए हैं हड्डियां

0: बढ़ गई हैं।
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंदर का कार्टिलेज है जो कि उसको एक कुशन देता है, उस जोड़ को मोबिलिटी देता है
1: जी,
0: वो जोड़ ढंग से चले,
1: हाँ,
0: वो धीरे धीरे एज के साथ कमजोर हो जाते हैं
1: जी।
0: और इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये दो मेन कॉमन समस्याएं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस जो वियर एंड टियर का है वो नॉर्मल स्पाइन में भी हो सकता है, जिसमें कि कमर में दर्द होना, या आपको कई बार हमें लगता है बुजुर्गों में हमारी कमर धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती
1: जी,
0: है
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: वो भी एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, बिकॉज उनका धीरे धीरे जो कमर की जो हड्डियां हैं वो पिचकने से लगती हैं, कमजोर होके वो कोलैप्स होने लगती है। और इस वजह से उनकी जो हाइट है धीरे धीरे कम होने लगती है
1: जी।
0: तो
1: सर, ये जो समस्याएं हैं ये केवल बुजुर्गों के लिए होती हैं या मतलब किसी और उम्र के लोगों में भी हो सकती हैं?
0: ऑस्टियोपोरोसिस प्रेडोमिनेंटली हम बुजुर्गों में देखते हैं
1: जी।
0: और नॉर्मल ये जो औरतों में फीमेल सेक्स में ज्यादा कॉमन है।
1: अच्छा।
0: और इसका कारण ये है कि जब हमारे को मेनोपॉज होता है उसके बाद ये रिस्क ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन की हड्डियों की कमजोरी का, फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
1: जी।
0: और इसीलिए हम अगर बात करें तो 50 से 55 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ये प्रॉब्लम हड्डियों के दर्द की और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क काफी है, एज कम्पेयर टू मेल्स जिसमें कि ये जो प्रॉब्लम है जो कि काफी लेट देखी जाती है। इसके अलावा अगर हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं वो हड्डियों की कमजोरी को बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अगर हम स्मोकिंग बहुत करते हैं, अगर हम अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर हमारे डाइट में एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं है जिसमें कि हम कैल्शियम, विटामिन डी या फिर मैग्नीशियम, या फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स जो कि नॉर्मल मसल और बोन स्ट्रेंथ के लिए
1: जरूरी है।
0: तो अगर हमारी डाइट पूरी प्रॉपर नहीं है तो वो सारे फैक्टर्स इस चीजों को जल्दी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बात की कि महिलाओं में 55 और अगर पुरुषों में 65 या 70 के बाद हो रही है
1: जी,
0: तो ये पहले भी हो सकती है अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चीज सही नहीं है।
1: सर, खान पान और जीवन शैली के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि हड्डियों की मजबूती की यदि हम जांच कराना चाहें तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए और किस उम्र में ये जरूरी हो जाते हैं?
0: ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि क्या हम इसको पकड़ पाएंगे
1: जी।
0: तो ऑस्टियोपोरोसिस को ना हम साइलेंट डिजीज की तरह कहते हैं कि आपको इसके लक्षण नहीं पता चलते, कि आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जब हमारे पास मरीज आते हैं तो वो मोस्टली फ्रैक्चर के रूप में आते हैं।
1: मैंने एक चीज और भी देखी है, जो हमारी यंग एज के जो लोग हैं या 30-40s में ही जो महिलाएं हैं या जेंट्स हैं वो जस्ट सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, घुटने में हल्का सा कुछ पेन है या कुछ खिसक गया है, तो क्या वो भी हड्डियों की कमजोरी ही है?
0: देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हमें जांच करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें स्पेसिफिकली सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तब वो जॉइंट में कुछ, कई बार हमारे झिल्लियां फट जाती हैं जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, कुछ लिगामेंट की इंजरी होती है जो कि प्रेडोमिनेटली यंग एज में ज्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: बट ओल्ड एज में भी उस तरह की समस्याएं हो सकती है। तो हमें ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये चीज सिर्फ हमें सीढ़ियां चढ़ने या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसमें हो रही है
1: जी,
0: तब हमें वो जांचने की जरूरत पड़ेगी कि वो क्यों हो रही है।
1: ओके।
0: और अदरवाइज अगर वो प्रोसेस हमारा एक रूटीन है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे जोड़ में, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, बैठ के उठते हैं तो हमें लगता है घुटने स्टिफ हो गए हैं, घुटने से उठने में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये और कुछ देर चलते हैं तो लगता है थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं
1: हम,
0: कि आपको जब भी आप थोड़ा सा इनएक्टिविटी वाला पीरियड होगा, जैसे आप रात को सो गए और फिर जब आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा बॉडी सारी स्टिफ हो गई है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड है, बट वही आप अगर 5-10-15 मिनट एक बार उठ के थोड़ा बहुत चलोगे देन यू विल फील कि आपका थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये लक्षण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ दिखा रहे हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें वो लक्षण नहीं आते हैं, बट कई बार हम कुछ चीजों से आइडिया लगा सकते हैं जो मैंने आपसे बात की पहले, कि हम जैसे किसी की अगर हाइट आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रही है या कमर का झुकाव बढ़ रहा है तो हम उस केस में ये सोच सकते हैं कि हाँ ये हड्डियां कमजोरी की वजह से हैं, और हम उसको अगर इवेल्युएट करें तो हम वो चीजों को पकड़ सकते हैं। अब क्या

0: है हमारी, अगर हम उस पर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं बोन की स्ट्रेंथ को जांच करने के लिए, उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, जो कि एक तरीके से एक्सरे टाइप की मशीन होती है। उसमें कोई आपका मतलब कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, जैसे एक्सरे के मशीन में एक स्कैन होता है उसी तरीके का स्कैन होता है, और वो कोई रेडिएशन का रिस्क भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ हिस्से जो कि कॉमनली जहां पे हम फ्रैक्चर देखते हैं, जैसे कि स्पाइन जिसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, और हिप के फ्रैक्चर्स, ये दो ऐसे एरिया हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है
1: जी।
0: तो इन दो हिस्सों की डेंसिटी हम चेक करते हैं मोस्टली डेक्सा स्कैन में।
1: अच्छा।
0: अब इसमें हमने एक क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है कि कोर हमारा -2.5 से कम आता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है।
1: अच्छा।
0: उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और -1 से अगर हमारा स्कोर बढ़िया है, ज्यादा है, तो वो चीज नॉर्मल होती है। और इन दोनों बीच के रास्ते में -1 से कम और -2.5 से ज्यादा में हमारे जो बीच का रास्ता है उसमें हड्डियां कमजोर हैं, और लेकिन उसमें हम ट्रीटमेंट दे के फ्रैक्चर के रिस्क को खत्म कर सकते हैं।
1: इसे इसका इलाज केवल दवाइयों के द्वारा है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ती है, और पूरी तरह से संभव है इसे नियंत्रित कर सकते हैं?
0: देखिए, पूरा इसको हम खत्म नहीं कर सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो सबको होनी है। हम जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे, हमारी चूंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी हड्डियां और मसल्स कमजोर होंगी, लेकिन हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को जितनी तेजी से जो बढ़ रही है उसको हम स्लो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, और अगर हम उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे बहुत जल्दी ध्यान देना शुरू करेंगे तो मेडिसिन की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी या फिर नहीं भी पड़ सकती। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसमें नॉर्मली जो एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं वो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी का वेट उसमें यूज हो रहा है। तो हमारी बॉडी का वेट नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे हम अगर नॉर्मल रूटीन वॉक कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या फिर हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो कोई भी जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी अगर हम चल फिर रहे हैं नॉर्मल और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या फिर हम उठ के बैठ रहे हैं, वो सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो हमें वो चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम धीरे धीरे हमें लगता है कि प्रॉब्लम भी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज को हम रिटेन कर पाएं, क्योंकि उससे मसल की स्ट्रेंथ और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज है वो है मसल की स्ट्रेंथ, क्योंकि मसल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बोन्स और मसल्स दोनों साथ में काम करती है। तो अगर हम बोन के साथ मसल्स पे काम नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो बोन्स भी हमारी बहुत हेल्प नहीं करेंगे। तो मसल स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें कि हम कुछ वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैंड्स आती हैं जिससे कि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारी मसल की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो।
1: तो जो 70+ या 80+ लोग हैं वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये एक्सरसाइज हर एज पे आप कर सकते हैं
1: जी।
0: उस एक्सरसाइज को बेसिकली हम धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो वेट हम मतलब यंग एज में रिकमेंड करते हैं वही आप ओल्ड एज में, आप आधे किलो से शुरू कर सकते हैं, आप एक किलो से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको वो चीज बिल्ड करनी है
1: जी।
0: आप उसको ग्रेजुअली करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेंथ लूज होगी।
1: सर, आपने बताया कि व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो या जीवन शैली हो, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं यदि हम समय से शुरू करते हैं। तो क्या खान पान में बदलाव करके भी हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है? तो आहार में किस तरह के पोषक तत्व हम ऐड करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए?
0: हाँ, तो अब हमने जैसे बात की एक्सरसाइज की, उसका अब दूसरा पहलू न्यूट्रिशन है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि शायद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो पहला पहलू हमने एक्सरसाइज की बात की, अब दूसरा पहलू है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बोन हेल्थ के अगर हम रिगार्डिंग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हर आदमी को दी जाती है, हर आदमी को पता है कैल्शियम लेना है। लेकिन कैल्शियम की जो अगर हम डाइट से वो चीज पूरी कर सकते हैं तो हमें अपने डाइट में कैल्शियम को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ये सब चीजों में कैल्शियम होती है
1: जी।
0: तो कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बोन हेल्थ का। इसके अलावा वाइटामिन डी
1: जी,
0: जो कि कैल्शियम और वाइटामिन डी दोनों आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक साथ काम करते हैं। अगर कैल्शियम के साथ

0: जी।
1: इसके अलावा हमारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारे चीजें भी हमारे डाइट की तरफ से हमें हेल्प कर सकती हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी, इन दोनों के अलावा नेक्स्ट स्टेप जो हमने बात की थी मसल स्ट्रेंथ, तो मसल स्ट्रेंथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटीन। तो हमें कैल्शियम, विटामिन डी के अलावा प्रोटीन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर हमारे डाइट में कम है, जो कि बहुत सारे हमारे जो रेगुलर इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन पे हम सबसे कम फोकस है, तो प्रोटीन के हमारे पास वेज सोर्स भी बहुत है और नॉन वेज सोर्स भी बहुत है। तो हम दोनों सोर्सेज, जो भी हमारी डाइट की चीजें हों, जो डाइट हम लेते हों, उस डाइट में हमें प्रोटीन पे फोकस करना चाहिए एज के साथ भी। अगर प्रोटीन हम इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगी।
0: जैसे प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हमारे लिसनर्स के लिए,
1: तो प्रोटीन हम वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे पास दाल है, चना है, सोया है, टोफू है, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। नॉनवेज सोर्स में हमारे पास रेड मीट है, हमारे पास फिश है, ठीक है, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है।
0: सर, सीनियर सिटीजन्स खासतौर पे जो 70-80 प्लस हैं, उन्हें चलने में दिक्कत होती है, आपने जैसे बताया भी, उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों का कोई हिस्सा अचानक से अटक जाता है या कमर झुकने लगती है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा यही सुझाव रहेगा उनके लिए कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत घरों में ये होता है कि अरे ये तो उम्र का तगाजा है, हम माइंड में भी ये सोच के चलते हैं और घर वालों पे भी यही इम्प्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों को, जो बीमारियों की हमने बात की, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की या घुटने में कोई झिल्ली के फट जाने की बात की, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको कि हम कम नहीं कर सकते या जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो अगर हम उस बीमारी को पकड़ पाते हैं कि वो चीज क्यों हो पा रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या अंदर कोई लिगामेंट या झिल्ली के फटने की वजह से है, तो हम उस चीज का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो कि आपके चलने फिरने की एक ताकत है, वो बनी रह सकती है, क्योंकि एक एज के बाद आदमी सबसे इम्पोर्टेंट ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम करे।
0: बिल्कुल।
1: और अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होती है और आप उसको नेग्लेक्ट करते रहते हो, तो कई बार जब हमारे पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आते हैं, तो फिर उनको वापस इंडिपेंडेंट करने में जो मेहनत लगती है और कई बार वो नहीं भी हो पाते
0: जी,
1: वो एक रिस्क बहुत बड़ा है। तो हमें ये पहले ही इस चीज को इवैल्यूएट कराना चाहिए।
0: सर, समय चूंकि बहुत थोड़ा सा बचा है, मैं ये जानना चाहूंगी कम उम्र से ही किस तरह से हम अपनी हड्डियों का ख्याल रख सकते हैं, ये हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, जो हमारी मेन हड्डी बनती है
0: जी,
1: वो शुरुआती दौर में बनती है, जब हम 20 साल की उम्र के होते हैं
0: जी,
1: हमारी 90-95% हड्डी का मेन मास बन चुका होता है। तो अगर हम अपने बच्चों में, एक जो हमने बात की बोन हेल्थ के लिए, वो बच्चों में भी कारगर है, अगर बच्चों में हम उनको शुरू से एक अच्छी डाइट दें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीज, ऑल दीज बोरोन्स, मिनरल्स, ये सब अगर हो, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट दें, उन्हें एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें, जो कि आज की जनरेशन में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ये नहीं कि घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं
0: जी,
1: तो जब तक वो एक्सरसाइज करेंगे वेट बेयरिंग, एक डाइट अच्छी लेंगे और कोई भी ऐसी एडिक्शन से बचेंगे, जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है
0: जी,
1: तो उनकी जो बोन मास बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी और वो अर्ली बनती है
0: जी।
1: अगर वो बोन मास बहुत अच्छी बनेगी तो वो प्रॉब्लम, बाद की जो हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं कि बोन कमजोर हो रही है, वो प्रॉब्लम भी वो प्रिवेंट हो सकती है। तो हमारा जो प्रिवेंशन है वो अर्ली स्टेज में शुरू होता है और उस चीज पे हमें वर्क करना चाहिए।
0: तो मुझे लगता है आज जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम काफी कारगर सिद्ध होगा। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकालकर इतनी जरूरी बातें हड्डियों से जुड़ी हुई हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल, अभी आप इस विषय पर सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थी रश्मि गुप्ता। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत स्वास्थ्य पत्रिका के अंतर्गत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। आप सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
2: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। तीव्र शहरीकरण के कारण जल की भारी मांग, अपर्याप्त स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रदूषण जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि जल चक्र का उचित प्रबंधन न किया गया तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल, स्वच्छता और सतत विकास। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोर्डा से दिलीप झा की ये बातचीत।
3: असीम आचार्य जी, जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका और शहरी विकास के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा से शिक्षा प्राप्त की है। असीम आचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम जल की या स्वच्छता की बात करते हैं तो छोटे और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में खास करके चुनौतियां क्या है?
4: आपको बहुत ही अच्छा सवाल रखा है सर। सबसे पहले क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं अपने आसपास में, हम देखते हैं कि बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा फोकस, ध्यान जो है वो बड़े शहरों की तरफ रहता है। तो आप दिल्ली देखेंगे, आप मुंबई देखेंगे, आप अहमदाबाद देखेंगे, आप बैंगलोर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत हाई है, रिसोर्सेज भी बहुत हाई है, सरकार का फोकस भी बहुत हाई है। पर जैसे ही आप छोटे छोटे शहरों की तरफ जाना शुरू करते हैं, जैसे बैंगलोर के पास में एक छोटा शहर है चिंतामणि, चिकबलापुरा, तो इन शहरों में हम देखते हैं कि आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है वो डे टू डे रोजमर्रा की चीजों को लेकर, रोजमर्रा की सर्विसेज को लेकर बहुत ही स्ट्रगल करती हैं। और एक और चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्ट की है वो ये है कि ये जो छोटे शहर हैं इसमें भारत की 60% आबादी 2030 तक बसना शुरू कर देगी। तो जब हम 60% आबादी जिन शहरों में बस रही है वो शहरों के ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो शहर हमारे जो आम जनता है या फिर रोजमर्रा का जो जीवन है उसको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। छोटे शहरों में यदि हम देखें कुछ जो बहुत ही टिपिकल या बहुत ही स्पेसिफिक यदि हम कुछ प्रॉब्लम देखने का कोशिश करें सर, तो छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो आपका म्युनिसिपैलिटी होता है अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कभी म्युनिसिपैलिटी को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। कभी उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल में लेनी है। कभी वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसे का प्रबंधन ही नहीं होता है क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर। ज्यादातर जो पैसा जो स्कीम से आता है वो सेंटर की तरफ से आता है, म्युनिसिपैलिटी का उसमें कंट्रोल बहुत कम रहता है। दूसरा एक और एस्पेक्ट आप देखेंगे या एक और पहलू आप देखेंगे कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो खुद का अपना रेवेन्यू अभी भी अच्छे से जनरेट नहीं कर रही है छोटे और मीडियम साइज के शहरों में। तो कहीं ना कहीं जब इन म्युनिसिपैलिटीज को एक अच्छी कैपेसिटी नहीं मिल पा रही है, इनके पास में प्रॉपर पैसा नहीं है चीजों को करने का, इनके पास में बढ़िया तकनीकें इतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, जिसके लोगों की भी कमी है और इन कई जगहों पर लोगों की ही कमी है। तो इन सारी प्रॉब्लम के बीच में ये जो छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो शहर हैं ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यदि पानी की व्यवस्था से लेकर कचरे की व्यवस्था से लेकर या फिर पानी के इस्तेमाल को किस तरीके से रखना है या आपका ओवरऑल जलवायु पर्यावरण की जो परेशानियां हैं वो इन छोटे छोटे शहरों में दिखना शुरू हो गई हैं। जो थोड़ी खतरे की या फिर जो थोड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि छोटे शहरों को लेकर हम जलवायु का बहुत बड़ा एक प्लान तो बना रहे हैं, हम पूरे देश को लेकर बना रहे हैं लेकिन छोटे शहरों को पता ही नहीं है कि जलवायु के अराउंड काम क्या है
3: और जो जलवायु परिवर्तन है उस तरह से
4: किस तरीके से वो
3: करना है।
4: मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी संस्था या कोई भी आप नागरिकों से भी बात करें तो सरकार के बिना ये काम करना एकदम ही इम्पॉसिबल है क्योंकि सरकार हमारा मेन जो सर्विस जो देने की जो एंटिटी है वो सरकार है और सरकार जिस तरीके की स्कीम भी बना रही है तो बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स है। हमारी आप स्कीम्स को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रूल्स, बहुत अच्छे रेगुलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वो स्कीम थोड़ा नीचे उतर के इम्प्लीमेंटेशन पे जाती है वहां हम बड़े परेशानियां देखना शुरू करते हैं। तो सर इसको रखते हुए यदि हम बात करें कि आम आदमी या फिर संस्थाएं कैसे मदद कर सकती हैं तो सर जो एक जो सबसे बड़ा हम जो गैप देखते हैं छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय शहरों में, वो है कैपेसिटी का गैप। कैपेसिटी का गैप बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कई जगहों पर गवर्नेंस के अराउंड का बात हो सकता है कि जनरल आपको अपना म्युनिसिपैलिटी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, आपको अपना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी टैक्सेस पर आप कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पानी की

0: व्यवस्था का पैसा आप कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कचरा जो उठाने का जो पैसा है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके पास में प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए कचरा उठाने के लिए, वो आपके पास में है कि नहीं, या फिर जिस टाइप का आपको कन्वर्जेशन करना है, बात करना है लोगों से, वो बात करने के पॉइंटर्स आपके पास में है कि नहीं। अब ये समझते हैं क्या कि उससे एक्चुअली में पब्लिक हेल्थ या फिर जो सामाजिक स्वास्थ्य है उस पर असर क्या पड़ता है, वो आपकी समझ में है कि नहीं। तो ये जो कैपेसिटी का जो गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक माध्यमों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत ही जो आम तरीका है वो है कि अब बहुत ही इंटेंसिवली लोगों से बात करना सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि लोग बिजली पे बात करते हैं, कभी भी बिजली चली जाती है एक कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है, लेकिन पानी इतना बड़ा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक नहीं है, कचरा इतना बड़ा बात करने का टॉपिक नहीं है। हमने कितने लोगों ने देखा कि चार लोग साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि वो बात शुरू करना बहुत जरूरी है, और जब बात शुरू होगी तो धीरे धीरे बात स्केल पे होगी। दूसरा चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लोकल जो प्रबंधन है उसकी आप कैपेसिटी या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सर, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो हमारे किसी के भी अभी हाथ में नहीं है, वो है कि हम किस तरीके से इन म्यूनिसपैलिटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टेट की तरफ से आपको ग्रांट मिलता है, जो आपका कुछ टाइड ग्रांट होता है जिसमें आपको सेट एक्टिविटीज करनी होती है। देन उसके अलावा म्यूनिसपैलिटी कई जगह पे अपना खुद का पैसा जनरेट करती है। कई जगहों पे आजकल म्यूनिसपैलिटीज आपके जो बॉन्ड्स हैं, जैसे प्लास्टिक के आपके क्रेडिट्स होते हैं या फिर आपके कार्बन के क्रेडिट्स होते हैं या म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों को भी म्यूनिसपैलिटी धीरे धीरे देखना शुरू कर गई है। पर जो डिफरेंस है वो कई बार इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का भी है कि यहाँ पे यदि कोई एक चीज है उसको उतार के जमीन पे ले जाने के लिए कौन है। वहां पे आई थिंक ये जो संस्थाएं हैं या फिर जो नागरिकों के ग्रुप हैं, ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
1: इस तरह की संस्थाओं का जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो स्थानीय नागरिक है, उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आपने एक बात बताई कि सबसे पहले संसाधन की भी जरूरत है, संसाधन सिर्फ सरकार पर ही निर्भर है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर को आना होगा, लोगों को खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा। ऐसी स्थिति में बात आती है कि वेस्ट टू रिसोर्स की, या जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं हम, कि जो कचरा है, जो गार्बेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उससे किस तरह से एक संसाधन निर्मित किया जा सकता है। ये अवधारणा बहुत जगह देखी गई है महानगरों में, खास करके दिल्ली के हाई राइज सोसाइटी में और बेंगलोर की सोसाइटियों में कुछ सफलताएं हैं। आप चूंकि एक मध्यम शहरों में काम करते हैं, आप एक दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह के काम करते हैं उसमें इस कंसर्न को किस तरह से एक लाभदायक रूप में लाया जा सकता है।
0: सर, वेस्ट टू रिसोर्स या फिर हम बोलें कि जो गंदा पानी है उसको फिर से इस्तेमाल में लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी चीज है यदि हम जलवायु प्रबंधन की बात करें। लेकिन जैसे आप छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन या शहरों की बात करते हैं, तो अभी छोटे और मध्यम वर्ग के जो शहर हैं वो तैयार नहीं है सर इस टाइप का वार्तालाप शुरू करने के लिए। सुबह से आप देखेंगे कि छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय शहरों में अभी पूरी तरह से कचरा ही कलेक्ट नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसा ब्लैक स्पॉट होता है जहां पर आपका कचरा पड़ा होता है, पूरा कचरा अभी आपके फैसिलिटीज में ही नहीं पहुंचता है। बहुत सारा कचरा आपका वेस्ट, लेगेसी वेस्ट का साइड पर चला जाता है, जहां पर वो फिर 10-10, 15-15 साल तक पड़ा रहता है। उसी में आप यदि गंदे पानी का भी बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अभी भी छोटे और मध्यम वर्गीय शहर है, वहां पर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ही अभी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम,
1: मुझे लगता है कि इस तरह के शहरों में लोग अपने मकान में ही एक हाउस भी बना लेते हैं, ठीक है, जो उनके वॉशरूम से रिलेटेड सारे पानी और जो,
0: तो ये सोसाइटीज में ज्यादा है। यदि आप एक निजी घर की बात करें, तो ये निजी घर ज्यादातर तरीके पे अभी भी म्यूनिसपैलिटी की सर्विस पे ही अटका है। लेकिन जैसे आप ये अपार्टमेंट की बात करेंगे, जो आजकल छोटे शहरों में भी पहुंच रहे हैं, तो इनके खुद के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इनका खुद का कचरा कलेक्ट करने का फैसिलिटी होता है, ये लोग अपने कचरे को, वेस्ट को किसी न किसी तरीके के रिसोर्स या किसी न किसी तरीके का उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश कर लेते हैं। तो पहला जो मेरा जो पॉइंट रहेगा सर इसमें, वो ये है कि अभी हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय शहर तैयार नहीं है, लेकिन जरूरत आ चुकी है। तो हम जितना इसमें डिले करते जाएंगे शहर, या जितना इसको देरी करते जाएंगे, उतना ही जलवायु की परिस्थिति और खराब होती जाएगी। जैसे आप यदि असम जैसे एरिया की बात करें, जहां पे पानी फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है, यदि फ्लडिंग बहुत हो रहा है, आप देखते हैं शहरों में पानी भर रहा है, और यदि आपका गंदा पानी ट्रीट नहीं हो रहा है या वो इधर उधर फैल रहा है, तो वो आपके फ्लडेड वाटर के साथ में मिक्स होगा और वो आम जनता के गलियारों में, घरों के आसपास में पड़ा रहेगा। उसमें इकोलाय, अलग अलग बैक्टीरिया, मच्छर, अलग अलग टाइप की बीमारियां उससे पैदा होती रहेंगी। तो जब तक हम अपने कचरे को और अपने वेस्ट वाटर को सबसे पहले कंटेन करके ट्रीट नहीं करते, तब तक हम वेल्थ और उसके कॉन्वर्जेशन पे नहीं जा सकते। छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन अभी उसको कंटेन करने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो चीज सर एक और पॉइंट में रखना चाहूंगा, वो है कि जब हम वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट या यूज्ड वाटर का भी बात करते हैं, तो अभी जिस टाइप का काम हम लोगों ने सबने लेके रखा है, वो काम भी बहुत ही थोड़ा सा टोकन की तरह से ज्यादा

0: चल रहा है रादर देन एक एक्चुअल काम की जगह वो थोड़ा चेक मार्क की तरह से ज्यादा चल रहा है। तो जैसे आप प्लास्टिक का देखेंगे तो प्लास्टिक क्योंकि उसका जरूरत बहुत हाई है, प्लास्टिक में आप देखेंगे कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत
1: अच्छे से चल रहा है और खास करके उसमें जो लोकल में कहे कबाड़ी जो करते हैं
0: इनफॉर्मल सेक्टर
1: उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में, स्टोर करने में और एक एजेंसी तक पहुंचाने में,
0: क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर उनको पैसा मिलता है। लेकिन जैसे आप प्लास्टिक को छोड़ के बाकी वेस्ट का बात करें तो उनके लिए अभी भी उस टाइप का वेल्थ का प्रबंधन वेल्थ के अराउंड होना चाहिए कि अभी वेल्थ कैसे जनरेट होगा। प्लास्टिक में तो है, बाकी वेस्ट की स्ट्रीम में नहीं है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें दूर से देखने में लगता है कि हाँ वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, लेकिन आप जितना अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं या हम एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो वाटर का यूजेज का बात कर रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें प्रॉब्लम बनती है।
1: आपने जो है एक बहुत ही उच्च संस्थान से अध्ययन किया हुआ है और मैनेजमेंट के, रूरल मैनेजमेंट के, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक भारत सरकार का अलग से मंत्रालय है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। आपने जब इस संस्था की स्थापना की, जो आप फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला, आपको क्या इसकी जरूरत लगी और इसमें आपका अनुभव क्या है कि आपने किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में गए हैं तो आपको क्या फायदा या कमियां देखी है?
0: पिछले 10 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब अपना काम करना शुरू किया था तो मैंने रूरल सेक्टर में काम शुरू किया था। रूरल में हम उस टाइम पे बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे, जैसे आप देख रहे थे कि उसी टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी आया था जिसने शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम क्रिएट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करता गया, मैं रूरल से फिर थोड़ा अर्बन शहरी इलाकों की तरफ मैंने काम देखना शुरू किया और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं छोटे शहर, मध्यम शहर और रूरल की जो प्रॉब्लम है उनको आप एकदम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके छोटे शहरों के पास में ही पूरे गांव बसे हुए हैं, मध्यम वर्गीय शहरों के पास में ही गांव बसे हुए हैं। गांव की बाउंड्री वैसे म्युनिसिपल बाउंड्री वैसे तो डिफाइंड है, लेकिन कचरा यदि शहर का कचरा उसी गांव के या फिर बीच के एरिया में फेंक दिया जाता है, तो वहां से हम लोगों ने ये चीज को समझना शुरू किया कि यदि आपको भारत में पानी की या आपको कचरे की व्यवस्था को सही करना है तो आप इसको शहर और गांव में पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते यदि आप छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों का बात कर रहे हैं। फिर जब हमने थोड़ा फोकस करना शुरू किया छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों के ऊपर, जैसे हमने पहले भी बात करी, हमें ये सब समझ में आने लगा कि छोटे शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन छोटे शहरों में उस पॉपुलेशन के हिसाब से फैसिलिटी नहीं बढ़ रही, उनके पास में रिसोर्स नहीं बढ़ रहे, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो एक जो बड़ा, और आप आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे जो संस्था है वो अभी भी बड़े बड़े शहरों में काम करती है, क्योंकि टीयर टू टीयर थ्री में ज्यादातर क्या होता है कि विजिबिलिटी नहीं होती। जैसे आप कोई चीज यदि दिल्ली में करेंगे, बम्बई में करेंगे, तो आप उसको 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं, 4 प्राइवेट लोगों को अलग से भी दिखा सकते हैं। वही चीज को आप यदि एक बहुत ही रिमोट से छोटे शहर में करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। प्लस क्या होता है कि आप कोई भी सीएसआर काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि सरकार आपकी एक्टिवली वहां पे काम करे, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करना आसान है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटी के साथ में काम करना, मेयर्स के साथ में काम करना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ में काम करने के लिए आपको उनका लोकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको उनकी लोकल परेशानी को, तो प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग से लेके सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको उसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो सब चीजों की वजह से भी हमने देखा कि बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग इन सब एरिया में काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि बिकॉज यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आज नहीं है लेकिन ऐसे 10 साल में आपको और दिखेगा। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण ही, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गांव प्रदेश से लोग बाग शहरों की तरफ और बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम शहरों में भी देख रहे हैं कि कैसे 10 मिनट की सर्विसेज और तेजी से बढ़ेंगे, तो जिस तरीके का शहरीकरण हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर। और इसी शहरीकरण के साथ में कई जगहों पर बहुत ही अत्यधिक वर्षा देख रहे हैं, कई जगहों पर हम कई लंबे सूखा देख रहे हैं, तो इन सब चीजों का यदि मैं एक इम्पैक्ट यदि देखता हूँ तो विकास के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी और आपके आजीविका के ऊपर भी पूरी तरह से दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ में एक दो चीजें थोड़ी अच्छी हो रही हैं। छोटे शहरों में जल प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़नी शुरू हो गई है। बहुत सारे आपके जो वर्षा जल के, यदि मैं संचयन की बात करूं या फिर मैं आपके अपस्ट्रीट जो आपका जो खराब जो जल है उसको फिर से कैसे उपयोग मिले उनकी बात करूं, तो इसके अराउंड साइंटिफिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से, कि एक आपके विचारधारा के तरीके से भी और एक आपके वैज्ञानिक तरीके से भी एक प्रोग्रेस हुई है। लोग इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस भी देने लगे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक भी होने लगे हैं और लोग इसको समझना भी शुरू करने लगे हैं। तो मुझे इस चीज से एक आशा मिलती है कि यदि हम जिस टाइप की स्कीम्स वो हैं, यदि हम उनको छोटे शहरों में उनके लोकल स्रोतों के अराउंड, उनके लोकल परेशानियों के अराउंड या फिर उनके लोकल जो रहने सहने के तरीके हैं उनके अराउंड यदि हम सोल्यूशन को थोड़ा बिल्ड करेंगे और म्युनिसिपैलिटी को, जो आपके छोटे शहरों की या मध्यम वर्गीय शहरों की म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको हमें एक सही कैपेसिटी और थोड़ा बहुत उनको फाइनेंस मोबिलाइज करने के तरीके, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हमारी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितनी हमेशा आज देख के लग रही है।
1: असीम जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: बढ़ते शहरी

0: चरण के दौर में जल स्वच्छता और सतत विकास। अभी आप असीम आचार्य संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहाँ संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: आकाश।

सामिन अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

9:35 मिनट पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नमस्कार 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार इंसर्री पर मबनी शम्मे फरोजा। हुस्ने का दिल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं निर्मला अरुण और सलीम इकबाल। आप पेश करेंगे शकील बदायूनी, मिर्जा गालिब, मजहर इमाम और जुबैर रिजवी का कलाम। प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। दस बजकर 30 मिनट पर गीतों भरी कहानी दिल की लगी आप सुनेंगे तहरीर मातरमा रईसा परवीन की। ग्यारह बजे मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 11:30 पर डॉक्टर रंजन जैदी का तहरीर करदार ड्रामा आप सुनेंगे रुखसती।

दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले ऐसी।

0: गहे प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे
1: और सुभद्रा। अब हम इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। आज है 20 जून 2026 और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस। बिल्कुल सुभद्रा, ये दिवस उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हुआ। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सन 1858 में आज के दिन ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और उसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ। 1887 में आज के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस बनकर तैयार हुआ। पहले इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पर रखा गया। 1996 में नाम बदलकर किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और आज ये देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। 1916 में पुणे में आज के दिन SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर पांचवां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर की। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक नियुक्त हुए। अपने शुरूआती समय में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष प्रारंभ किया। बाद के समय में अपनी मेहनत और कठिन लगन से इन्होंने किर्लोस्कर की कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। किर्लोस्कर ने जीवन में पहली बार एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो अपने भाई के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से साइकिल की दुकान खोली और अतिरिक्त समय में साइकिल बेचते, उनकी मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते।
2: एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रमाकांत देसाई, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट एज अ फास्ट बॉलर फ्रॉम 1959
1: टू 1968। और आपको पता है कि स्नो बर्ड के बारे में कहा जाता है कि न धूप चाहिए न गर्मी, इसे ठंडी हवा उसे भाती है, चिड़चिड़ करके गाता है, सबको खुशी सुनाती है।
2: ओह सो ब्यूटीफुल।

0: खुशी भरे इस गीत के बाद अब एक और साहित्यकार को याद कर लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, लेखक और कवि थे भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। भुवनेश्वर साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। भुवनेश्वर ने मध्य वर्ग की विडम्बनाओं को कटु सत्य के प्रतिरूप में उकेरा। उन्हें आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव हासिल है। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा जैसी कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित की। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने उनके भविष्य का रचनाकार माना। इसकी एक खास वजह यह थी कि भुवनेश्वर अपने रचनाकाल से बहुत आगे की सोच के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में कालिकता बोध है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से ये भूतकाल से न जुड़कर भविष्य के साथ ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है। कार्मा की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है कि विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका यह मानना उनकी रचनाओं में स्पष्टता दर्शाता है। इंसान को वस्तु में बदलते जाने की जो तस्वीर उन्होंने उकेरी वो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।
1: We want to talk about another novelist, Birthday Vikram Seth, poet, novelist, travel writer, celebrates his birthday today. We all know that his most famous and celebrated novel is A Suitable Boy, written in 1993. Of course, his next novel, An Equal Music, in 1999, was a love story set in the world of professional musicians. His exceptional contributions to literature have earned him major international and national honors, including the Sahitya Academy Award in 1988, the W.H. Smith Literary Award in 1994, and India's prestigious civilian honor, the Padma Shri, in 2007. Today is also the birthday of American-born Australian actress Nicole Kidman, known for her considerable range and versatility. Besides a whole bunch of hit films, her discography consists of several audio recordings, including one spoken word album, one extended play, and three singles.

0: 5-time Oscar nominee. She is the first Australian actress to win an Oscar for the movie The Hours.
1: और इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का और कल है योग दिवस और हम सब जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि ये शरीर मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने का भी मार्ग है तो हम सब कल प्रण लेते हैं कि कल जो है सब लोग सुबह उठकर योग जरूर करेंगे
0: यस एग्जैक्टली थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट डे नमस्कार
2: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है अब खबरें नशे की जाएंगी
3: ये आकाशवाणी है अब आप शबाना बेगम से खबरें सुनिए सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संघ बुनियाद रखेंगे वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नायब सदर मुकर्रर किया गया है भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज्म को दोहराया है एनटीए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कीर सतह पर मॉक ड्रिल करेगा यह इम्तिहान कल कराया जाएगा सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वरसा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मुलाकात करेंगे जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है वजीर आजम आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब मौसीकी आर्ट रूहानियत साइंस तिजारत और समाजी इस्लाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के पेश कर रहा है और इसमें बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए अक्सर तब्दीली लाने वाले इकदामात का जिक्र होता है बाख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सुतून सेमीकंडक्टर इको निजाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की है इस ताजातरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निजाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल गई हैं सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती इक्तसादी इस्तेहकाम डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबलाती रुझान की बुनियाद हैं यह मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 का आगाज किया जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन 2 के तहत इको निजाम में गहराई लाई जाएगी मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मंसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे

शैला ने उसे जोर जोर से झंझोड़ डाला। उठो अभी, देखो कौन आया है, कौन आया है। फलक हड़बड़ा कर उठ बैठी। अमरीका वाले बड़े अब्बू के बेटे सात भाई आए हैं। अच्छा, एक झटके से फलक ने बिस्तर छोड़ दिया। काफी अरसे पहले बड़े अब्बू अपनी फैमिली के साथ अमरीका चले गए थे। उस वक्त हम बहन भाई बहुत छोटे थे। उनके दो बच्चे साद और जेबा भी छोटे थे। अब तो जैसे उनकी शक्लें भी ठीक से याद नहीं है। देखने का इश्तियाक लिए दोनों बहनें ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। साद ने चौंक कर देखा। शहला ने अपना तारुफ कराया और फिर सिमटी हुई खड़ी फलक की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये मेरी प्यारी सी बड़ी बहन है फलकनाज। साद ने खुशदिली से दोनों के सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान ने साद से दरियाफ्त किया कि भाई साहब नहीं आए, तो साद ने बताया कि जेबा के इम्तहान से फारिग होकर हम सबका यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा है। अब्बा ये सुनकर बहुत खुश हुए। फलक चाय का इंतजाम करने की गरज से उठी तो साद की नजरें उसका ताकुब करने लगी और उसका दिल गुनगुना उठा।

चाय पीने के बाद साद और जावेद, जो फलक का भाई था, दोनों फूफी से मिलने चले गए। 9:30 बज चुके थे। साद और जावेद अभी तक नहीं आए थे। फलक ने खाने में बहुत एहतमाम कर रखा था। शहला को शरारत सूझी और फलक के कान में सरगोशी के अंदाज में बोली, साद भाई बहुत स्मार्ट है ना आपी? और फलक ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो खामोश होकर हंस गई। अचानक लाइट चली गई। फलक ने किचन में मोमबत्ती तलाश करने के लिए माचिस की तीली जलाई और इधर उधर मोमबत्ती देखने लगी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे की सिमत उठ गई। साद जाने कब आकर खड़ा हो गया था और उसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहा था।

कभी कभी एक मुख्तसर सा लम्हा जिंदगी के अहम तरीन फैसले कर जाता है। ये वही लम्हा था जब साद ने अपनी जिंदगी का फैसला कर डाला। साद को इंडिया आए हुए एक महीने का अरसा हो चुका था। इस दौरान उन्होंने एक पॉश कॉलोनी में कोठी बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली थी और उसमें दो कमरे बनवा भी डाले थे। इस कोठी के एक गोशे में उसने अपना क्लिनिक खोलने का इरादा भी कर लिया था। आज फूफो और हारिस साथ से मिलने आए हुए थे। हारिस नेहायत चिड़चिड़े मिजाज के वाके हुए थे। शहला अक्सर चुपके चुपके उनका मजाक उड़ाया करती थी और उन्हें हिटलर के नाम से पुकारती थी। यूं तो फलक भी उस आदमी से एलर्जिक रहती थी। अजीब आदमी था, हर वक्त चेहरे पर गुस्से की लकीरें रहती थी। फलक को हारिस की शक्ल देखकर खौफ सा महसूस होता था। एक दिन साद फलक और शहला को अपना बंगला दिखाने ले गए। शहला इस वसी व अरीज रकबे में बने बंगले में घूम फिर कर देखने लगी। मौका पाकर साद ने फलक से पूछा, आपके ख्याल में मुझे किस तरफ अपना कमरा बनाना चाहिए? मैं क्या कह सकती हूँ? चलिए अच्छा फर्ज करें कि ये घर आपका है, तो आप अपने लिए कौन सा कमरा पसंद करेंगी? साद के लहजे और आंखों में इश्तियाक था जिसे महसूस करके फलक सटपटा गई। जी मैं ऐसी कोई बात फर्ज नहीं किया करती, ये कहते हुए उसने नजरें झुका ली। साद की शख्सियत पर मगरबी तहजीब का जरा भी असर नहीं था। वो मशरकी तहजीब का दिलदादा था। अमेरिका से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया था और यहीं अपना क्लिनिक चलाना चाहता था। साद को चचा के यहाँ रहते हुए 1.5 माह का अरसा गुजर चुका था। अब वो अपने बंगले में शिफ्ट हो जाना चाहता था। अम्मी और अब्बा ने बहुत रोका, लेकिन उसने जवाब पेश किया कि वो वहां रहकर घर की सेटिंग कर सकेगा और क्लिनिक भी जाना चाहता है। साद के चले जाने के बाद घर भाई भाई करने लगा। फलक का अजीब हाल था, किसी काम में दिल ही नहीं लगता था, बस बार बार साद का ख्याल सताता था। शहला की भी यही कैफियत थी। दोनों के इम्तहान करीब थे, लिहाजा दोनों उसमें मसरूफ हो गईं। उधर साद का भी यही हाल था। दिन गुजारे नहीं गुजरता था, रातों को तन्हाई डसती थी। उसकी आंखें हर वक्त फलक के दीदार की मुतमन्नी रहती थी।

एक दिन साथ सुबह सुबह फलक से मिलने उनके घर पहुंच गया। किस्मत उस पर मेहरबान थी, चचा कहीं काम से निकल चुके थे और चची पड़ोस में गई हुई थी। शैला कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। फलक की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फलक ने दरवाजा खोला। साद सामने खड़ा था। वो अचानक साद को देखकर सटपटासी गई। घर में तो कोई नहीं है, तो क्या अंदर घुसने नहीं दोगी? वो शर्मिंदा होकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, और उसने साद को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मैं चाय लेकर आती हूँ। वो चाय बनाने की गरज से मुड़ी, लेकिन साद ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इतने अच्छे मौके को मैं यूं ही जाया नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे ही मिलने आया था। पूछोगी नहीं क्यों? वो फलक की लरजती पलकों को इश्तियाक से देखते हुए बोला, मैं जिंदगी भर के लिए तुमको अपनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी बनना पसंद करोगी? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? फलक की आंखें शर्म से बोझल हुई जा रही थी। उसका हलक खुश्क हो चला था। प्लीज फलक, मेरी बात का जवाब दो। जवाब मेरे पास नहीं है। अम्मा अब्बा जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई पसंद होगी। शर्म से फलक का चेहरा गुलनार हो गया। साद ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, ठीक है, मम्मी पापा के आ जाने के बाद मैं उन्हें चचा चची के पास रिश्ते की बात के लिए भेजूंगा। फलक, आज मैं बहुत खुश हूँ। साद की गर्म निगाहों की ताब न लाकर फलक जल्दी से किचन में घुस गई और साद जाने के लिए मुड़ गया और फलक को प्यार की हसीन वादियों में छोड़ गया। फलक को इस बात का यकीन नहीं था कि साद इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। फलक सोते जागते एक ही सपना देखने लगी थी।

और फिर एक दिन ताया और उनकी फैमिली अमेरिका से अचानक आ गए। साध ने सुबह आकर खुशखबरी सुनाई और सब उनसे मिलने पहुंच गए। फूफी और उनके घर वाले भी मौजूद थे। बहुत जल्दी बेतकल्लुफी की फिजा पैदा हो गई। साध ने अपना क्लिनिक सेट कर लिया था और अब उसने बाकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को उनकी शादी की फिक्र लाहक हुई। उनकी नजर में फलक और शहला दोनों थी। उन्हें दोनों लड़कियां पसंद थीं। साथ से पूछा तो उसने फलक के लिए रजामंदी जाहिर की। तो ये लोग रिश्ते की बात पक्की करने के लिए फलक के घर पहुंच गए। साथ की खुशी की इंतहा नहीं थी। आज उसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो बहुत मगन था। बड़े अबू ने चचा से फलक का हाथ मांगा तो चचा और चची दोनों सोच में पड़ गए और बोले, हम सोच कर जवाब देंगे। बड़े अबू अपनी दौलत और इमारत के घमंड में वक्त की नजाकत को महसूस किए बगैर गोया हुए। अरे मोहलत तो वहां मांगी जाती है जहां जान पहचान ना हो। फलक आखिर हमारी ही बच्ची है। अब्बा अम्मी का मुंह तकने लगे। उन दोनों का ख्याल था कि रिश्ता बराबर वालों में ही अच्छा लगता है। क्योंकि उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी लिहाजा वो शशोपंच में पड़ गए। अरे भाई आपने तो मसला बना लिया। अब्बा ने कहा, हम फैसला करने से पहले फलक की पसंद मालूम करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, लो हम अभी फलक को बुलाकर उसकी पसंद मालूम किए लेते हैं। ये कहकर बड़े अब्बा ने फलक को आवाज दे दी। फलक घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि ताया अब्बू ने फलक को बराहे रास्त मुखातिब करते पूछा, कहो फलक बेटा, तुम्हें साथ के साथ शादी पर कोई एतराज तो नहीं है? फलक को अचानक इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसकी आवाज हलक में अटक गई। उसने शर्म से बोझल पलके उठाकर अम्मी अब्बू की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें रक्सां थी। उसका दिल अम्मी अब्बू की परेशानी पर कटकर रह गया। उसने हिम्मत करके पुर एतमाद लहजे में कहा, सॉरी बड़े अब्बू, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बड़े अब्बू बड़ी अम्मी जैसे सन्नाटे में रह गए। साध की हालत तो बिल्कुल अबतर थी। बड़े अब्बू यूरोप में रहकर मशरकी तौर तरीके जैसे बिल्कुल भुला बैठे थे। भरी महफिल में एक मशरकी लड़की से इस तरह के सवाल का जवाब मांगना यूं भी मुनासिब नहीं है।

के मुंह से एक सर्द आह निकली। पापा ने जल्दबाजी करके उसकी दुनिया ही जैसे उजाड़ कर रख दी थी। उधर फलक की हालत भी अबतर थी। वो इतनी मॉडर्न भी नहीं थी कि सब बड़े छोटों के सामने अपनी पसंद का इजहार बेबाकाना कर देती। एक तूफान था जो गुजर चुका था, लेकिन अपनी तबाहियों की निशानियां छोड़ गया था। फलक की दुनिया अंधेरी हो गई थी।

0: जब याद आए बहुत याद आए।
1: फरहत की शादी से इनकार करने के बाद बड़े अब्बू और अम्मी ने साद को बहुत समझाया कि वो कहीं और शादी कर ले, लेकिन साद अपनी जिद पर अटल था, अगर फलक नहीं तो कोई मेरे जिंदगी में नहीं आ सकती। अगर आप लोग उसके इनकार को इकरार में तब्दील कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा। ये कहते हुए साद की आवाज भर्रा गई। वो तेजी से उठकर अपने कमरे में चला आया। बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन फूफी साद के घर आई और ये मुजदा सुना गई कि हारिस और फलक की निस्बत तय हो गई है। साद की थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट गई और अब वो बरसों का मरीज लगने लगा। हारिस को उसने कभी भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, लेकिन बार बार इनकार उसकी शख्सियत को मुश्तबा कर सकता था, लिहाजा उसने खामोश रहकर इस जहर को पी लिया जिसकी तलछट से उसकी तमाम जिंदगी जहर आलूद हो गई। शादी के बाद फलक को महसूस हुआ कि हारिस ने उससे इंतकामन शादी की थी। वो साद और फलक के रिश्ते के बारे में भी जान चुका था और दिल में तरह तरह के शकूक पालने लगा था। फलक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जहन से ये खुराफात निकाल नहीं सकी। एक दिन साद चचा के घर गया तो शहला ने उसे बताया कि हारिस भाई आप ही को आपके नाम का ताना देते रहते हैं और यहाँ आने पर पाबंदी लगा रखी है। ये सुनकर साद को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो अभी तक इस गुमान में था कि फलक बहुत खुश है, उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है। लेकिन शहला की जबानी तमाम हालात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। शहला ने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है साद भाई, अब मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप जल्द अज जल्द शादी कर लें ताकि हारिस भाई के दिल से शकूक निकल जाएं। साद ने इनकार किया तो शहला ने झुंझलाकर कहा, आखिर आप शादी से दामन क्यों बचा रहे हैं? शहला, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है, तुम खूब जानती हो मैं अधूरा शख्स हूँ। मैं फलक को ता उम्र भूल नहीं सकता। मेरे अधूरेपन के साथ कोई लड़की समझौता नहीं कर सकती, क्या तुम? बराहे रास्त शहला की आंखों में देखते हुए वो बिला इरादा उसे चैलेंज कर गया और शहला शशदर सी रह गई। आई एम सॉरी शहला, मैं किसी को मोहब्बत का फरेब नहीं दे सकता और जाने मुझे कौन फरेब खाएगी भला? मैं, शहला ने पूरे एतमाद लहजे में साद का चैलेंज कबूल करते हुए अपना फैसला सुना दिया। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें ऐसा अहमकाना फैसला करने की इजाजत नहीं दूंगा। साद, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता शहला।

उसके बाद कई बार साद ने शहला को समझाने की कोशिशें की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर शहला की जिद रंग लाई और साद ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। शहला ने साद से वादा किया कि वो जिंदगी भर उससे कुछ नहीं मांगेगी और साद ने जिच होते हुए कहा, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम सब कुछ जानती हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर हर गांव पर मुझे इसका एहसास दिलाते रहेंगे। शहला ने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारे पास ये कहने आया था कि तुम सारी बातें भूल जाओ, मैं अब इस बाग को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ, अलबत्ता मुझे तुम्हारी तरफ मायल होने में कुछ वक्त लगेगा, मैं इंतजार कर लूंगी, शहला ने शर्माते हुए कहा। फलक को शहला और साद के रिश्ते का सुनकर बहुत खुशी मिली और उसने शहला से कहा, मुझे यकीन है कि तुम साद के साथ बहुत खुश रहोगी, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। ये कहते हुए फलक के लहजे में दुनिया भर का दर्द सिमट आया था और शहला सारे वजूद से कांप गई थी। अभी वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि साद उधर निकल आए। अरे दोनों किचन में खुसर खुसर में लगी हो और वहाँ सब चाय के इंतजार में सूख रहे हैं। शहला ने चाय की ट्रे फलक को थमाते हुए कहा, आप चाय ले जाएं। तुम भी आओ। ये कहकर फलक चाय की ट्रे पकड़े साद के करीब से गुजर गई। शहला ने जो कर्ब फलक के चेहरे पर देखा था वही कर्ब साद के चेहरे से भी आया था। ये देखकर शहला को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। अभी तो साद ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी के इस बाब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता है, लेकिन फलक के लिए अब भी उनके दिल के दरवाजे वाह हैं। शैला ने अपने वजूद का एहसास दिलाने के गरज से खांसा तो साद ने उसकी तरफ देखे बगैर फलक के अल्फाज दोहराते हुए कहा, तुम भी तो आओ शैला, और फलक के पीछे हो लिया। शैला उन दोनों के पीछे फौरन न जा सकी क्योंकि आंखों की नमी को छुपाने के लिए उसे कुछ वक्त दरकार था।

दिल की लगी। अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा रईसा परवीन की तहरीर करदा ये गीतों भरी कहानी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी है। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये नगमा।

कॉमेट फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। मौसीकी थी रवि की। और ये सुनिए मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले को। फिल्म है तू नहीं और सही।

मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, ये नगमा फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, और मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

दिल अपना प्रीत प्राय फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की थी मौसीकी, और ये है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चांदनी का चांद फिल्म से।

समापन के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी है। लीजिए सुनिए डॉक्टर रंजन जैदी का तहरीक का ड्रामा रुखसती।

0: अब और बेटियां ककड़ी की तरह बड़ी हो रही हैं, उन्हें भी जाना होगा।
1: मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये मतलब है कि अभी जेठ जी कुछ दिन और रुक जाते तो।
0: अरे वो कोई मुश्किल बात नहीं है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, घर की बात है।
1: बस यही मैं चाहती थी, कितनी मुद्दत बाद घर में बच्चों को एक टाइम भरपेट खाना मिल रहा है, कितने घरों से मैं काम लाने लगी हूँ। और अल्लाह सलामत रखे अपनी सलमा को, कसीदाकारी में उसका कोई सानी नहीं। दुखियारी घर की खुशहाली के लिए कैसे दिन रात जुटी रहती है, खुदा उसका नसीबा बड़ा करे।

0: अरे भाई तुम दरवाजे के बाहर है क्या? छोटी ने छत से बाहर निकाल दिया है।
1: हड्डियों का ढांचा होकर रह गए हो, क्या हो गया है मियां तुम्हें?
2: लगता है बीवी ने रोटियां देनी बंद कर दी हैं। अब अंदर चलने को नहीं कहोगे मियां?
3: अरे अरे अब मैं कोई दरबान तो हूँ नहीं, आपका घर है कौन रोक सकता है। आइए आइए।
1: सलाम भाई साहब। सलाम भाभी।
2: जिंदा
1: रहो,
2: खुश रहो।
1: आइए बैठिए, इधर बैठिए ना पलंग पर। अरे सलमा जल्दी से चाय ले आना। भाई साहब आप सफर से थक गए होंगे, आराम से पैर उठाकर बैठिए ना यहाँ। और भाभी पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, अलबत्ता चाय तो पीऊंगी। वो तो सलमा बनाकर ला ही रही है। मैं तो नहाने जा रही थी, सुना कि आप लोग आ गए हैं। बस आ गई मैं, बस दो मिनट लगेंगे अगर आप लोग इजाजत दें तो।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम आराम से नहा धोलो।
1: जी
4: मैं इस बीच अपनी सलमा से बातें करती हूँ।
1: जी हाँ, बस वो चाय लेकर आने ही वाली है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ,
4: कितनी तंदरुस्ती नजर आ रही है इस घर में।
5: इसलिए तो चाहता हूँ कि सलीम की एक लड़की को अपने घर की बहू बना कर ले आऊं, ताकि सलीम का बोझ कुछ हल्का हो सके। जैसे गरीबी में इतने बच्चे हैं, खुदा की बना यही है जहालत, और मुसीबतें झेलते हैं बेचारे मासूम बच्चे। ठीक से रोटी मिलती होगी और ना कपड़े।
4: वो तो सबको देखकर ही अंदाजा हो गया है।

0: देखो भाई साहब, घर की हालत तो तुमसे छुपी हुई नहीं है। मैं बीमार, बच्चे छोटे, सब बरातन कैसे कैसे घर चलाती है। जवान बेटी को घर में तो बिठाए नहीं रखना है, और वो तुम्हारी भी बेटी है।
1: हाँ भाई,
0: कई साल तुम्हारे पास रह भी चुकी है, और तुमने उसे ट्रेनिंग दिलाकर जो मेहरबानी की है वो एहसान की है तुम्हारा। इस जमाने में कौन भाई किसकी मदद करता है। पर एक बात साफ कहना जरूरी है।
1: हाँ कहो ना।
0: और वो दे कि शादी करने में तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, देने को हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहीं बाद में।
1: कैसी गैरों जैसी बातें करते हो सलीम, अल्लाह के शुक्र से घर में किस चीज की कमी है। अरे भाई सब कुछ तो है, हमें और क्या चाहिए।
2: बस हमें तो एक जोड़ा पहना कर अपनी बेटी दे दो, उसकी किस्मत से घर में बहुत कुछ है। अरे छोटी, तुम किस सोच में घुली जा रही हो, इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो क्या।
3: भाभी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बेटी है, जब चाहे ब्याह ले जाओ, पर बेटी की जुदाई का गम कितनी मुश्किलों से इस घर में चूल्हा जलते रहने की नौबत आई है, और भाभी तुम इसी जरिए को हमसे छीने ले जा रही हो, नन्हे नन्हे बच्चों की रोटियों का निवाला छीनने आ गई हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तुम तो जानती हो भाभी, सलमा के अब्बा की कोई कमाई नहीं, और मुझे भी कॉलोनी में कोई घर नौकरी नहीं देगा, चोरी करते पकड़ी जो गई थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं भाभी कि 28 नंबर क्वार्टर में काम करते वक्त जो चीजें छुपा कर लाती थी वो भी इन बच्चों के पेट के लिए।

0: पकड़ ली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर?
1: मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ दुल्हन।
0: बहुत मुसीबतें झेली है मेरी बच्ची ने, ख्याल रखना उसका।
1: इसमें रोने की क्या बात है? जहाँ सलमा ब्याह कर जा रही है वो घर भी तो उसी का ही है, उसके ताया अब्बा का, उसकी ताई का।

0: अरे इसमें होने की क्या बात है सलमा, चाची की ख्वाहिश भी पूरी हो देनी तो साल से पलक झपकते पूरा हो जाएगा। बस तब तक हमें अपने मखरूती उंगलियों से खुशबू से बसे रुमाल काल काल कर भिजवाती रहना। वैसे ही जैसे तुम हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के दौरान हमें रुमाल काल कर देती थी।
1: पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। आप मेरी अम्मी को नहीं जानते, वो
0: क्या कर सकती हैं? अब तो हमारा निकाह हो चुका है, हम दोनों तो जिस्म एक जान हो चुके हैं। वैसे भी अगर तुम्हारा यहाँ दिल घबराए, तुम्हें हमारी याद आए तो बस एक खत डाल देना, हम आ जाएंगे और अपने खूबसूरत बीवी को यहाँ से रुखसत करा ले जाएंगे। अबे भला कौन रुक सकता है।

0: पूरी रात बाहर से अंदर आकर क्या कर रहे हो?
1: क्या बताऊं, आंखों में नींद कहाँ है? मैंने सारा सुकून छीन लिया है। आओ बाहर आकर मेरे पास बैठो, कुछ बातें करो।
0: अच्छा चलो, मुझे भी कहाँ नींद आ रही है।
1: और बैठो इधर, मेरे करीब।
0: अरे आटो, कोई देख लेगा? इतनी पलटन पैदा करके भी जी नहीं भरा तुम्हारा? बुढ़ापा आ गया मगर मन तब भी खराब है।
1: अरे बूढ़े हो हमारे दुश्मन, कहां सवाल बच्चों की पलटन का, तो सब अल्लाह की देन है, दूसरे अपने आप पल भर जाएंगे। लड़कियों को बड़ा होते ही सलमा की तरह ठेलों दिला देना, कमाने लगेंगी।
0: और जब कमाने का वक्त आए तो मोइयों को ससुराल भिजवा देना। क्यों?
1: अब वो तो
0: देखो जी, मैं सलमा को ससुराल नहीं भेजूंगी, घर में फाके नहीं करवाने मुझे। हाँ
1: अरे कब तक लड़की को मायके रोल का क्या सकता है, एक ना एक

0: मुश्किल हो।
1: लेकिन मैं रोकूंगी जब तक रियाज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। ना बाबा, ऐसी फराख दिल नहीं हूं मैं।
0: वो तो सलमा की रुखसती रोक कर तुमने अपनी फराख दिली का सबूत दे ही दिया है। बहुत होशियार हो, मानता हूं। मुझे अपनी तकदीर पर फक्र है जो तुम जैसी।
1: तस्वीर तो तुम्हारी स्लेट पर लिखी थी, तब तुम्हारी दुकान कितनी चलती थी कि तुम्हारे आगे कल्लन से मेरी सगाई तोड़ दी गई। आज कल्लन इंस्पेक्टर है और उसके दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। मैं उसके घर में होती तो आज मेरा तो मुकद्दर ही फूटा था।
0: अब बीती बातों पर क्या रोना। शराब और चूहे की लानत खेल तो रहा हूं। चुटकी कह रही थी कि जाने से पहले एहसान तन्हाई ने सलमा से मिला था और देर तक बातें की उसने।
1: नहीं नहीं, मेरी नजर ने उसे कभी इतना मौका ही नहीं दिया। अगर बातें हुई भी होंगी तो क्या हुआ, फैसला तो मेरे हाथ ही होता है।
0: अरे जवानी अंधी होती है, तुमने तो
1: बस रहने दो। अच्छा चलती हूँ, नींद आ
0: रही है। ठीक है, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ।
1: सलमा, ए सलमा, सो गई क्या? थक गई होगी बेचारी। चलो अच्छा है, सो जाने दो, कल फिर से काम लाना होगा। चल शबरातन भी तू भी सो ले। ए छुटकी, अरे जरा उधर सरकना। हाँ हाँ, थोड़ा और आगे। हाँ ऐसे, शाबाश। कैसे उल्टे सीधे लेते हैं बच्चे। ए मजली, थोड़ा छुटकी को भी तकिया दे देना। सलमा सोई नहीं, देख रही हूँ तुम जाग रही हो। समझती हूँ एहसान को आंखों में बसाए खुली आंखों का ख्वाब देख रही होगी।
2: तुम्हें क्यों जलन हो रही है, अब सोने भी दो।
1: ऐहे तेवर तो देखो, निकाह होते ही बीबी का दिमाग सात आसमान को छूने लगा।
2: अब सोने क्यों नहीं दे रही हो?
1: सुन, तेरी एहसान से बातें हुई थी?
2: हुई थी, तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली ना, पूरे एक साल मुझे कमाने के लिए।
1: है अल्लाह, कैसी पंछी की तरह जबान चलने लगी है, जैसे मैं तेरी माँ नहीं दुश्मन हूँ।
2: अरे तेरे भले के लिए ही वक्त मांगा है, एक साल में कुछ तो जमा करूंगी ना, ताकि तुझे नंगी बुच्ची रुखसत ना कर सकूं। मोहल्ले वाले पूछेंगे दुल्हन मायके से क्या लाई है, तो शर्मिंदगी तो नहीं होगी।
3: हाँ हाँ, जैसे एक साल में गहनों से लाद दोगी मुझे। ये कहो कि इस एक साल में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए रोटियां जुटाने में मदद पहुंचाती रहूंगी।
2: हाँ हाँ, उड़ा ले मेरी मुफलिसी का मजाक, माँ नहीं डायन हूं मैं। इसका मर्द बेकार हो, उसे ऐसे ही ताने सुनने पड़ते हैं।
3: अब मुझे सोने दो या फिर मैं आंगन में जाऊं।
4: सलमा दिन रात मेहनत और मशक्कत करती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। उसके चेहरे पर पीले फूल आ गए, सूखते जिस्म पर उम्मीद का बसंत फैल गया, आंखों में ख्वाबों के सितारे जगमगा उठे। गुजरते वक्त की परछाइयों ने शुभरातन और उसके शौहर के सुकून का तिलिस्म गुम कर दिया। सलमा का भाई मुंबई भाग गया, उम्मीदों के ख्वाब पथरा गए और फिर एक दिन। सलीम, ए सलीम,
5: कौन?
4: अरे उठो भाई, मैं तुम्हारा भाई।
5: भाई? अरे तुम कब आए?
4: उठकर बैठो तो बताऊं। हाँ ऐसे भाई, पहली ट्रेन से आ रहा हूँ। तुम्हारी भावज और एहसान दोपहर की ट्रेन से आ रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से एहसान मास्टर बन गया है, सेंट्रल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा है। कितने खत लिखे पर तुम लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बहुत से कमेंट हो गए थे हम लोग।
5: क्या बताएं भाई, एक साथ

0: दोबारा पैदा हुआ था। सोचा था कि बेटा बाप की लाठी बनेगा, पर वो मुंबई था क्या। छोटी उम्र है, पता नहीं कैसे दिन गुजार रहा होगा। बस यही परेशानी नींद हराम किए हुए है।
1: अमां कितनी बेखबरी से सो रहे थे, और कहते हो कि नींदे हराम हो गए हैं। देखो भाई, गलत रास्तों पर चलकर तुमने अपनी जिंदगी खराब की, और अब बच्चों को कह रहे हो। अगर उसी बच्चे को पढ़ा लेते तो आज ये दिन न देखने पड़ते।
0: कहां से पढ़ा लेते, अब्बा ने बड़ी जायदाद छोड़ी थी जो इतनी बड़ी पलटन को। पढ़ाई पर पैसे खर्च होते हैं पैसे।
1: ये तुम किससे कह रहे हो, मुझसे? तो खुद एक मास्टर है, और जिसने दिए की रोशनी में अपनी पढ़ाई की और अपने एहसान को पढ़ाया। सरकार ने हजारों स्कूल खोल रखे हैं, मुफ्त किताबें मुहैया करवाई जाती हैं, और कितने ही वजीफे हैं। अरे एक बार बेटे को स्कूल का दरवाजा तो दिखाया होता।
0: जब किस्मत के पत्ते उल्टे पड़ते हैं तो लोग खिलाड़ी को अनाड़ी कहने लगते हैं। कहो कहो भाई, तुम भी कहो। हाँ, हमारे जो दिन कभी लौटेंगे।
1: अब इस उम्र में हम तुम्हें नहीं समझा सकते, पर हम तो सलमा को रुखसत करवाने आए हैं। एहसान का सीतापुर में तकरर हो गया है, वो वहां अकेला रहेगा। मैं चाहता हूं सलमा को कुछ दिन अपने यहां रखकर सीतापुर भेज दो।
2: ये सुबह सुबह मुसीबत कहां से नाजिल हो गई, कहीं ये रुखसती के लिए तो नहीं आ गए?
3: अरे बड़े भाई, आप? भाभी नहीं आई, कब आए? मेरा एहसान कैसा है?
1: अल्लाह का शुक्र है, सब दोपहर की ट्रेन से आ जाएंगे। मैं तो जल्दी इसलिए आ गया कि रुखसती का इंतजाम कर सकूं। पता नहीं तुम्हारे पास खर्च करने के पैसे हुए भी या नहीं।
3: हाय अल्लाह, इतनी जल्दी? नहीं बड़े भाई, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी नहीं रुखसत कर सकती, कम से कम 2-3 माह और रहने दीजिए ना। क्यों सलमा के अब्बा?
1: भाई ये क्या बात हुई, 1 साल की मुद्दत तलब की, हमने दी। आखिर हमें भी अपने बच्चे का मुस्तकबिल देखना है कि नहीं। वो ना सिर्फ तुम्हारा दामाद है बल्कि भतीजा भी है।
3: मैं आपकी परेशानी समझती हूँ भाई साहब, लेकिन आप मेरा दर्द भी तो समझिए, मेरे भी तो कुछ अरमान है।
1: क्या अरमान है, बोलो। जेठ हूँ तुम्हारा, वालिद की जगह हूँ, क्या करना चाहती हो, कितना पैसा खर्च करना चाहती हो? मैं खर्च करूंगा, कसम ले लो, जो इसकी किसी को भनक भी लगे। बोलो।
3: अब ऐसा भी जमीर मरा नहीं है कि लड़की देकर ससुराल वालों से पैसे लूं।
1: क्या कहा, मैं ससुरालिया हो गया? अरे मैंने सलमा को इसलिए अपने घर की बहू बनाना मुनासिब समझा कि वो इस घर की बेटी है, और तुम्हारे कंधों का बोझ कम करना भी अपना फर्ज जाना। मुझे सिर्फ बेटी की जरूरत है, जहेज की नहीं। इसकी हवस होती तो बहुत से दूसरे रिश्ते थे, और तुम कह रही हो कि
3: मैं इतनी जल्दी सलमा को हरगिज रुखसत नहीं करूंगी। अरे वाह, मैंने बेटी का सिर्फ निकाह किया है, उसे बेटा नहीं है।
1: देख रहे हो सलीम अपनी बीवी को? ये सब क्या हो रहा है, क्या चाहते हो तुम लोग? दोपहर को तुम्हारी भावज आएंगे, क्या उनके सामने भी ऐसा ही तमाशा खड़ा होगा?
0: भाई शबरातन अगर कुछ और मोहलत मांग रही है तो दे दो उसे, तुम तो औरत की नफ्सियात से वाकिफ हो। ये जिद किसी बड़े तूफान को जन्म दे सकती है भाई, से छोड़ दो, दे दो उसे मोहलत।
1: यानी कि
0: हाँ, वही जो तुम समझ चुके हो। और हाँ, बेटी में कोई ऐब नहीं है, ऐब है अपनी तकदीर में। तकदीर सही होती तो तुमको हम इतना कहने का मौका भी ना देते भाई। बहुत से रिश्ते मिल जाते, जो वो कहे उसे मान लो, और बार बार बार बार हमारी गरीबी का ताना मत जो समझे।
1: ओहो मेरे अल्लाह, ये तुम लोगों को क्या हो गया है भाई?
0: छुटकी चाय ले आ।

0: अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरे ही घर में उन्होंने मुझे कितना जलील किया, ये तुम दोपहर को देख चुके हो। देखो
1: हाँ,
0: तुम अब एक शर्त रख दो।
1: शर्त? कैसी शर्त?
0: उनसे कहो कि एहसान को यहीं इसी शहर में आकर रहना होगा। हाँ। अगर वो अपना तबादला यहाँ नहीं करा सकता तो ये रिश्ता टूटा समझो। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं भेज सकती। हाँ,
1: पागल हो गई हो? निकाह के बाद सलमा हमारी मिल्कियत नहीं रहेगी, ये तो कानूनी जुर्म होगा।
0: अरे तो कुछ और करो, कोई दूसरी तरकीब सोचो। सलमा हमारी रोजी रोटी का जरिया है।
1: वो तो है, ठीक है, जरा सोचने दो।
0: ऐसा रिश्ता है, अपनी औलाद को खुदगर्जी के अलाव में जीते जी धकेल कर उसे ईंधन बना देना चाहते हैं। ओ मेरे अल्लाह, इस घर में पैदा होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। परवरदिगार, क्या तूने मुझे इस घर के चूल्हे को जलाए रखने का ईंधन बनाए रखने के लिए जिंदा रखा है?
2: कौन? सलमा, इतनी रात यहाँ खड़ी सुबह रही है, मगर क्यों बेटे?
0: मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
2: क्या हो?
0: ये लोग मुझे तुम लोगों से जुदा करने की साजिश कर रहे हैं। बचा लो ताई, वरना मैं मर जाऊंगी। ये लोग अपनी खुदगर्जी के लिए रिश्ता तक तोड़ने पर आमादा हो गए हैं।
2: चुप रह मेरी बच्ची, रो मत, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी जैसी है। घबरा मत, आ मेरे साथ आ, अपने ताए के पास चल, मैं देखती हूँ ये रिश्ता कैसे टूटता है। अरे मजाक है क्या? निकाह के बाद उनका तुझ पर कोई हक नहीं बनता है। चल बेटा चल।

0: ये क्या सलमा, स्वेटर बुने जा रही हो? बात क्यों नहीं करती? देखो हमारी तरफ। अरे ये क्या आंख में आंसू? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो?
1: कुछ नहीं, यूं ही आंसू आ गए।
0: कोई बात तो जरूर है, खाओ हमारी पसंद।
1: सच, बस यूं ही।
0: समझ गया, मेरे सीतापुर जाने के दिन करीब आ रहे हैं, इसीलिए। यही ना?
1: नहीं तो बस यूं ही दिल भर आया।
0: तो फिर मायके की याद आ रही है? क्यों?
1: आपने ठीक समझा, कितने महीने हो गए घर से कोई खबर ही नहीं आई। शायद मेरे इस तरह से ससुराल आ जाने से अम्मी अब्बा खफा हो गए हैं, अभी तक दिल में लिए बैठे हैं। लेकिन मैं भी क्या करती।
0: बात साफ हो गई, मोहतरमा को माइकोफोबिया हो गया है। बेहतर है कि तुम चंद रोज के लिए मायके हो आओ, ठीक?
1: और आप?
0: भाई मैं और छुट्टियां नहीं ले सकता, देखूंगा। जी भर जाए तो खत भेज देना, लेने आ जाऊंगा। ओके।
2: सलमा ले बेटी, इन्हें और कार थे।
1: जी।
2: हरी भाई ने वादा किया है कि कल और काम देंगे।
1: लेकिन अम्मा इतना सारा काम क्यों बढ़ा रही हो? वो कभी भी मुझे लेने आ सकते हैं।
2: इतने दिन से तो खबर ली नहीं, लेने आ जाएंगे। उसे तो हम लोगों से दुश्मनी निकालनी थी, निकाल ली। बस जब से तू आई है एक हद तक नहीं डाला, यही मोहब्बत है।
1: ऐसा मत कहो उन लोगों को, वो तो फरिश्ता है। मगर मैं हैरान हूँ कि मेरे इतने सारे खतों का कोई जवाब क्यों नहीं आया। अब्बा से कहो ना कि वो मुझे मेरे घर छोड़ाए।
2: ओहो, मेरा घर? अब वो तेरा घर है, इस घर से जैसे कोई रिश्ता ही

0: नहीं रहा। और तेरे वालिद क्यों छोड़ने जाए? अरे लेने आना होगा तो वो खुद लेने आएंगे, इज्जत भी कोई चीज होती है।
1: और वक्त के मिजराब पर एहसान के इंतजार का लोहा सलमा की आंखों के आंसुओं में घुलने लगा। माँ तसल्लियां देती रही और बताती रही कि तेरे अब्बा भी भाई के घर गए मगर मायूस होकर लौट आए। लेकिन एक रात छुटकी ने अपनी बाजी को सुबकते देखकर राज फाश कर ही दिया। उसने बताया कि दूल्हा भाई इस तरह यहां कभी नहीं आएंगे क्योंकि सलमा का भेजा हुआ कोई खत उन तक नहीं पहुंचता। अम्मा हर खत उससे छीन लेती हैं और धमकाती हैं कि अगर राज फाश किया तो वो सख्त सजा देंगी।
0: अम्मा चीख क्यों रही है? क्या हुआ बोल, तुमने मेरे सारे खत गायब कर दिए।
2: कौन कहता है?
0: मुझे सब पता चल चुका है। तुम कैसे माँ हो, खुद को बहुत चालाक समझती हो, वो बेटी को कमाई का जरिया समझकर उसको इस्तेमाल करती रहना चाहती हो। अरे बाजार में क्यों नहीं बैठा देती हो, वहाँ ढेर सारे खरीदार आएंगे और तुम्हारी ढेर सारी आमदनी होगी।
2: सलमा
0: अरे कुछ तो खुदा से डरी होती, अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया है कि अब्बा मेरी ससुराल गए ही नहीं होंगे और तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहे हो। लेकिन कान खोल कर सुन लो अम्मा, इस बार तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी।
3: अरे रे रे रे रे रे, क्या किसका क्या हुआ? मेरी गाय आज क्यों सीने मार रही है?
0: वो गाय नहीं शेरनी है, इसे गाय बनाए रखने का तिलिस्म अब टूट चुका है। नोट बनाने की मशीन समझ रखा था आप दोनों ने मुझे।
2: सलमा के अब्बा बाहर देखो, लता एहसान आए हैं, जल्दी देखो बाहर जाके। सलमा बेटी मैं तेरे कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दे। अम्मी एहसान शायद तुझे ही लेने आया है, दोबारा उस पर मेरे मकर फरेब का राज मत आया करना, नहीं तो दुनिया की माओ पर से उनकी बेटियों का यकीन उठ जाएगा। बेटी तुझे अपनी इस बुरी माँ के कसम। अम्मी
4: यहाँ तो लगता है महाभारत छिड़ा हुआ है।
2: आओ बेटे, हम लोग बहुत फिक्रमंद थे, आओ आओ ना।
4: वो तो आप लोगों की शक्लों से ही लग रहा है।
2: आओ यहाँ बैठो, मैं चाय लाती हूँ, बैठो सब लोग।
4: यार कमाल हो गया, इतने दिन रहने का तो आपने वायदा नहीं किया था सलमा रानी। आपकी हर खत में बस एक गुजारिश कि चंद रोज और रह लेने दीजिए। बेहद हो गई, अब्बा के घर गया तो बड़ी डांट पड़ी कि इतने दिन कैसे छोड़ दिया, लेने क्यों नहीं गए? और हुक्म हुआ कि बस अब लेकर ही आऊं, और देखिए मैं हाजिर हूं। अरे अरे रोना धोना क्यों, सीने से लिपट जाना तो अच्छा लग रहा है। आंसू
2: आप बहुत बुरे हैं, लेने क्यों नहीं आए?
4: और सुनो, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं, लीजिए लेने आ गया हूं।

रिलीज और मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की दूसरी पेशकश, तेरा जादू चल गया फिल्म का नगमा सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया हुआ। नगमा निगार समीर, मौसीकी इस्माइल दरबार की।

मिनिस्टर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ ये दुबाना।

0: ये मोहब्बत है, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे। सोनू निगम और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। नीलेश्वर, मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी है आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम, मौजू है दरख्त।
1: हिंदुस्तानी तहजीब की तारीख में सिर्फ अहम शख्सियात और वाकयात ने ही अहम किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हमारी धरती की हर शय, हर एक जर्रा तहजीब इर्तका में अहम किरदार अदा करता रहा है। हिंदुस्तान की जमीन बेहद जरखेज है और हमारे जंगलों में बेशुमार किस्म के दरख्तों का सिलसिला हजारों बरस से मौजूद रहा है। जिंद हिंद के मगरबी घाट पर वाकई कोहिस्तानी जंगलों में सागवान के दरख्त हैं। यह हिंदुस्तान का शाहबलूत और ये दरख्त जमीन की रतूबत इस कदर चूस लेता है कि दूसरा दरख्त या पौधा उसकी सरजमीन में बाकी नहीं रह सकता। इसके मद्द मुकाबिल अगर कोई दरख्त है तो वो हिमालय का देवदार है, जिसके मानी है देवताओं का दरख्त। देवदार सागवान से भी बुलंद होता है और अपनी पूरी बुलंदी और खूबसूरती को उस वक्त पहुंचता है जबकि वो 6,000 फीट तक बुलंदी पर पैदा हो और नश्वनुमा पाए। चुनाचे इस बुलंदी पर उसका तना 20 से 25 फीट तक मोटा होता है। कदीम जमाने से हिमालय के देवदार की शोहरत लबनान के इसी नस्ल के दरख्त सीडर से भी ज्यादा थी। बाद मोरखों का बयान है कि सिकंदर ने देवदार के दरख्त की लकड़ी से ही अपने बेड़ों के जहाज बनाए थे। देवदार और सागवान अगर से शानदार और कीमती की दरख्त हो और इन दरख्तों की लकड़ी से हिंदुस्तानी माहिरीन ने ऐसी अजीमशान चीजें तराशी है जिनसे हमारे तहजीबी इर्तका में मदद मिली है, लेकिन इन दरख्तों के अलावा पदुकामत और खूबसूरती में हिंदुस्तान के मखसूस दरख्त बरगद का तस्करा जरूरी है। ये दरख्त अंगूर की नस्ल से है और हिंदुस्तान की सरजमीन इसके लिए इस कदर मुआफिक है कि इसके तकरीबन 1 से 5 किस्में हैं। बरगद न सिर्फ अंगूर की नस्ल के दरख्तों में सबसे बड़ा है बल्कि इसके तमाम दरख्तों का बादशाह कहा जाता है। हिंदुस्तान की तबई अखलाकी और तहजीबी जिंदगी पर बरगद का बड़ा असर रहा है। इस दरख्त का तस्करा हिंदुस्तान के कदीम अदबी तसनीफ में भी मौजूद है और जमाने हाल की तख्लीकात में भी बरगद को एक हमजीर अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसीसी मुसनफ लासेन ने हिंदुस्तान के इस दरख्त के बारे में बड़ी तफसील के साथ लिखा है। उसका बयान है, बरगद रुए जमीन के नबातात में गालिबन सबसे ज्यादा अजीब है। एक ही जड़ से गोया कई दालानों का एक सरसब्ज मंदिर बन जाता है जिसमें ठंडे सायेदार कमरे होते हैं जिनमें रोशनी का गुजर नहीं होता और मालूम होता है कि परवर दिगार आलम ने बनी नौ इंसान के लिए इस दरख्त को उस जमाने में पैदा किया था जब उसने मकान बनाने का हुनर नहीं सीखा था। बरगद की उम्र भी ज्यादा होती है और उसमें तजवीज का अमल भी होता है। इसका साया बड़ा पुरस्कार और कैफावर होता है। इस दरख्त के तने से जमीन से कुछ ऊपर पहुंचकर दूसरे तने भी निकलते हैं और उनमें दाणियां निकलती हैं जो नीचे जाकर जा पकड़ लेती हैं और रफ्ता रफ्ता इस कदर मोटी हो जाती है कि उसके वजन को संभाल ले। दांत वाले तने में से और ऊपर चलकर फिर छोटे तने निकलते हैं और सतूनों का एक बैरूनी हल्का बन जाता है। दांत वाला तना जितना ऊंचा होता है छोटे तने एक के ऊपर एक पायन हो जाते हैं, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता सब्जी के दालान और रास्ते बन जाते हैं। सिकंदर आजम खुद बरगद का बड़ा कदरदान था और दरख्त को मुतबर्रिक दरख्त तसव्वुर करता था। हिंदुस्तान के उलमा और अदीबों ने भी बरगद की बेपनाह तारीफ की है। जर्मन शायर हेगल ने भी इस दरख्त का तस्करा अपने नज़मों में किया है। हिंदुस्तानी तहजीब के इर्तका में इस दरख्त का वजूद कई एतबार से अहमियत कहा मिल रहा है। अव्वल तो ये कि इस दरख्त ने नबाताती एतबार से दरख्तों की अहमियत और इफादियत का एहसास दिलाया। दूसरे ये कि इस दरख्त की हैत और इसके अंदाज नशोनुमा से इब्तदाई दौर में रिहायशी तामीरात के नक्शे मुरतब करने में मदद मिली।

चित्रा और हरिहरन की आवाजों में ये दो गाना आप सुन रहे थे। फिल्म थी अफलातून। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: पहुंचाना था। इस फिल्म का दुगाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और संजीवनी की आवाजों में। कलाम था इरशाद कामिल का, मौसीकी संदेश शांडिल्या की थी। इसके साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आराब, ये आकाशवाणी है। आराब फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची अगले मरहले की बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। भारत पहली बार माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स के नायब सदर की जिम्मेदारियां संभालेगा। भारत ने फिर कहा है कि उसने दहशतगर्दी के लिए रकम फराहम करने के मामले से निपटने का तहैया कर रखा है। कल पूरी दुनिया में योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जाएगा। बरौने मुल्क भारतीय मिशन 2500 जगहों पर प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे। फुटबॉल में ब्राजील ने फीफा आलमी कप 2026 में पहली जीत हासिल की है। उसने हैती को 3-0 से हराया। मेजबान अमरीका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। और भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा ने 2026 की दोहा डायमंड लीग में चौथा मुकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से।

तुम बन फूल आज की फिल्म कार्यक्रम एक ही फिल्म में। हमने आपको बताया कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का स्टार कास्ट। अगर हम इस फिल्म के सितारों की बात करें तो इस फिल्म में थे सदाबहार अभिनेता जितेंद्र जंपिंग जैंग, बेहद खूबसूरत बबीता उनके साथ, और उनके साथ थे विलन के रूप में अपनी धाक जमाने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन इस फिल्म में जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका अंदाज थोड़ा सा अलग था। और इस फिल्म की अगर हम संगीत की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत से संगीत ने इस फिल्म को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफी जी की आवाज।

फिल्म बनफूल। इस फिल्म की एक खास बात आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में जितेंद्र साहब का जो लुक था, जो उनका कैरेक्टर था, वो उनके उस वक्त जो उनकी फिल्मों में इमेज थी उसके बिल्कुल अलग था। जी हाँ, उस वक्त जितेंद्र जी मशहूर थे अपने जंपिंग जैक वाले शहरी इमेज वाले लड़के के रूप में, जो कि सफेद कपड़े सफेद जूते पहनते थे। लेकिन इसके इतर इस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल एक सीधे सादे गांव के लड़के का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मासूम जानवरों से प्यार करता है और पूरी तरह से वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके करीब है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नाम है बन फूल, यानी कि जंगल का फूल, अब जंगल की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनी है तो जानवरों का होना तो लाजमी है। और इस फिल्म में जो जितेंद्र साहब का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो जानवरों के बहुत करीब था। लेकिन आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान असली हाथी और भालुओं का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, और जितेंद्र साहब को उन जानवरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए शूटिंग से काफी वक्त पहले वक्त निकाला और उसके साथ में उन्होंने थोड़ी सी दोस्ती की उन जानवरों के साथ, ताकि स्क्रीन पर जो उनकी दोस्ती है वो बिल्कुल असली लगे।

रविंद्र और बबीता की जो जोड़ी है वो इस फिल्म में कमाल की रही है। वैसे जोड़ी पहले भी फर्स्ट नाम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकी थी और इस फिल्म में इन दोनों के चुनाव के पीछे भी एक यही वजह थी, क्योंकि जितेंद्र साहब को विजय भट्ट जी ने ये सोच करके लिया कि भाई जो उनकी एक इमेज है उससे अलग उनको बनाना है, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे हीरो हीरो की तलाश थी जो कि मासूम भी दिखे और उस पर जो दर्शक हैं वो भी भरोसा कर सके, और जितेंद्र साहब से ज्यादा मासूम उस वक्त कोई नहीं होगा। और इसी तरह से उन्होंने बबीता जी का चुनाव किया इस फिल्म के लिए, और वैसे भी बबीता कपूर उस वक्त बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी और एक उनकी एक बबली और एक मॉडर्न इमेज थी, और इन्होंने इस फिल्म में भी शहर से आई एक लड़की का किरदार है जो कि शहर से गांव में आती है और वहां गांव में जो लड़का है एक गांव का उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे प्यार करने लगती है। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में जब बबीता जी को साइन किया गया था तो उस वक्त वो काफी ज्यादा हिट फिल्में दे रही थी, काफी ज्यादा उनका जो करियर था वो ऊंचाइयों पर था, लेकिन इस फिल्म में जब उनको साइन किया गया उसके बाद में उस वक्त उनकी जो शादी की बातें चल रही थी रणबीर कपूर के साथ में, रणधीर कपूर जी के साथ में, और फाइनल थी ऑलमोस्ट, और यही वजह थी कि विजय भट्ट साहब चाहते थे कि बबीता फटाफट से उनकी फिल्म में काम करे, टाइम से पहले वो हो जाए ताकि उनकी फिल्म इफेक्ट ना करे उनकी शादी की बात से। और वही हुआ, क्योंकि ये जो फिल्म थी वो बबीता के करियर की आखिरी दौर की फिल्मों में से एक थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने फिल्में छोड़ दी और ये उनकी शादी से कुछ वक्त पहले की ही फिल्म है।

दोस्तों फिल्म बनफूल, इस फिल्म में जहां जितेंद्र और बबीता को बनफूल के लिए साइन करके बहुत से लोगों को लगा था कि ये जो फिल्म है कोई डिस्को या क्लब वाला डांस भी होगा जरूर इस फिल्म में, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सफेद जूते पहनने वाले जितेंद्र जंगलों में धोती पहन के घूम रहे हैं और बबीता बिल्कुल सीधे साधे गांव के कपड़ों में नजर आई। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उस दौर की सबसे ग्लैमरस जोड़ी को बनफूल बनाकर पूरी तरह से कुदरत के रंग में रंग दिया था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर यानी कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में, तो उनके लिए तो मतलब क्या कहें, उनकी तो आवाज इतनी दमदार है और विलेन के किरदारों से वो सुपरस्टारों को भी टक्कर देते थे। इस फिल्म में भी उन्होंने अजय नाम के लड़के का किरदार निभाया जो कि बबीता के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और इस फिल्म में कई शॉट ऐसे भी थे जब शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग डिलीवरी करते थे तो वो इतने कड़क अंदाज में, उनके तेवर इतने कड़क होते थे कि सेट पर जो लोग होते थे जो कि शूटिंग देख रहे होते थे या बाकी लोग होते थे वो उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी को देखकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। यहां तक कि खुद जो विजय भट्ट जी हैं वो भी यही उनका भी यही कहना था कि विलन होने के बाद बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब में एक अलग तरह का आकर्षण था और शायद यही वजह थी और यही रीजन है कि उनकी ये दमदार पर्सनालिटी की वजह से वो हमेशा सुपरस्टार्स हीरोज वगैरह सबसे ऊपर हो जाते थे।

अच्छा दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कल्याण मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले के साथ। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीयू स्वर्णकार के साथ। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया दादा बाबू रोड गेडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, सैमन नवाज, हसन बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो संदेश है इसको भेजने वाले जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, इसको पहुंचाने वाले अजित भावसर जी, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी जो बातें हैं, जानकारी हम तक पहुंचाई है, और लिखते हैं कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इसी वजह से जितेंद्र की सादगी से भरी फिल्म वनफूल का रिलीज होना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शानदार संगीत और कहानी ने सबको चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और भी बहुत अच्छी इन्होंने हम तक जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। राम नताना पंजाब से, अजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश सरवद, प्रणाली सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नौनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। और गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येन्द्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलोक चंसोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश उन्होंने भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। तो दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक

का जुड़े और कार्यक्रम एक ही फिल्म जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यादों के इस कार्यक्रम में बनफूल फिल्म की ये छोटी सी दास्तान थी जो हम आप तक लेकर आए सादगी संगीत और सच्चे जज्बातों से सजी हुई फिल्म और ये फिल्म हमें बताती है कि सुकून आखिर कुदरत और मासूमियत नहीं छिपा है। उम्मीद है आज का सफर आप सभी को अच्छा लगा होगा आपके दिल को छुआ होगा और आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाजत सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए और अपनी सादगी को हमेशा संभाल कर रखिए। तो चलिए छोड़ जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत इस फिल्म से। नमस्कार।

नमस्कार, मैं आकाशवाणी हूँ। खबरों के नाल मैं राजविंदर सिंह, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओडिशा विच मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंचे ने। वो अज 17,000 रुपए तो वध दे विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे ते नींव पत्थर रखेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा की तैयारियों के हिस्से वजो अज देशव्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। सेबी ने बाजार समर्थन बढ़ाने, पालना की जरूरत आसान बनाने ते नियमबंद ढांचे को मजबूत करने लई कई सुधारों को प्रवानगी दे दी है। क्रिकेट च भारत ते अफगानिस्तान विचकार तीजा ते आखिरी एक रोजा मैच अज चेन्नई च खेडिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओडिशा विच मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंच गए हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबल पति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उन्होंने डिग्गा स्वागत किया। इसको पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपना 18वां जन्मदिन मनाने अपने पिंड पहाड़पुर पहुंचे सन। दोनों इतने पवित्र संथाली जहीरा और हो जहीरा के बागों में पूजा करेंगे। वो हुनर विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का भी दौरा करेंगे। इस तो बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के दो साल मुकम्मल होने के मौके पर राय रंगपुर च एक विशाल जनसभा च शामिल होंगे। वो ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सेहत संभाल, सिक्ख्या और सिंचाई समेत मुख्य क्षेत्र 47,000

0: उपयोग में विकास प्रोजेक्ट उद्घाटन करने के लिए भी पत्थर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी सादगी, निम्रता और लोक सेवा प्रति वचनबद्धता देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू की लंबी उम्र के तंदुरुस्त जीवन की कामना की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया उत्ते अपने संदेश में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल दौरान देश ने औरतों के सम्मान से लोक भलाई के खेत्र च अनेक प्राप्तियां कीतियां ने। कल दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय सेहतमंद जिंदगी लई योग है। यह विषय हर उम्र के योग की अहमियत को उजागर करता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभ्याचार मंत्रालय देश में 100 थावां पर खास प्रोग्राम करवा रहा है। इन्हें भारत की खुशहाल विरासत और योग परंपराओं का दिखावा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल के मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में करवाए जाने वाले प्रोग्राम च मुख्य मेहमान वजो शिरकत करेंगे। यह प्रोग्राम सवेरे 7:30 बजे तो सदर इलाके के गैरीसन ग्राउंड से शुरू होगा। राष्ट्रपति आज शाम जबलपुर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू पाल पटेल हवाई अड्डे दोनों का स्वागत करेंगे। योग प्रोग्राम के बाद श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें कन्वोकेशन समागम के मुख्य मेहमान वजो शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा तैयारियों के हिस्से वजो अज देश व्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। यह अभ्यास सवेरे 9 बजे शुरू होया और सारा दिन जारी रहेगा। देश भर के परीक्षा केन्द्रों च किए जा रहे इस अभ्यास में 2.5 लाख तो वध सुरक्षा मुलाजम हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान NTA ने कहा है कि वह कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा के सुचारू निरपक्ष और पारदर्शी संचालन लई पूरी तरह तैयार है। एक बयान में NTA ने कहा है कि यह परीक्षा भारत के 553 शहरों और विदेशों के 14 केन्द्रों में 2,89,000 तो वध उम्मीदवार करवाई जाएगी। एजेंसी ने कहा कि ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और प्रशासक समेत 2 लाख तो वध मुलाजम तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी बंगाल दिवस के मौके पर इस सूबे के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। यह खबरें तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNGJALANDHAR। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIRJALANDHAR। यूट्यूब के साडा चैनल है @AIRJALANDHAR। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से सबका प्रयास के सिद्धांतों को प्रेरित होकर भारत ने पिछले 12 सालों में बेमिसाल तब्दीली देखी है। आकाशवाणी खबर इस मौके 12 साल विश्वास के विकास के जड़ कल्याण के पेश कर रहे हैं। आज असि सरकार दिया परिवर्तनकारी पहल कदमिया बारे जानकारी दे रहे हैं जो कि समर्थ भारत के संकल्प को साकार करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 सालों में सरकार ने भारत के हाईटेक खेत्र च एक वड्डा बदलाव लिया। समर्थ भारत के दो मुख्य थंब ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप की तेजी नाल वध रही गिनती। सरकार दीआं नीतियां और फैसलों नाल सेमीकंडक्टर सैक्टर च सिर्फ योजनावां ही नहीं बनियां सगों हुण निर्माण ते डिजाइन नाल जुड़ियां कई इकाइयां भी काम कर रही ने। December 2021 विच इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया सी। इस लई 76,000 करोड़ रुपए का वड्डा बजट रखा गया। इस योजना तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट असेंबली और टेस्टिंग सहूलतों और चिप डिजाइन लिए 50% तक की माली सहायता प्रदान की गई थी। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 शुरू किया जिस लई 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सनअतों के सहयोग नाल खोज ते सिखलाई केंद्र स्थापित करना नवीं टेक्नोलॉजियां विकसित करना ते भविष्य लई हुनरमंद मनुख स्रोत तैयार करना। इस दे नाल ही भारतीय पुलाड़ नीति 2023 ने भी निजी कंपनियां नूं पुलाड़ खेत्र विच पूरी तरह काम करन दी इजाजत दिती है। हुण निजी संस्थावां रॉकेट लॉन्च उपकरण निर्माण ते संचालन डेटा इकट्ठा करन ते वंड अते ग्राउंड स्टेशनां वर्गियां गतिविधियां कर सकदियां ने। इस नीति दे बाद भारत विच स्पेस स्टार्टअप दी गिनती

0: 2014 च सिर्फ एक तो वध के अज 400 तो वध हो गई है। इस नाल देश की निजी पुलाड़ आर्थिकता नूं भी नवी गति मिली है। सैमी कंडक्टर मिशन दी प्राप्तियां अते तेजी नाल वध रहे निजी पुलाड़ खेतर राही भारत एक विकसित राष्ट्र बनन वल लगातार अगे वध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं चंचल शर्मा।
1: सभी ने बाजार समर्थन बनाने पालना की जरूरतों को आसान बनाने के नियमबद्ध ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सुधारों को प्रवानगी दी गई। कल मुंबई में सेबी की 204वीं मीटिंग में सेबी ने मृतक निवेशकों के शेयरों के आसानी से तबादले की सहूलत को आसान बनाया है। छोटी रकम के दावों के निपटारे लिए तेज ट्रांसफर प्रक्रिया लागू करने का फैसला किया गया है। सेबी बोर्ड ने कुछ मामले स्थायी खाता नंबर की जरूरत को हटाने और तस्दीक को सौखा बनाने के लिए क्यूआर कोड योग मौत प्रमाण पत्र स्वीकार करने का भी फैसला किया है। बोर्ड ने इस साल 1 अगस्त को छोटी हुई समा हदा और सख्त पालना नियमों के नाल खुले बाजार शेयर खरीद में मुड़ शुरू करने की प्रवानगी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कर्जदारों दरमियान मिली भुगत के गंभीर चिंता प्रकट की है। सर्वोच्च अदालत ने माड़े कब्जा के हाल की प्रक्रिया उत्तर भी सवाल किए। चीफ जस्टिस सोया कांत और जस्टिस वी मोहन के बेंच ने कहा कि बैंक टैक्स अदा करने वाले के पैसे उधार दे रहे हैं पर असरदार रिकवरी उपाय लागू नहीं किए गए। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया से प्रसारित उन दावों को खारिज कर दिया है जिन्हें कहा गया था कि कुछ मेल को लेकर विरोध दर्ज करवाने लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज गरज चमक नाल तेज हवाएं चलने की संभावना प्रकट की है। भारत और अफगानिस्तान दरमियान तीजा और आखिरी एक रोजा क्रिकेट मैच आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेडा जा रहा है। यह मैच हो तो थोड़ी देर पहले 1:30 बजे शुरू हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। खास खबर एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले रेम बहारपुर पहुंचे। वो आज 47,000 करोड़ रूपये के वादे के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा की तैयारियों के हिस्से वजो आज देशव्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। सेबी ने बाजार समर्था बढ़ाने पालना दरूरत आसान बनाने नियमबंद ढांचे को मजबूत करने कई सुधारों को प्रवानगी दी। क्रिकेट च भारत अफगानिस्तान विचकार तीजा और आखिरी एक रोजा मैच अब चेन्नई च खेडा जा रहा है। इस राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। सोटा अगला प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 से होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अनुसार ओडिशा में 47,600 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी फरोख और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मॉक ड्रिल का इनका किया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण

0: पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: पार्वती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी

0: संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: संख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं।

0: संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30

बहाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपंकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3

श्री राम भरत मिलाप 1965 में आई थी और तुलसी विवाह ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में उन्होंने माता सीता और देवी लक्ष्मी की भूमिकाएं निभाई। और अगर धार्मिक किरदारों के अलावा बात करें कुछ और मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी फिल्मों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई थी आराधना, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी और राजेश खन्ना साहब के किरदार के दत्तक मां की भूमिका अनीता गुहा ने निभाई थी। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसी फिल्म यानी आराधना फिल्म से सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

और इसी बीच आपके संदेश भी हमारे पास चले आ रहे हैं। और ये एक संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने लिखा है कि आपका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए शुक्रिया। हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से संदेश आया है। उदय भानपाल, जयंतपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार वालों का। और इन्होंने लिखा है कि सादर नमस्कार, आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं जो कि अनीता गुहा जी पर आधारित है। और आप इस कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, अनीता जी के फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं, वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का संदेश आया है कि वे कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बेहद पसंद आ रहा है।

जम गाम गुजरात से संदेश आया है अजीत भावसार प्रमिला भावसार का और इन्होंने अनिता गुहा जी के बारे में अच्छी रिसर्च की है और उनकी पर्सनल लाइफ यानी निजी जिंदगी के बारे में भी हमें संदेश भेजा है कि उनकी शादी अभिनेता माणिक दत्त से हुई थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे और अनिता गुहा का जो जीवन है उसका जो अंतिम समय है वो बेहद दुखद और गुमनामी में बीता। ये बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर यह भी था जब अनीता गुहा को लगने लगा था कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वे उन्हें सिर्फ भक्ति से जुड़ी हुई भूमिकाएं ही देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि कवि कालिदास, जय द्वारकाधीश और कृष्णा कृष्णा, जय संतोषी माँ के अलावा उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन, कान कान में भगवान और वीर भीमसेन जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। और फिर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को समझाया कि भाई वो भक्ति से ओत-प्रोत किरदार निभाने के अलावा और दूसरे किरदार भी निभाना चाहती हैं, और तभी उनको फिल्म मिली आराधना, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना की दत्तक माँ की भूमिका निभाई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, और अब उनकी एक और फिल्म से आपको एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं, और लता मंगेशकर जी की आवाज है, और वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बहुत ही प्यारा सा गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आइए सुनते हैं।

साल 1961 में आई फिल्म संजोग और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये बेहद ही भावुक कर देने वाला गाना है।

और इसी बीच आपका एक संदेश हमारे पास आ गया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह जसवीर सीता और गीता का। और इन्होंने लिखा है कि आप अनीता गुहा जी की फिल्मों के बारे में जो बता रहे हैं और उनकी जो गाने सुना रहे हैं वो बेहद हमें पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अनीता गुहा जी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जय संतोषी माँ ये जो फिल्म आई थी जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी थी, शुरुआती दौर में उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। और फिर किस तरह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने उनको कन्विंस किया, तब जाकर उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। और एक बात और भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई कि जय संतोषी माँ इस फिल्म का बजट था केवल 5 लाख रुपए, लेकिन इस फिल्म ने उस दौर में 5 करोड़ रुपए कमाकर एक तरह से इतिहास रच दिया था, क्योंकि ये फिल्म शोले के बाद 1975 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक और फिल्म उन्होंने की थी जिसका नाम था शर्मिली। हालांकि इसके अलावा उन्होंने अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन जैसी कई फिल्मों में भी वो नजर आई, लेकिन मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में भी आपको फिल्म जय संतोषी माँ का गाना सुनवाया था क्योंकि इसी फिल्म के जरिए उनकी किस्मत बदल गई, उनकी पहचान बदल गई और वो रातों रात देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गई। तो अब हम आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर जी की आवाज में एक प्यारा सा नगमा।

एक और संदेश आया है बिल्कुल अभी अभी गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार और प्रमोद कुमार का। उन्होंने लिखा है एक ही कलाकार में आज आप अनीता गुहा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि हमें बेहद पसंद आ रही है। गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी प्रस्तुतिकरण तो बेहद ही शानदार है। ये बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे इस चैनल को।

दोस्तों, अब हमें भी आपसे बिछड़ना होगा क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपको अलविदा कहें। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर होगी जल्द मुलाकात इसी चैनल पर किसी न किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज लोकगीत। शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुनेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नश होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन सकते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह की फिक्स्ड डोज मरकबात FDC अद्वियात की इंसान इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। ये सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहानात को साफ, शफाफ और खुश असलूबी से कराने की खातिर ये मशक कराई जा रही है। NTA ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनक़िद होगा जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया है कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें CCTV के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए GPS की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। योग का बैन अक्वामी दिन IDY 2026 कल दुनिया भर मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अक्वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायात को यकजा करना है। नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग के दिन की तकरीबात से कबल योग के लिए दौड़ और खसूसी सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने पर जोर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इंस्टीट्यूट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग को सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि पूरे साल बाकायदगी से इसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आसन और वर्जिश के जरिए रोजाना योग तर्ज जिंदगी से मुतालिक बीमारियों पर मुअस्सर तौर पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। योग के बैन अक्वामी दिन की अहम कौमी तकरीब कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम मोदी की क्यादत मुनक़िद होगी। इस साल सकाफती ताल्लुकात के भारतीय कौंसिल ICCR और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के इश्तराक से दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकामात पर योग के दिन की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं जिनमें 210 से ज्यादा भारतीय मिशन शिरकत कर रहे हैं। यह आलमी सतह पर इज्तमाही सेहतमंदी और तंदरुस्ती के फरोग में योग के रोल की अक्कासी करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैन अक्वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फदाइया के खसूसी तैयारे से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगे और जहां वो यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क भी जाएंगी और वहां पार्क की फील्ड टीम से मिलने के अलावा चीता ट्रैकर्स और सहारिया कबायली अफराद से गुफ्तगू करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने दुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि आज के दिन की

अभी आप समाप्त कर रहे थे अरमान फिल्म का नगमा, आवाजें थी शंकर महादेवन और अलका याग्निक की। अब आइए सुनते हैं तेरे मेरे प्यार फिल्म का नगमा, आवाज है श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए ब्रज लोकगीत।

सूबाई लोक गीतों के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोक गीत। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम। पहली पेशकश है गीता और सीता और गीता फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले।

अभी आप समाप्त कर रहे थे विवाह फिल्म का नगमा, आवाजें थी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, मैं हूं ना फिल्म से आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम। इसके साथ ही ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर होंगी।

0: सवा पांच बजे तक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। योग का बैन अक्वामी दिन IDY 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अक्वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायात को यकजा करना है। नई दिल्ली में वाकई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग के दिन की तकरीबात से कबल योग के लिए दौड़ और एक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने पर जोर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग को सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे साल बाकायदगी से इसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आसन और वर्जिश के जरिए रोजाना योग तर्ज जिंदगी से मुताल्लिक बीमारियों पर मुअस्सर तौर पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। योग के बैन अक्वामी दिन की अहम कौमी तकरीब कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुनाकिद होगी। इस साल सकाफती ताल्लुकात के भारतीय काउंसिल ICCR और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के इश्तराक से दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योग के दिन की तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं, जिनमें 210 से ज्यादा भारतीय मिशन शिरकत कर रहे हैं। यह आलमी सतह पर इज्तिमाई सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के फरोग में योग के रोल की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैन अक्वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरीसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फजाइया के खुसूसी तैयारे से जबलपुर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असराद में मेहमान खुसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क भी जाएंगी और वहां पार्क की फील्ड टीम से मिलने के अलावा चीता ट्रेकर्स और सहारिया कबाइल अफराज से गुफ्तगू करेंगी। योग के बैन अक्वामी दिन की असल कौमी तकरीब कल कोलकाता में होगी। आकाशवाणी के साथ एक खास इंटरव्यू में मरकजी वजीर ममलकत प्रताप राव जाधव ने, जिनके पास आयुष के महकमे की वजारत का आजादाना चार्ज भी है, बताया कि योग को मुख्तलिफ उम्र के जुमरों के लोगों के लिए और ज्यादा पुरकशिश बनाने की खातिर सरकार ने मुतअद्दिद इकदामात किए हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि बरसरेकार पेशावर अफराद के लिए सरकार ने वाई ब्रेक नाम का एक नया ऐप शुरू किया है। उनका यह इंटरव्यू आज रात 9:15 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर सुना जा सकता है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मगरब बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD केरला माहे तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और मुल्क के शिमाल मशरक इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा कि हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड मशरकी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। ब्राजील ने आज हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इफ्तिताही मैच में मराकेश से ड्रॉ के बाद ब्राजील पर इस मैच में जीत हासिल करने का काफी दबाव था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रूपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरब बंगाल के जैली हिमालय खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मर्तबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आजकल 15 मिनट पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे।

0: तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दे पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने पेश कर रहे हैं प्रोग्राम चौक माहिती।

भाई नरेंद्र बीबा दा गाया गीत पसंद आया ना? सुनन आलियो, मिलन है ता विछोड़ा भी है। तुसी समझ गए हो सो कि हुन जेड़ा गीत मैं तुहाकों सुनवेंदी पई हां उस विच विछोड़े दी गल है, प्रेम मोहब्बत दी गल है, छेड़ियां दे मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत विच विछोड़े दी गल, अपने माही नाल दिल दियां डूंघाइयां तो वध के प्यार करने वाली छुहेर के आधी है छड जान वाले आ, तू किथे दिल ला लिया, विछोड़ा तदन ही पौंदा है, जड़न दिल किथाई बियां वांज लगदा है, माही दे विछोड़े विच छुहेर दे दिल दा हाल दसेंदा, ए गीत सुनेंदे हां सुखविंदर बिट्टी दी आवाज़ विच।

देश में प्रोग्राम सुनने वाले सारे ही श्रोतियों करमजीत वालों प्यार भरे नमस्कार आदाब अते सत श्री अकाल। हाजिर हो गई हैं दोस्तों तुहाडे लिए आज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे सिलसिले लेके। हम तो थोड़ी देर बाद सुनांगे आज दी गल। तुहाडे नाल मैं सांझा करांगी आज दी गल दे विषय रिफ्यूजी डे दे बारे विचार। 5:40 ते पंजाबी नाटक तुहाडी नजर किता जाएगा बीबी ती। 6:10 ते सुगम संगीत सिलसिला तुसी सुनोगे जिस विच आज अजीत कौर रविकांत ते दीपेंद्र कौर दे गाए हुए गीतां नूं सुनोगे ते प्रोग्राम दे अखीर दे विच तमन्ना सिलसिला तुहाडी नजर किता जाएगा। सो वधिया साडे अज दी गल सिलसिले दे वाला

0: सरकार बड़े नाराज लग रहे हैं।
1: जाओ मैं भी तुमसे बात करता हूँ। इतने दिनों के बाद आज तुम्हें मेरी याद आई।
0: ओहो, तो याद तो सोने ओनू करीदा जिन्हों कदे भुले हुई है। तुसी तो साडे दिल च वसदे हो।

0: मैं भी बहुत इंतजार से नहीं करवाया, फट हाजिर हो गया। ये प्रोग्राम है राजदा,
1: जैसे तुम कहो। पर तुम्हारी वाइफ?
0: ओ वाइफ मोदी की मजाल है, वैसे भी वो कर दे बंदियां दी सेवा वास्ते ले आंदी है, ते तेरी सेवा ले मैं हाजिर हूं।
1: जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
0: मैनू तो तू होते ही बहुत चंगी लगती है मेरी नमकीन लवली।
1: बहुत रात हो गई है हले तक के आई नहीं, मैं तो हूं रोज ही देर ना लाने लग पे। घर विच कोई इन्हें कुछ कहता ही नहीं सिवाय डैडी जी तो।
0: प्रेत पुत्र तू हले भी जागती पई है, सारा दिन काम करती रहनी है,

0: कितना थकी पी है मेरी पी, जा जाके सो जा, अब पे आ जाऊंगा। ले आ गया लगता, खोल दरवाजा, थकिया होना बेचारा, रोटी पानी खा उन।
1: हाँ जी डैडी जी।
0: तू सुती नहीं हाले?
1: थोड़ी फिक्र हो रही सी, एक फोन ही कर देंदे, पेड़े पेड़े ख्याल आ रहे सी मन च।
0: तो मैं भी ना मेरी उड़ीक करिया कर, मेरा काम ही हो जाया, दिन रात का कोई पता नहीं हुंदा।
1: अच्छा रोटी ले आवां तुहाडे वास्ते?
0: मैनू भुख नहीं हैगी, मैं सौण लगा। जा तू भी जाके सौ जा, मैनू किसी चीज की लोड़ आई तो मैं आपे तेनू आवाज मार लू।
1: चंगा जी। रात अद्धी लंघ गई है, नींद है कि चंद्री आउंदी ही नहीं है, भी चंद्री मेरे नाल रुस्सी लगती है। लोकी कहंदे ने सोहरा घर ही कुड़ी का अपना घर हुंदा है,

0: है, दिन ते चढ़ भी गया, अज इन्होंने भी नहीं उठाया मैनू। आप भी किदा घोड़े वेच के सुते पे ने, कल राते नींद भी कित्थे आई होनी है चंगी तरह।
1: मैं क्या जी सुन दे नी, हर दिन सिर ते चढ़ आया, तुसी हले तक सुते पे हो, खेतां नू नहीं जाना।
0: बहुत गूढ़ी नींद च लगते ने।
1: प्रीत दे पापा, प्रीत दे पापा जी
0: बोलते क्या नहीं। मैं क्या जी

0: एक्स निकालती है। आजा मांग गया।
1: कौन है डैडी?
0: सुखे दे नाल कोई कुड़ी आई है।
2: कुड़ी? केड़ी कुड़ी नु नाल ले आया वीरा? चल के देखती हूं।
3: अपना ही कर समझ तू इनू लवली। राजी हाँ, ये मेरे नाल ही काम करदी है लवलीन। तुसी गल्ला करो भैन, ते मैं जरा हाथ मुंह धो के आया।
2: चंगा वीरे। आओ जी, जी आया नू। भाभी पानी ले आ। की नाम है तुहाडा?
4: जी लवलीन।
2: लवलीन लवलीन तो ओपरा जिहा लगदा है। मैं थानू लवी लवी कहांगी, किदा ना लगदा है?
4: ओके फाइन।
2: अच्छा तुसी इनू अपना घर ही समझो।
3: बस गल्ला ही करी जाएंगी भैने, या कोई सेवा भी करेंगी मेहमान दी?
2: ले वीरे, ए कोई मेहमान है? मैनू तो ये साडे घर दा मेंबर लगदी है। भाभी रोटी पानी दा करदी है, मैं कह के आनी हूं। ठीक है?
4: तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है।
3: एदा ही है सोने, जिन्हों असी प्यार करीदा साडे घर दे वी ओनू प्यार करदे ने।
4: मैं रोटी ले आई हां जी।
3: तू रोटी पा के रख दे, असी आपे ही खा लांगे। ते तू जाके सो जा, असी हले दफ्तर दा काम करना।
4: चंगा जी। तुम्हारी वाइफ तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधी सादी लगती है।
3: तो मैं गड़ा टेढ़ा? मैं भी तो सीधा ही हां, जलेबी वर्गा।
4: मेरा अपना तो इत्थे कोई भी नहीं, पर कहन नू मेरा सब कुछ है। देखन नू किन्नी सुखी लगदी हां मैं, पर कोई मेरी आंदरा चीर के देखे, मेरे अंदर चाती मार के देखे, किन्ना खालीपन, किन्ना सुन्नापन ने। ऐसा लगता है कि पानी च गोते खांदी जा रही हूं, किनारा लभदी पर किते नजर नहीं आंदा। हे मेरे रब्बा, किते भी कुछ नजर नहीं आंदा। किते जावा, किन्नू कवा, मेरी तो इत्थे किते भी सुनवाई नहीं, किते भी सुनवाई नहीं। हाय रब्बा, अज तो सिर भी बड़ा दुखी जाता, की करा
5: किया है पुत? पुत किया है? उल्टियां क्यों करी जानी है? जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होना।
3: राजी, राजी छेती आ, देख कितने है तू, देख रही की हो जाता प्रीत नू। राजी
1: कुछ नहीं होया डैडी जी, तुसी तो बस सोई घबरा जाने हो, थोड़ा जा कहो अदरक चट ले, ठीक हो जाना है।
3: उठ ले, उठ उठ पुत, उठ ले ले, चट ले इनू थोड़ा जा, चट ले ले मेरी धी। प्रीत उठ, होश करती है। राजी राजी जल्दी जल्दी यार डॉक्टर नू बुला के लिया। हाय नहीं देख ऐ की ऐ की मेरी तेन हाय अखा क्यों मिटी जाती है? डॉक्टर साहब देखो, जल्दी देखो, डॉक्टर साहब देखो, देखो की अखा नहीं खोलती पी, देखो डॉक्टर साहब की हो मेरी तेन। तुम घबराओ ना, मैं देखता हूं। डॉक्टर साहब कुछ तो दसो, की है मेरी धी नूं? ये तुसी मेरे कोलों पुछ रहे हो कि की होया तुहानू? ये तुसी मेरे कोलों पुछ रहे हो कि की होया इहनूं? मेरे तो ज्यादा तुहानू पता होना चाहिए।
5: की होया डॉक्टर साहब, कुछ तो दसो।
3: ये तो पता नहीं कदों दी मानसिक तौर ते परेशान सी, ते हुणे बीमारी दे अंदर इन्नी ज्यादा वध गई कि ब्रेन हैमरेज का कारण बन गई।
5: डॉक्टर साहब
3: इहदे दिमाग दी नाड़ी फट गई है।
5: डॉक्टर साहब किसे तरह बचा लो मेरी धी नूं, डॉक्टर साहब किसे तरह बचा लो, मैं सारी उम्र तुहाडा एहसान नहीं भुलांगा। डॉक्टर साहब किस बचा लो इहनूं।
3: आई एम सॉरी, बहुत देर हो चुकी है, मैं हुण कुछ नहीं कर सकता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलो

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में सबसे पहले बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की, ताकि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक FPO का फायदा नहीं ले पा रहे हैं या इस संगठन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको जानकारी मिले ताकि वो इसका लाभ उठा पाए। किसान बहन भाइयों, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO आप किसान भाइयों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और आपकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसान भाइयों को स्केल की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल, हमारे जो सीमांत किसान भाई बहन हैं और छोटे और भूमिहीन किसान हैं, उनको FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आप किसान भाइयों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है।
1: बिल्कुल, FPO एक ऐसी संस्था है जो छोटे किसानों को एक साथ जोड़ती है और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है। ये कृषि आधारित प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों में भी शामिल होता है। ये किसानों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, तो हमारे वो किसान बहन भाई जो इस संगठन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उनकी बिजाई का समय चल रहा है और खरीफ फसलों के लिए हमें बीज की, खाद की आवश्यकता होती है, तो किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी कि FPOs के माध्यम से खरीफ इनपुट यानी कि बीज खाद की सामूहिक खरीद कैसे की जाती है, इसी विषय को लेकर के आपको सुनवाते हैं एक जानकारी दे रहे हैं प्रवीण कुमार सक्सेना, जो कि एक FPO किसान हैं और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी जो कृषि अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में ऐसे किसान भाइयों को भी आमंत्रित करते हैं, कृषि उत्पादन संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार नरसेना जी, जो कि एक किसान उत्पादक संगठन चला रहे हैं, और इनका ये किसान उत्पादक संगठन क्या है और कहां पर चला रहे हैं, क्यों हम इन्हीं से इसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। तो प्रवीण कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार साहब,
2: मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपका संगठन में कितने लोग हैं और किस तरीके से काम करता है।
3: हमारा जो संगठन है नरसेना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम लोगों से 597 जो रजिस्टर्ड किसान हैं, तो उनके लिए हम लोग बीज का उत्पादन एवं ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं
2: जी।
3: बीज जनरली क्या है, हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो पांचवा है वो TL सीड भी होता है। तो यदि हम किसान भाई सभी मिलकर एक संगठन बनाकर बीज का उत्पादन करते हैं, तो इससे हमारे किसान भाइयों को उत्पादन में एक जो इनकम कह सकते हैं, जो

0: क्षमता है वो उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या विश्वविद्यालय है तो वहां से हम लोग ब्रीडर सीड परचेज कर सकते हैं, और ब्रीडर सीड परचेज करने के बाद में जो हमारे किसान भाई हैं जो अपने मेंबर हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और ब्रीडर सीड से हम लोग फाउंडेशन सीड बनाएं जिससे कि किसानों की जो इनकम है जो जनरली खाद्यान्न के लिए लोग जो फसल तैयार करते हैं उससे ज्यादा हमको बीज बनाने में आय मिलेगी किसान भाइयों को। तो यदि हम फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम लेके आते हैं तो अपने खेत पर हम लोग सर्टिफाइड सीड तैयार कर सकते हैं जिसको हम आगे चल के अच्छे रेटों में अच्छे मूल्य पर हम लोग उसको बेच सकते हैं। जिस तरह से हमारा किसान संगठन काम कर रहा है, हम बीज उत्पादन के साथ साथ में हम लोग ऑर्गेनिक खाद पर भी काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो काउ यूरिन बेस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स है यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग यदि हमें करनी है, यदि हमको केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना या किसी भी जहर का प्रयोग नहीं करना फसल में, तो आखिर हम उसकी जगह पर किस उत्पाद को लेके आए जिससे कि हमारा कीड़ा भी और रोग भी कंट्रोल हो जाए और उत्पादन भी लगभग उतना ही निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा किसान संगठन ने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में काउ यूरिन डेयरी गोमूत्र की डेयरी बनाई हुई है जिनसे हम लोग 10 रुपए लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं। इससे क्या होता है जो किसान भाई है जो दूध के साथ साथ में उन डेयरियों पे गोमूत्र को बेचता है जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, और उस गोमूत्र को हम अपनी यूनिट पे लाके उससे हम दवाई बनाते हैं। जैसे 3 प्रकार की हम लोग दवाई बनाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है और एक दानेदार फॉर्म में है। और इसका जो माध्यम है बिक्री का हमारे संगठन ने एक जो सहकारिता विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का उससे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है जो हर जिले में लगभग किसी जिले में 96 सोसाइटी है, किसी में 167 सोसाइटी है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, बुलंदशहर के अंदर 167 काउंटर हैं, बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, सरकार के द्वारा खाद बीज बिक्री जो केंद्र होते हैं
1: जी।
0: तो हम लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ सहकारिता से जिससे कि किसान को ये दवाइयां सस्ते दर पे उपलब्ध हो सकती हैं। हमारा संगठन इन दवाइयों को बनाने के बाद में सहकारिता को सप्लाई देता है जिससे कि किसान केमिकल जो फर्टिलाइजर है धीमे धीमे उसमें कमी आती जा रही है, लोग लगाना नहीं चाहते। हम किसान अपने मेंबरों को ये भी समझाते हैं कि हम कम से कम केमिकल का प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल का प्रयोग करने से जो पौधे की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती चली जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद केमिकल का प्रयोग करने से कीड़े अथवा रोग के लिए जो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं इससे क्या पौधे की इम्यूनिटी कमजोर होगी, और धीमे धीमे क्योंकि सिस्टमिक पॉइजन जो होता है 1 महीने तक उसमें पौधे के अंदर उसका असर होता है, वो धीमे धीमे ये स्लो पॉइजन वो हमारे अंदर भी आता चला जाता है। तो यदि हम ऑर्गेनिक जो गोमूत्र से बनी हुई दवाई जो हमारे किसान संगठन तैयार कर रहा है और सहकारिता के माध्यम से जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं यदि उनका प्रयोग करते हैं तो उनका जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा जिसका सेवन पूरी मानव जाति करेगी। तो हम कह सकते हैं कि गाय का संरक्षण भी इस मॉडल में है और पूरी मानव जाति की सुरक्षा भी इसी के अंदर निहित है
1: जी। लेकिन जानना चाहूंगा कि जो बीज का उत्पादन करते हैं तो बीज तो आपने मान लिया किसी संस्थान किसी विश्वविद्यालय से लिया, और उसका जब उत्पादन करते हैं वो किसकी देखरेख में होता है और कौन सी कृषि क्रियाएं करते हैं, क्या खास जो एक खाने वाला उत्पादन किया जाता है और एक जब बीज का उत्पादन किया जाता है उसमें आपको क्या विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है?
0: देखिए हमारे जो किसान संगठन है वो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वैरायटी जैसे DWR करनाल जो गेहूं का शोधन निदेशालय है करनाल में या हम पूसा इंस्टीट्यूट से हम लोग ब्रीडर सीड परचेज करते हैं। ब्रीडर सीड परचेज करने के बाद में जो स्लिप होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सीड सर्टिफिकेशन की एजेंसी है तो हमारे संगठन के द्वारा वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसकी फीस वहाँ पर हम लोगों को देनी पड़ती है। जब उसका हम लोग अपने आप प्रोडक्शन करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ठीक रहनी चाहिए, तो वो सबसे पहले सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में होती है। वहाँ से सीड इंस्पेक्टर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो हमने वैरायटी लगाई है क्या उसमें किसी दूसरी वैरायटी के पौधे तो नहीं आ रहे, यदि दूसरी वैरायटी के पौधे आते हैं तो उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंकने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रोगिंग। तो रोगिंग मस्ट होती है इसके अंदर, यानी जिन पौधों को हम नहीं चाह रहे अनिच्छित जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैरायटी है जो पौधे हैं वो 100% जेनेटिक प्योर हैं। तो ये सब हम सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराते हैं। उसके बाद में एक जगह मिक्सिंग का सिस्टम होता है, जब उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करते समय भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो थ्रेसर होता है जो दूसरी वैरायटी को निकाल के आता है तो उसको हम लोग साफ कर लें। दूसरा एक मिक्सिंग का चांस होता है, जो बैग्स होते हैं उनमें भी पुरानी वैरायटी जो होती है जो पहले हमने हार्वेस्टिंग की थी उनके दाने लगे होते हैं तो उनको हम ठीक तरह से झाड़ लें, झाड़ने के बाद में उस सीड को हम पैक कर सकते हैं और प्रोसेस करके भी हम लोग, या यदि हमारा संगठन काम कर रहा है प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट नहीं उनके पास में तो भी हम लोग मैनुअली उसको साफ करने के बाद में अपने किसान भाइयों को सस्ते दर पर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस वैरायटी को। और जैसा कि आपने कहा कि जो खाने वाली जो फसल है उसमें तो क्या डिफरेंस है, जो खाने वाली फसल है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको

0: ऐसी जो हमारे किसान संगठन है उससे वो इनकम कर सकता है, पूरे संगठन के जो मेंबर्स होते हैं उनको उसका फायदा मिलता है सर।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम इसके कटाई से लेकर गहाय पैकिंग तक पूरी सावधानी इसमें बरतते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी उत्पाद उसके आय जब ही होती है जब उसकी मार्केटिंग ठीक से हो, तो आप मार्केटिंग में क्या सावधानी बरतते हैं और किस तरीके से बीज को किसानों तक पहुँचाते हैं?
0: सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने सीड प्रोड्यूस कर लिया तो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान संगठनों के सामने आती है कि हम उसकी प्रोसेस कहाँ कराएं। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगी होती है। तो हमारा किसान संगठन यदि उस सीड को, क्यों सीड किसान के पास वो हेल्दी जाना चाहिए, जब हम किसान भाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फसल है वो इतनी बढ़िया नहीं हो पाती जितनी कि उसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद में होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब है हेल्दी सीड। जैसे कि जो नजदीकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, तो हमारे जो किसान भाई हैं, जो किसानों का संगठन है, एज ए बल्क के रूप में हम लोग वहां ले जाएंगे और सस्ते दर पर वो हमारी सीड को प्रोसेस कर सकते हैं। संगठन अपने नाम से भी उसको पैक करा सकता है और अपने नाम से उसे बेच सकता है, क्योंकि हेल्दी जो सीड होगा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी जो जनरेशन आने वाली है वो भी अच्छी जनरेशन होगी, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस होगा, जो यील्ड आएगी वो अच्छी आएगी और उसको मार्केट में अच्छा रेट हमें मिल सकता है।
1: बिल्कुल, अगर उसको अच्छे तरीके से सफाई करके सही से पैकिंग किया जाए, और कहते हैं कि जो चीज दिखने में अच्छी होती है वो बिकती है, तो पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया जाता है।
0: हाँ, क्योंकि अलग अलग किसान यदि पैकिंग कराए तो किसान के लिए संभव नहीं होता, लेकिन यदि हमने किसान संगठन बना लिया
1: जी,
0: तो हम लोग अपने जो मेंबरों के द्वारा सीड प्रोडक्शन हुआ सर्टिफाइड, एज ए बल्क में हम लोग नजदीक बुलंदशहर में भी हमारा एनएससी की प्लांट यूनिट लगी हुई है, मेरठ में भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक यूनिट लगी हुई है, तो कहीं भी हम लोग किराए पर उसको प्रोसेस करा सकते हैं। और पैकेजिंग पर तो ध्यान इसलिए देना आवश्यक है कि जो देखने में सुंदर होना चाहिए, तो यदि मार्केट में लेके जाते हैं तो हमको पैकेट को फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, तो पैकेट भी सुंदर होना चाहिए, उससे भी हमें एक अच्छी इनकम मिलती है, किसान उसे जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करता है, तो पैकेजिंग का भी अपना एक रोल है पैकिंग के समय में, और उससे भी हमारा किसान संगठन अपनी आय बढ़ा सकता है।
1: जो आप जैविक खाद या आप गोबर गोमूत्र से तैयार करते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है?
0: सर, एक नया फॉर्मूला है, हम इसको अभी यूपी में एक नई परियोजना के तहत कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारे पास गो सेवा आयोग के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें नए फॉर्मूले के साथ में क्या कि हम लोग सबसे पहले काउ यूरिन बेस्ड जो ऑर्गेनिक इनपुट्स बना रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए गाय का मूत्र एवं गाय का गोबर, क्योंकि जो मूत्र होता है उसकी जो स्पेशलिटी है उसमें एक साइटोकाइनी हार्मोन्स पाया जाता है, जिसका काम है फसल के अंदर फूलों की संख्या बढ़ाना। ये साइटोकाइनी हार्मोन्स और किसी जीव के मूत्र में नहीं पाया जाता, केवल गाय के मूत्र में ही पाया जाता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, जो सड़कों के किनारे पर हर्ब खड़ी रहती है, तो हम लोगों ने अपनी छोटी सी एक लैब में ये हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, किसी में बोरोन की मात्रा ज्यादा है, किसी में जिंक की मात्रा ज्यादा है, किसी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, उसी के रेशो को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तीन तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं। इसमें गोमूत्र में वो जो हर्ब होती है उसको बॉइल करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, निकालने के बाद में हम लोग उसको पैकिंग करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग। यदि उसका स्प्रे हम लोग किसी भी फसल में करते हैं तो वो 100% चाहे वो इंसेक्ट हो या डिजीज हो उसको कंट्रोल करती है और प्लांट की वो ग्रोथ बढ़ाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। केमिकल में और ऑर्गेनिक दवाई में यही डिफरेंस होता है कि केमिकल 24 घंटे में अपना असर दिखाई देता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद है उसका 4 से 5 दिन फसल के अंदर उसका असर दिखाई देने लगता है।
1: जो आप खाद तैयार करते हैं गोबर के गोमूत्र के और जो भी इससे दवाई बनाते हैं, तो इनको आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, कैसे इसको बेचते हैं, किसानों को कैसे जागरूक करते हैं कि इसका प्रयोग करें?
0: एक तो होता सर मार्केटिंग, एक होता मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो हम लोगों का जो एग्रीमेंट है सहकारिता के माध्यम से, पहले हमारा संगठन प्राइवेट में उतरना चाहता था, लेकिन प्राइवेट में जो खाद बीज की जो दुकानें होती हैं उनको एक बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए
1: जी।
0: जैसे सपोज करिए हमने उनसे किसी रेट तय किया तो कई गुना मार्जिन किसान से लेने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन ने सहकारिता से एग्रीमेंट किया, क्योंकि सहकारिता जो होता है, सहकारिता मंत्रालय किसानों के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करता है। हर सहकारिता की हर जिले में अपनी सोसाइटी होती है, जिनको बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, खाद बीज की दुकानें होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इसका कंट्रोल एआर कोऑपरेटिव, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है एआर कोऑपरेटिव, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। और खाद बीज की सोसाइटी के द्वारा जो किसान को दवाई मिलती है वो सस्ते दर में प्राप्त हो जाती है। और ये हमने बुलंदशहर में एक नया मॉडल सरकार को बना के दिखाया कि इस तरह से भी हम काम करें, और पूरे राज्य में भी हम काम करेंगे तो गाय की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और यदि हम केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करना, क्योंकि फर्टिलाइजर की एक सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आ रही है, रही है, हर सोसाइटी पर लाइन लग रही है, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही है वहां पर, और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही ठीक तरह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन

0: दिक्कत आती है। इसके लिए यदि हम लोग साथ में इन दवाइयों को हम देते हैं, कि बुलेसर में हम लोगों ने इसको सरकार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और किसान इन दवाइयों से बहुत खुश है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो छोड़े हुए हैं, जिनका मकसद है कि जो बीपैक से जो गांव आते हैं, 9 गांव आते हैं, किसी में 10 आते हैं, उन गांव में जाके किसानों की गोष्ठियां करते हैं, उनके यहां पर हम लोग डेमो लगाते हैं, डेमो लगाने के बाद में किसानों की फिर मीटिंग करते हैं, उनको दिखाते हैं इस दवाई का इतना प्रभाव है इस पे, साथ में चेक भी लगाते हैं कि जिन खेतों पर केमिकल लगाया जा रहा है और साथ में जिसने हमारी दवाई का डेमो लगाया है उनमें क्या डिफरेंस है, सब मार्केटिंग डेवलपमेंट के विभाग का काम है। हम किसानों को अवगत कराते हैं, समझाते हैं कि आप इस दवाई का प्रयोग करें और ये दवाई आपको नजदीकी जो बीपैक्स सोसाइटी है वहां से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि सस्ते दर में आप लेके इसको यूज कर सकते हैं। सर,
1: तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि वो दूसरे तरीके के भी किसान संगठन बना सकते हैं जिससे उनको लाभ मिल सके?
0: देखिए, हम लोग गोष्ठियों में जहां पर हमारा संगठन काम कर रहा है उसके बाद में भी हम किसानों को ये बताते हैं किसान संगठन कैसे बनाए जाते हैं और एक किसान संगठन मिलकर कैसे कार्य कर सकता है। यदि हम एग्जांपल बताएं, यदि कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उसको किस तरह से पीजीएस के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराएं, क्योंकि किसान ऑर्गेनिक कर लिया लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं करा पा रहा जिससे कि उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलता, तो उनको बताते हैं गोष्ठियों में कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलेगा, जब इस प्रोड्यूस को आप बेचेंगे मार्केट में लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई संस्था के द्वारा हमने इसको सर्टिफाइड करा, ये हमारी ऑर्गेनिक खाद्यान्न है, तो उससे मार्केट के जो और जो खाद्यान्न का जो मूल्य है उससे डबल हमको मिलने के चांस रहते हैं, 100% हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी हम कह सकते हैं इसके द्वारा।
1: बहुत से किसान भाई संगठन बनाते हैं कि जो उत्पाद है उसका संस्करण करके उसके उत्पाद बेचते हैं, उसका भी संगठन बनाए हुए हैं, तो उनके लिए आप कह
0: रहे हैं? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो किसान भाई अपने सेपरेट कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार करते हैं, जैसे दालें तैयार कर रहे हैं, सरसों का तेल तैयार कर रहे हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, क्योंकि जो अपना किसान है जो स्वयं अपने प्रोड्यूस पे तैयार करके उसे बेचने में दिक्कत आती है, लेकिन यदि इसी को हम संगठन का रूप दे देते हैं, ऐसे किसानों को मिला के एक संगठन बना देते हैं, तो यदि मिलके काम करें हम लोग, एक ट्रक, दो ट्रक, चार ट्रक, जितना भी माल होता है तो उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी हमें सस्ता पड़ेगा और वो कंपनी भी उस प्रोड्यूस को लेने को तैयार हो जाएगी, तो संगठन बना के इस तरह से किसान भाई अपना लाभ बढ़ा सकता है।
1: जी बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी FPOs के माध्यम से खरीफ इनपुट बीज खाद की सामूहिक खरीद, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे FPO किसान प्रवीण कुमार सक्सेना और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं राकेश त्यागी।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश। कलाकार थे राकेश त्यागी।
1: नीलम बहन, भारत सरकार घरेलू स्तर पर सोयाबीन जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। ये योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है और साथ ही खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर 28% तक करना है और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक तेल देने वाले सोयाबीन के बीज किसानों तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन सोयाबीन के बारे में। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा सुनेंगे और राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे और साथ ही किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, इस विषय पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं वारसी ब्रदर्स की आवाज में ये कव्वाली।

0: सुन रहे थे कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का प्रेरणादायक जीवन सफर, विनम्रता और जनसेवा के प्रति समर्पण देशभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का जीवन संघर्ष से शिखर तक की अनुकरणीय गाथा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि उनका जीवन नारी शक्ति की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की शालीनता, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा सभी का सदैव मार्गदर्शन करती रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की यह भूमि भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की नई ऊर्जा राज्य के चहुमुखी विकास और स्वर्णिम भविष्य की प्रतीक बन रही है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल निरंतर प्रगति, समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस संगोष्ठी का विषय वर्तमान समय में शास्त्रार्थ का अनुप्रयोग था। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने बताया कि भारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति का आधार संवाद, तर्क और ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ ने सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए समाज को बौद्धिक दिशा प्रदान की है।
4: लोकतंत्र की जो आत्मा है वो शास्त्रार्थ में बसती है, संवाद में बसती है। संवाद का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण से वाद विवाद। आज के युग में स्पीकर के नाते मैं कह सकता हूँ, मैं प्रतिदिन ये महसूस करता हूँ कि शायद संवाद और सहन शक्ति उसमें कमी आ रही है और उसके पीछे का दृष्टिकोण ये है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित अगर हो जाएगा तो फिर सच कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो हमारे आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया निधि परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय ने कार्यक्रम के दौरान निर्भय चेतना प्रशिक्षण मॉड्यूल भी शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि निर्भय चेतना महिलाओं से संबंधित मुद्दों, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल है, के प्रति पुरुषों के जागरूक करने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पंचायती राज के सचिव विवेक भारद्वाज ने कल सम्पन्न हुए कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समान भागीदारी सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नीट 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित

0: की जाएगी। यह परीक्षा दिल्ली समेत भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की। एनटीए ने कहा कि पुनः परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार युक्त बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जीपीएस सक्षम वाहनों का उपयोग तथा गोपनीय सामग्री को सील बंद प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा यशोत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, राज्य सेवा, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोत्सव केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना असंभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में लगभग 100 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल दिल्ली सरकार भी योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं।

0: मंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ योग करेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है, जो वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील भी की है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेंचुरी परिसर में विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां उगाए जा रहे विभिन्न देशी वृक्षों, पौधों और जैव विविधता संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के आज आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह देखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध और विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और अपनी शिकायतें, चिंताएं और सुझाव साझा किए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत अब तक 209 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से 161 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी और समन्वित जांच से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट प्रवेश पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे है। अब पेश है मुशायरा।
4: समीन की खिदमत में कलीम अहमद का आदाब। समीन, हम सब जानते हैं कि शायरी दिलों को जोड़ने, एहसासात को जगाने और मुआशरे में मोहब्बत व रवादारी को फरोग देने का एक हसीन जरिया है। मुशायरे लोगों के दिलों में उखुवत, सुलहो आश्ती और एहसास हमदर्दी पैदा करने का

0: Kiamat.
1: Úgy sem igen. Ik az elor.
0: Jéfan van.
2: Yehi tawiz ka bas fayda hai.
3: Yehi tawiz ka bas fayda hai.
2: Yehi tawiz ka bas fayda hai. Tumhare haath ka bandha hua hai.
1: Bahut khoobsurat
2: baat. Tumhare haath ka bas fayda hai.
0: Tumhare
2: haath ka bandha hua hai. Hamare beech ek rishta bana hai. Hamare beech ek rishta bana hai. तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है
0: बहुत अच्छा बहुत
2: हमारे बीच रिश्ता बना है तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है वो रूठा दोस्त वापस आ गया है मगर बेसाख्ता पन जा चुका है
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
2: और शेर बतौर खास के तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है मगर चेहरा वहीं पर रह गया है ये रातें नींद से परहेज की हैं इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
1: बहुत खूब
2: उसे देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान वो उन वक्फों की भाषा जानता
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
1: क्या कहने हुआ
2: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान वो उन वक्फों की भाषा जानता है चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है
0: बहुत
1: वाह वाह
2: चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है मगर चेहरा वहीं पर रह गया है
0: बहुत अच्छा दोस्तों ये थे आसिफ अमान सैफी साहब जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शेरी सतह पे बल्कि अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शेरी सतह पे या नसरी सतह पे कई असनाफ की हामिल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं मैं यहाँ परवेज शहरियार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनकी शायरी के लिए मोहतरम परवेज शहरियार साहब
4: बहुत शुक्रिया शिकिल जमाली साहब मैं अपनी नसीब नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है गुम हो गई है कोई से मेरा कयास था कि जिस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे
0: क्या बात है क्या बात है
4: मेरा कयास था कि जिस के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे लेकिन ये मेरा वाहमा था तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र कभी चैन लेने ही न दिया सोचा था कि तेरी चश्मे शीरी के मासिवा और भी पुरकशिश राहें हैं
0: बहुत अच्छा
4: मरमरी बाहें हैं
0: बहुत अंदर
4: तेरी मरमरी बाहों के सिवा
0: बहुत अच्छा
4: लेकिन ये मेरा वाहमा था यादें तेरी जुल्फ गिरागीर की एक अरसा बीत जाने के बाद भी डाल देती हैं मेरे पाँव में यक लख्त खींच देता है कोई लक्ष्मण रेखा मेरी चारों ओर नमूदार हो जाती है मेरी नजरों में कोई पत्थर की लकीर सी
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
4: सोचा था तुम्हारे बगैर भी जिस्त मेरी संवर सकती है
0: बहुत अच्छा
4: दिन चमक सकता है रात महक सकती है
0: क्या बात
4: लेकिन ये मेरा वाहिमा था आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो तुम्हारी यादों के पुरसरार घने जंगल में खड़ा तन्हा कुछ ढूंढ रहा हूँ ऐसे जैसे गुम हो गई हो कोई शय किसी राहगीर की गुम हो गई हो कोई शय जैसे किसी राहगीर

0: था कैसा हो गया, एक बदला और पेश करता हूँ कि अब बुरा होना भी अच्छा हो गया। अब बुरा होना भी
1: अच्छा
0: हो गया, क्या गजब में यारे दुनिया हो गया। अब बुरा होना भी अच्छा हो गया, क्या गजब में यारे दुनिया हो गया। ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया। ये तेरी आवाज नम क्यों हो गई, गमजदा मैं था तुझे क्या हो गया। मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया। मेरे शक के दायरे में आ गए, मुझको जिन पर भी भरोसा हो गया। अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो, तुमको गुजरे एक अरसा हो गया।
2: क्या बात है।
0: अब गलत फहमी में जीना छोड़ दो,
2: तुमको गुजरे
0: एक अरसा हो गया। फिर कहाँ लगते हैं वो दुनिया के हाथ, फिर कहाँ लगते हैं वो
2: दुनिया
0: के हाथ। वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया, वो जिन्हें खुद पर भरोसा हो गया। मसलों की जानलेवा भीड़ में, मसलों की जानलेवा भीड़ में आदमी कितना अकेला हो गया, आदमी कितना अकेला हो गया। शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया। शहर में दो चार कंबल बांटकर वो समझता है मसीहा हो गया। हमसे मिट्टी की महक जाती रही, हमसे मिट्टी की महक जाती रही। गांव लेकिन शहर जैसा हो गया, हमसे मिट्टी की महक जाती रही। गांव लेकिन शहर जैसा हो गया। तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया। तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया। सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया। सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया। एक ही दुश्मन था सारे शहर में, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया। एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया। पहले मेरी बेगुनाही देख ली, और फिर कानून अंधा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत खूबसूरत
0: दोस्तों। इस समा खराशी के बाद अब मैं उस मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलता हूँ कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो बेक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। तर्जुमे का इतना बड़ा काम है उनका, कई जबानों के आशना मोहतरम नसीब खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आज इस्तफादा करें, उन्हें सुने और इस खूबसूरत मौके का फायदा उठाएं। नसीब खान साहब,
3: बहुत शुक्रिया शकील साहब। दो नज़में पेश खिदमत हैं। पहली नज़्म का उन्वान है कच्ची उम्र की दुल्हन।
0: क्या बात।
3: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा।
0: क्या बात।
3: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा। चिल मने है सतरंगी कच्ची उम्र की दुल्हन और किताब हाथों में गुंजलक पहेली की। दामनों में सफहों के बेल और बूटे कुछ मुख्तसर फसाने भी है। सरे वरक भी कुछ सरगुजश्त परियों की तेल और दिया बाती कांपती दुलाई की। मलगजे से कोनों में है कशीदा रूसाए।
0: क्या बात है।
3: दो कहार एक डोली एक मुश्तैल मरघट। आखिरी वरक पर है नौजवान एक बेवा लाल सुर्ख पैराहन। अहमरी किनारों पर कोपले हैं नौ रुस्ता और दमकता मुखड़ा भी है गुलाल आलूदा।
0: क्या बात।
3: लकड़ियां हैं चंदन की उड़ रहे हैं अंगारे। नौजवान बेवा एक नौजवान है बेवा एक तड़प है बिस्मिल की। डोमनी से जेरे लब बोलती है जाने क्या।

0: ती करवटें तो बदलेंगे, दांत कटकटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फील्बा सजीले सब सैद होंगे हाथी के, और असीर पंजों के आजमाएंगे जादू, बूढ़ा सोच कर बोला। और गिजा में शेरों की, हाथियों के बच्चों की, ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी, हाथियों के पैरों में आबले पड़े होंगे, जंगलों के राजा को एक सियाह मरज होगा,
1: क्या
0: एक
1: बात,
0: सियाह मरज होगा,
1: बहुत अच्छा,
0: रात ख्वाब में देखा, रात ख्वाब में देखा,
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत खूबसूरत।
1: दोस्तों ये थे नसीब खान साहब जो बहुत खूबसूरत नज़मों से हमें नवाज रहे थे। आज की ये नशस्त यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे थे उनमें जनाब नसीब खान साहेब, जनाब परवेज शहरियार, जनाब आसिफ अमान सैफी और मैं आपका खादिम शकील जमाली। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।
2: सभी ने भी आप सुन रहे थे ये मुशायरा जिसके तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। समीन, हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जब मुआशरे में मशीनी जिंदगी और मसरूफियात बढ़ रही हैं, ऐसे में मुशायरे दिलों को करीब लाने और मुस्बत सोच को फरोग देने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये इंसान को रोजमर्रा की दौड़ धूप और जहनी दबाव से कुछ लम्हों के लिए सुकून फराहम करते हैं। अब इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान कलीम अहमद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
3: अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए बेवफा फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार नदीम श्रवण।

अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म एक था टाइगर से। आवाजें हैं केके और पलक मुच्छल की। गीत अन्विता दत्त का लिखा है एवं संगीत सुहेल सेन ने दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन

0: और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक लीडर नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत

0: अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj,

जी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से 9:15 हुए हैं। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा सुनिए। अब से कुछ ही देर में यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम में आज सुनिएगा भूपेंद्र की गायक चंद गैर फिल्मी गजलें।

9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 9:55 पर प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में सुनिएगा कुछ सेहत के हवाले से बातें। और रात 10 बजे समाप्त कीजिएगा फिक्र तौसवी का तहरीर करदा ड्रामा मॉडर्न अलादीन।

11:45 पर बज में मौसीकी प्रोग्राम के तहत सुनिएगा पंडित जसराज का गाया ख्याल राग अलैया बिलावल में। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी।

12:10 पर क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में सुनिएगा पंडित वी जे जोगी का वायलिन पर बजाया राग जोग कॉन्स। 12:30 पर पुराने फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब पेश किया जाएगा और तीसरी मजलिस के आखिर में शब के 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। तो समय ये थी उन प्रोग्राम्स की जानकारी जो आज आप उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में समाप्त करेंगे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, लीजिए सुनिए प्रोग्राम एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं नसीम अजमेरी की इस गजल से।

समय ने भैया आपने बहादुर शाह जफर का कलाम सुना भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसी के साथ एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: जी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:45 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत की तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वज़ीर-ए-आज़म कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन-अल-अक़वामी दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुरमुज़ को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरिया साज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राब्तों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वक़ार और उसके असर रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर

ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राब्तों और बाहमी मफाहमत के जरिए तनाजियात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा की पेशरफ को यह कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रूपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर आने का शरफ हासिल हुआ। बाद में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिला में तारकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रूपये मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्दा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवे, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अल-अक़वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेन्द्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हमाहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने उन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। अहलियत और दाखिले से मुताल्लिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहान के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम्स जैमर्स, CCTV अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजीर दाखिला और इमदादी बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने आज कोल्हापुर में 1,445 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के श्री अम्बाबाई मंदिर तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं।
ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ کرویر کے تاریخی شہر میں واقع شری امبابائی مندر ملک بھر کے عقیدت مندوں کے لیے عقیدت کا ایک اہم مرکز ہے. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروجیکٹ اسے ایک جدید مذہبی مقام کی حیثیت سے فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی، ثقافتی اور روحانی وراثت کو بھی برقرار

0: रखेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला पास के रास्ते चीन में दाखिल हो गया। इसके बाद यात्री अपने आगे के सफर पर रवाना होंगे। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने 41 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में 2 राबता अफसर, 1 मेडिकल अफसर और 4 मुआविन अहलकार भी शामिल हैं। इस तरह मजकूरा जत्थे के अरकान की तादाद मजमूई तौर पर 47 है। मानसरोवर परिक्रमा 27 जून को होना है और पहला जत्था अगले महीने की 1 तारीख को गैंगटॉक वापस आ जाएगा। ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाई हुरमुस को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमरीका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। इस हफ्ते के अवाइल में अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी समझौते के तनाजुर में आबनाई हुरमुज के रास्ते कमर्शियल बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू हो गई थी। आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन, मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत की तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। हेल्थ टिप्स के साथ हाजिर खिदमत हूं मैं नगमा अदाबर से। समाइन आज हेल्थ टिप्स में हम बात करेंगे योग के बारे में। जी हां समाइन, हर साल 21 जून को मनाया जाता है योगा का बैन अलावामी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद सेहत, तंदुरुस्ती और रूहानी सुकून के लिए योगा की अहमियत और उसकी मशक को फरोग देना है। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब कर रहा है और जो कम उम्र में बीमारियां हो रही हैं वो इसी गलत तर्ज जिंदगी की वजह से हैं। हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना बेहद जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि अच्छी सेहत बनी रहे। और उसका एक बेहतरीन तरीका है वर्जिश, योग, व्यायाम, डेली एक्सरसाइज। लेकिन कभी कभी लोग इरादा भी करते हैं कसरत करने का, लेकिन उनका भारी जिस्म उनके मकसद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले अपनी बॉडी को मुतहरिक हालत में लाएं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, बॉडी में लचीलापन आए। इसके लिए आपको करना यह होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना होगी और कुछ हल्की फुल्की कसरत करना होगी। फिर धीरे धीरे दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आए, फिर आपको महसूस होगा कि योगा से जिंदगी आसान बनने लगी है। आज पूरी दुनिया के लोग योग की अहमियत को समझ रहे हैं और नौजवानों के बीच योगा काफी मकबूल हो रहा है। योगा, दौड़, जिम की शक्ल में सरगर्मियां होनी चाहिए। लाखों लोग किसी न किसी सरगर्मी में मशगूल हैं और जोड़ों के दर्द, रीढ़ का दर्द, बार बार की बीमार पड़ने की फिक्रात से वो आजादी महसूस कर रहे हैं। योगा सांसों की हरकत को दुरुस्त करता है जिससे आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगर आप

ऑफिस में हो तो भी 5 मिनट का योगा आप जरूर करें, 5 मिनट अपने आप को जरूर दें। ध्यान रहे कि योगा की शुरुआत हमेशा आसान योगा से करें। योगा हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बस करना यह है कि आपको सुस्ती को बाय बाय कहना है और जिससे कि आप में एनर्जी आए उसी के मुताबिक आप योगा करें। समय योगा पे कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

0: मस्जिद सामीन, आप जुड़वा भाई और जुड़वा बहनों से तो वाकिफ होंगे, लेकिन जुड़वा नाटकों से शायद आपका साबका कम ही पड़ा होगा। आज आप सुनेंगे जुड़वा नाटक। तो पहले मिलिए मॉडर्न अलादीन से। अलादीन साहब अलफ लैला ने अपना तमाशा दिखाकर गायब हो गए थे। जनाब फिक्र तौसवी ने उन्हें पहचान लिया और लफ्जों में घेर कर राजेश्वर नाथ के सुपुर्द कर दिया, जो उन्हें आवाजों की दुनिया में ले आए। तो आप हैं मॉडर्न अलादीन।
1: आई कौन है मुआ? अरे दरवाजा खोलेगा क्या?
2: कुछ दे दे दादा के नाम पर।
1: उफ़ो, इन भिखारियों ने नाव में डर कर रखा है। अरे जन्म जलो कुछ और है, जाकर घी मांगा करो। अरे जो भिखारी आता है सीधा हमारे घर का रुख करता है। क्या है, माफ करो बाबा।
3: अरे हाय राम, चुन्नू के डैडी आप।
4: देखा कैसा बुद्धू बनाया तुम्हें। चलो अंदर आओ।

0: हाय राम, मैं समझी सचमुच को भिखारी है।
1: अरे राम धन को भी अपने द्वार का भिखारी ही समझो।
0: सच कहते हो, काश मैं भी किसी भिखारी से ब्याही जाती, क्योंकि कुछ भिखारी तुम जैसों से ज्यादा मालदार होते।
1: ठंडी आहें मत भरो डार्लिंग, ठंडी आहें मत भरो। मैंने अर्ज किया ना, इस नाचीज को भिखारी ही समझो। तुम्हारे माँ बाप से एक गलती हुई कि तुम्हारे लिए खाविन तो सही सही चुना, लेकिन तुम्हारा नाम गलत रखा, लक्ष्मी। दौलत की देवी को भिखारी के पल्ले से बांध दिया।
0: आज इतना हंसी क्यों जा रही हो?
1: अरे नहीं भाई, आज मैंने 99 रुपए कमाए। 99?
0: मेरे हाथ पे जल्दी
1: जल्दी ये लो, पीतल का ये चरा। कबाड़िया इसके 100 रुपए मांगता था, 100 मैं 1 रुपए में ले आया। 99 रुपए कमाए के नहीं, बोलो बोलो।
0: 99 फीसदी कमाए, मगर एक बेवकूफी भी की।
1: यानी फरमाइए।
0: अगर झूठ मूठ ही कमाना था तो कम से कम कोई 1,000 की चीज 1 रुपए में लाते, 999 रुपए तो बचते। क्या कूड़ा करकट जाकर घर में ले आए हो? बेकार 1 रुपया भी बर्बाद।
1: ये कूड़ा करकट है देवी जी, ये तारीखी चराग है, तारीखी चराग। जहांगीर बादशाह इसकी रोशनी में बैठकर तुझके जहांगीरी लिखा करता था।
0: मुझे भी इतना मैला कुचेला है।
1: कहा ना, तारीखी चराग है, तारीख की मनोगर्द इस पर पड़ी हुई है। लो जरा इसे रगड़ रगड़ कर मांज तो दो, अंदर से बिल्कुल नूर जहां की तरह चमकीला निकल आएगा।
0: या मुझे तो मैं पूछती हूँ, हमारे किस काम आएगा?
1: अरे जब कभी बिजली फेल हो जाएगी इसे रोशन कर लेंगे, और फिर मैं इसकी रोशनी में बैठकर तुझके जहांगीरी लिखा करूंगा।
0: तुम्हारा मतलब दफ्तर की फाइल है?
1: और मेरी नूर जहां इसकी रोशनी में बैठकर वो आटा गूंदा करेगी।
0: अरे तुम आज तक घर में कोई काम की चीज लाए भी हो?
1: हाँ, एक चीज बहुत शानदार लाया था।
0: कौन सी?
1: तुम्हें इस घर में लाया था।
0: छोड़ो भी, लाओ मुझे तो चला, मैं इसे आंगन में बैठ कर मांझती हूँ।
1: मगर जरा एहतियात से मांझना, चराग शाही मिजाज का है, कभी इसका मिजाज बरहम ना हो जाए, समझे?
0: हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
1: अच्छा, मेरी बिल्ली। 900 चूहे खा

0: là, car voilà que je suis, car voilà.
1: Bolaladi, maître Gulam, Rukumdo, Bayalam.
2: ओ भगवान, मैंने कहा देव साहब माफ करना, ये अलादीन नहीं है, ये तो लक्ष्मी है, ओनली लक्ष्मी, ओनली मेरी बीवी, माय वाइफ, अलादीन तो एक मोची है, उधर स्लम एरिया में रहता है।
1: नहीं, ये अलादीन है,
2: मुझसे कसम ले लो, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कहो तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दूं।
1: नहीं, हम कुछ नहीं जानते, इसके पास भी ये चिराग होगा, उसका नाम अलादीन होगा। बोल बोल अलादीन, हुकुम दे।
2: अरे यार देव, मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा?
1: देव।
2: अरे जालिम, ये तो तुम्हारा तकल्लुस है, नाम तो कुछ और होगा कि नहीं? रामदेव, शामदेव, निरंजन देव, हरभजन देव।
1: हमारा वक्त जा मत करो, अलादीन हुकुम दो।
2: देखिए जनाब देव साहब, जरा आहिस्ता बोलिए ना, देखते नहीं तुम्हारी अलादीन और मेरी बीवी की तुमने क्या दुर्गत बना दी है? हुकुम कहाँ से दे, वो उस बेचारी का तो डर के मारे हलाक खुश को रात देखे।
1: एक मिनट, अलादीन हमको हुक्म दो, वरना एक मिनट के बाद तुझे हम
2: मारेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर, मेरी एक लौती बीवी है, इसे वैश्य देव से बचा। देव जी, मैंने कहा देव जी, उस खुदास का खौफ खा जिसने तुझे इतनी ताकत और कामत अता की, मेरी बीवी को माफ कर दे, वो तुम्हारे मालिक है, तुम

0: गुलाम हो क्या गुलाम अपने ही मालिक को निकल जाएगा, वो बेहोश पड़ी है। जरा अपने मालिक की तलवी मलो।
1: तो तुम कौन हो?
0: मैं क्या मेरी आहो पुकार से तुम्हें पता नहीं चल रहा देव जी की मैं इस औरत का खादिम हूँ? चल चल आओ इसकी तलवी मलो।
1: तुम हमें हुकुम नहीं दे सकते।
0: नहीं दे सकते? अरे जिसके तुम गुलाम हो वो हमारा हुक्म मान लेती है तो तुम कैसे नहीं मानोगे जी?
1: जो चिराग रगड़ेगा हम सिर्फ उसका हुक्म मानेंगे। अलादीन आधा मिनट और हुक्म दो नहीं तो हम
0: अल्लाह बचा अल्लाह बचा। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी दादी जरा होश में आओ ना वरना देखो वरना आधे मिनट बाद में रंडवा हो जाऊंगा। बोलो अब बोल भी दो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। अरे नहीं इस कमबख्त को कोई हुक्म दो।
2: कैसा हुक्म?
0: ता ता ता ता ता ता ता ता

0: का गिलास, और जब भी चिराग रगड़ोगे तुम्हारा गुलाब फिर हाजिर हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूं।
1: शुक्र है भगवान का। लक्ष्मी लक्ष्मी आंखें खोलो लक्ष्मी, वो मनुष्य चला गया।
2: चला गया है? क्या दे गया?
1: ये पानी का गिलास दे गया, इसे पियो रो। मैं कहता हूँ अहमक औरत, अरे मांगना था तो जूस का गिलास मंगाती, सिर्फ पानी के गिलास पर तुम्हें डरा गया।
2: कितना भयानक देव था वो,
1: लेकिन था बड़े काम का। अच्छा चलो तुम अंदर पलंग पर जाकर लेटो, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है।
2: जी सुनो, मुझे फौरन कहीं से चांद के वरक लगे सेब का मुरब्बा ला दो, ताकि मेरा दिल कुछ ठिकाने आ जाए। बिल्कुल थक थक थक कर रहा है।
1: सेब का मुरब्बा? गलती हो गई, उसी देव से मंगा लेते, बल्कि सेब के मुरब्बे का पूरा मर्दमान मंगा लेते। अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, मैं चराग रगड़ कर फिर उसे बुलाता हूँ, इस मर्तबा मैं उसे हुक्म दूंगा।
2: ना ना ना ना, मत बुलाओ उसे, मुझे उससे खौफ आता है, मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी।
1: तो बेहोश हो जाओगी तो क्या हो गया, मुरब्बे का मर्तबान तो आ जाएगा।
2: ना ना ना ना, ना चुन्नू के दादी, भगवान के लिए मत रगड़ो चिराग, मत रगड़ो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
1: अब ये चराग मेरे हाथ में है, मैं अलादीन हूँ, रामधन मर गया, अलादीन जिंदा हो गया। दौलत महल मोटर सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं तुम्हारा गुलाम, जो हुक्म दो बजा लाऊंगा, क्या चाहिए बोलो।
3: तुर्की घड़ी सुलेमान के तक को काम की परिया। हाँ हाँ।

0: के डैडी।
1: ओहो, इस औरत ने तो जीना हराम कर डाला। और यो लक्ष्मी, सुखियां भरनी है तो अपने मैके में जाकर भरो। इस घर में तेरी अचरी तरबक दिखाओ।
0: वाह, बेइज्जती इस घर में हुई, स्यापा मैके जाकर करूं?
1: माफ कीजिए देवी जी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं पूछता हूँ, वो कौन बेवकूफ होगा जो एक बेइज्जत की बेइज्जती करेगा? बोलो।
0: उस बेवकूफ का नाम मुरारी सेठ है।
1: मुरारी सेठ,
0: आज जब तुम न जाने कहाँ की खाक छाने गए हुए थे, वो लाल पीला मुंह बना आधम का सौ सौ सलवाते मुझे और तुम्हें सुनाई।
1: कौन मुरारी सेठ? अच्छा, वो जिसकी टांगे हर वक्त 45 का जाविया बनाकर चलती हैं। क्या कहता था?
0: तुमने उससे 100 रुपया उधार लिया था। कहता था कि 6 महीने हो गए, चुकाता क्यों नहीं? कहता था राम धन तो चपर कनाती है, बेहया है, अरे मेरे टुकड़ों पर पलता है।
1: क्या क्या क्या, मुझे गालियां देता था? अरे मुझे? अरे मैं तो उसकी टांगों को कद्दू बनाकर सब्जी मार्केट में बेच दूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को?
0: मगर तुम मुझे 100 रुपए

0: क्यों नहीं देते? सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर गया है।
1: मैं अब उसे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, बल्कि चिराग वाले देव को बुलाकर हुक्म दूंगा कि मुरारी सेठ को उठाकर हिंद सागर में फेंकाए।
2: बड़ा मजा आएगा।
0: जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी करो, 3 दिन से चिराग तुम्हारे पास है, मगर देव को बुलाते तो हो नहीं। अरे कम से कम मुझे एक रेशमी साड़ी तो मंगा दो।
1: तुम देखती जाओ, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है। मैं ये मोहल्ला छोड़ दूंगा जहाँ के कुत्ते तक थर्ड रेट हैं और जहाँ मुरारी सेठ ऐसे चपड़कनाती रहते हैं। हम तो राजा गोरखनाथ की कोठी के बिल्कुल सामने एक अजीम शान बंगला बनवाएंगे
0: और मैं वहाँ की रानी बन के राज करूंगी। सारा काम नौकर चाकर करेंगे, है ना? ए सुनो, मुझसे चारपाई के अजवान नहीं कसे जाते।
1: तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तुम मैट्रिक में फेल हो गई थी ना?
0: लेकिन मैं उस बंगले में जाकर बीए का इम्तिहान पास करूंगी, देख लेना।
1: अरे उस बंगले पर तो राजा गोरखनाथ की एमए पास लड़की राह आएगी।
0: क्या मतलब? क्या मतलब?
1: मतलब साफ है। नंबर एक, वो लड़की तुमसे 1001 गुना ज्यादा हसीन है। नंबर दो, उसने एक बार मुझे शट अप कहा था। नंबर तीन, वो अब शहर के रईस आजम सेठ अलादीन से शादी की दरख्वास्त करेगी।
0: और नंबर चार, कि तुम उसकी दरख्वास्त के पुर्जे पुर्जे उड़ाकर हिंद महासागर में फेंक दोगे। मगर कब? आखिर कब?
1: बस जल्दी, बात ये है, जरा कॉन्फिडेंशियल है, कान इधर कर, इधर आओ ना। मुझे चिराग रगड़ने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही। कम वक्त शहर के लोगों ने एक इंच जगह भी वीरान नहीं छोड़ी। बिल्डिंगें बना दी, कारखाने बना दिए, दफ्तर सड़कें तालाब बना दिए। देव को बुलाऊं तो कहां बुलाऊं, क्योंकि जब वो आता है शराफत से थोड़ा ही आता है, जलजला सा ले आता है।
0: अरे तो अपने ही आंगन में बुला लो।
1: पहले दिन जब वो आया था तो मोहल्ले के कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारे मकान की कोई दीवार गिरी है।
0: फिर?
1: अरे फिर क्या, जंगल में जाना पड़ेगा।
0: अकेले जाओगे? मुझे नहीं ले जाओगे?
1: तुम्हें? सोचूंगा। बात यह है कि तुम्हारे बारे में कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
3: अबे ओ राम भाई के बच्चे, निकल आ बाहर।
0: फिर वही मुरारी सेठ आ गया।
1: चूहा खुद बिल्ली के पंजे में आ गया। देखूंगा देख लूंगा। अबे क्या है, तमीज से बात कर, जानता है मैं कौन हूँ?
3: वाहरे टटपूंजिए, अरे मैं तुझे क्या, तेरे परदादा तो को जानता हूँ, जो कानों की मैल निकालने का पेशा करता था। निकालो निकालो मेरे 100 रुपए।
1: मुरारी सेठ, 100 रुपए लेने से पहले ये बताओ कि तुम अपनी स्मॉल स्केल बाइसिकल फैक्ट्री कितने में बेचोगे?
3: 2 लाख 2 लाख रुपए में खरीदोगे?
1: बस, मैं समझता था ताजमहल जितनी कीमत मांगोगे। बोलो, ताजमहल खरीदोगे?
3: अबे ओ शाहजहां के वारिस, तुम्हारी मुमताज महल मेरे घर के झूठे बर्तन मांजा करेगी, समझ गए?
1: और अगर तुम्हारी बेटी मेरे बूट पॉलिश करने लगे तो?
3: रामधन, ढंग पी गया क्या?
1: जी
3: जी के बच्चे, रुपए निकाल, रुपए निकालो।
1: सूद लगाकर बिल मेरे बंगले पर भेज देना।
3: बिल नहीं, सिपाही भेजूंगा हथकड़ी के साथ।
1: अबे जा, अबे जा जा, जा रहा हूँ,
3: जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इस मोहल्ले से अब तुम बोरिया बिस्तरा गोल ही करोगे, समझ गए?
1: हाँ, समझ गया समझ गया, मेरा और तुम्हारा दोनों का बिस्तरा गोल। भगोड़ा कहीं का। भगा दिया कि नहीं? मैंने कहा लक्ष्मी,
0: तुमने अच्छा नहीं किया।
1: अच्छा जी, अच्छे कामों का ठेका सिर्फ मैंने ही तो नहीं ले रखा, कुछ अच्छे काम तुम भी कर लिया करो।
0: अरे उसने आले वक्त में आपकी मदद की थी।
1: ओ, बड़ी हिमायती बन रही है उस मुरारी के बच्चे की। ये है आजकल की कलयुगी औरतें, जो अपने खाविंद को छोड़कर
0: पैरों से।
1: इतना मुझे मत बोलो कि तुम्हारे मैके तक आवाज जाए। मैं जानता हूँ तुम उस मुरारी की हिमायत क्यों कर रही हो।
0: चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। मैं तुम्हारी बेबी हूँ, जर खरीद लौंडी नहीं।
1: मेरी ना सही, किसी और की जर खरीद लौंडी सही।
0: हाय हाय, इससे तो अच्छा था कि मैंने जिस दिन इस घर की चौखट में कदम रखा था उसी दिन विधवा हो जाती।
1: डायन कुलच्छिनी बेहया, मैं अभी तेरा और उस मुरारी के बच्चे का इलाज करता हूँ। अभी चिराग रगड़ कर देव को बुलाता हूँ और उसे हुक्म देता हूँ कि लक्ष्मी और मुरारी दोनों को इकट्ठे बांध कर अंधे कुएं में फेंक दो। अंधा कुआ किसा पाक। राजा की बेटी। नया ब्याह, नई जिंदगी है।

0: मगर चराग रगड़ते चूहा क्यों आ गया, देव क्यों नहीं आया?
1: अरे मैं क्या जानू, पहली बार तो देव आ गया था।
0: शायद एक बार देव आता होगा, दूसरी बार चूहा आता होगा।
1: इंसान की नीयत खराब हो तो चूहा ही आएगा।
0: लक्ष्मी लक्ष्मी डार्ली, जरा तुम रगड़ कर देखो ना।
1: और अगर देव आ गया तो मेरा हुक्म मानेगा तुम्हारा नहीं। क्या मैं उसे ये हुक्म दे दूं कि मेरे खामिन को बांध कर अंधे कुएं में फेंक दो?
0: नहीं नहीं लक्ष्मी, नहीं तुम मत रगड़ो, ला ला ला, और मुझे माफ कर दो डार्लिंग।
1: डार्लिंग नहीं, डायन कहो, डायन। अब बुलाओ अपने देव।
0: हाँ, अभी बुलाता हूँ, फिर रगड़ता हूँ, अभी बुलाता हूँ।
1: कोई आया? अब के तक चूहा भी नहीं आया।
0: बोगस चराग है।
1: अरे मैं तो पहले ही कहती थी, तुम हमेशा बोगस चीजें ही लाते हो। बोगस आदमी और लाभ ही क्या सकता है।
0: अब क्या होगा, मैं तो नौकरी से भी इस्तीफा दे आया हूँ, हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे।
1: अरे तुम अकेले मरोगे, मैं तो मैं के चली जाऊंगी, मगर तुम्हारा तो मैं का भी नहीं है।
0: ना जा, ना जा, मुझे छोड़कर मत जाओ लक्ष्मी, भगवान के लिए, प्यारी लक्ष्मी।
1: नहीं कुलक्ष्मी।
0: नहीं, पतिव्रता स्त्री।
1: नहीं बेहया औरत।
0: नहीं, नेक और वफादार। फिर शायद बुलारी सेठ आ गया। मत खोलो, मत खोलो।
1: अरे उसे उसके साथ डूल लगा है ना। अरे वो तुम्हारी बीबी की इज्जत का डाकू है ना। चुपके डाडी पुलिस।
0: अरे अरे हे भगवान, हे
2: भगवान। देखो तुम में से रामधन कौन है?
0: मैं नहीं हूँ जी, मेरा नाम तो रामधन नहीं है, मेरा नाम तो अलादीन है। अलादीन?
2: डरो मत जी, सच सच बताओ, बाहर दरवाजे पर तुम्हारे नाम की तख्ती लगी है, रामधन
0: जी। जी वो तख्ती पड़ोस वाले घर की है, गलती से हमारे घर लग गई।
2: झूठ मत बोलो। अच्छा इधर लाओ अपना बाजू।
0: बाजू जी वो
2: इधर लाओ
0: जी।
2: देखो इस बाजू पर तुम्हारा नाम साफ लिखा है, रामधन।
0: ये तो मेरे बाप का नाम है।
2: डर गए हो शायद, लेकिन देखो रामधन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने राजा साहब की बेटी को एक खत लिखा था?
0: मर गए जी, मैं वो खत जी नहीं तो
2: बोलो, लिखा था कि नहीं?
0: जी लिखा था, लिखा था।
2: तो चलो मेरे साथ। देखो रामधन, तुम्हें राजा साहब की बेटी ने याद फरमाया है।
0: याद फरमाया है, मगर कप्तान पुलिस जी, उनसे कह दीजिए जिस रामधन ने वो खत लिखा था वो मर गया।
2: मगर रामधन, मौत का एक दिन मुअय्यन है और वो दिन अभी नहीं आया।
0: बस आया ही समझिए कप्तान साहब।
2: तुम चलते हो या हथकड़ी लगा कर ले जाओ?
0: लक्ष्मी मुझे पता है।
1: अरे मगर तुमने खत में लिखा क्या था?
2: कोई लव लेटर होगा।
0: जी नहीं जी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी से ही लव करता हूँ, और किसी से नहीं।
2: सिपाहियो जकड़ लो इसे, लगाओ हथकड़ी।
0: मैं चलता हूँ जी, चलता हूँ जी, शराफत से ही चलता हूँ। लक्ष्मी डार्लिंग, लक्ष्मी अलविदा। बाल बच्चों को सलाम कहना, मैके में तार भेज देना, मेरी वापसी की उम्मीद मत रखना। चलिए कप्तान साहब।

0: तो तुम्हारा नाम है रामधन। तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें तुम्हारा लव लेटर बेहद पसंद आया।
1: माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरे बेवकूफी थी। भला मैं और आपसे शादी की गुस्ताखी करता।
0: गुस्ताखी? गुस्ताखी कैसी? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारे जैसा सोसाइटी का मालदार तरीन शख्स मेरा जीवन साथी बनेगा।
1: जी नहीं, मैं तो बहुत कल्लाश इंसान हूँ।
0: नहीं, तुम गुदरी में छुपे हुए लाल हो। तुम नहीं जानते कि मैं कितने जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जो ही तुम्हारा मोहब्बत नामा मिला, मेरे दिल में जैसे हजारों बनफ्शी फूल एकदम खिल उठे, जिससे मेरा सारा वजूद मुअत्तर हो गया।
1: आप क्या

0: रानी राजकुमारी जी,
1: तुम फिर हसीन ख्वाबों की ताबीर हो, तुम मेरे गुलिस्तां की शमीनी जाफिजा हो, तुम मेरे जंगल में नाचने वाले मोर हो।
0: राजकुमारी जी, क्या आप शायर हैं?
1: जर्थन, जिसे तुम्हारे तखयल की परवाज नसीब हो जाए वो शायर बन जाता है। बोलो बोलो, शादी की तारीख कब मुकर्रर की जाए?
0: मगर मुझे शक है कि आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं।
1: और मुझे शक है कि तुम मेरे करीब आकर भी दूर जा रही हो। वो हीरो का भरा हुआ थाल कहाँ है?
0: कौन सा थाल?
1: जिसका जिक्र तुमने अपने लव लेटर में किया था और कहा था कि वो आपकी तरफ से पहला तोहफा होगा। और फिर तुम सोने के रथ की डोली में बिठा कर मुझे पेरिस और लंदन ले जाओगे। मेरे लिए एक ऐसा महल तामीर करवाओगे जहाँ चिड़िया सोने के प्यालों में पानी पिया करेगी और जहाँ सैकड़ों नौकर जाकर मेरी खिदमत के लिए मौजूद होगे। पांव धुलाने के लिए अलग, हाथ धुलाने के लिए अलग, पलक बिछाने के लिए अलग, जगाने के लिए अलग, खजाने के लिए अलग।
0: राजकुमारी,
1: क्या हुआ जाने मन मिस्टर थन?
0: वो खत किसी और रामधन ने भेजा होगा।
1: क्या तुम उस रामधन को जानते हो?
0: जी हाँ, मैंने उसका गला घोट कर मार दिया।
1: मार दिया? मेरे रामधन को मार दिया? यानी तुम कातिल हो?
0: जी, उसने मुझसे खुद कहा था कि मेरा गला घोट दो।
1: सिपाहियों, पकड़ लो इस कातिल खूनी लुटेरे को और ले जाओ उसे बंदी खाने में।

0: अलादीन का गुलाम, अलादीन का हुक्म है कि मैं तुम्हें राजकुमारी के कैद से छुड़ा लाऊं। सिपाहियों, खबरदार जो इसे हाथ लगाया।
1: हटिया चुरा जाऊंगा।
0: चलो चलो रामधन, मेरी संगुली पर बैठ जाओ। ओ

0: कालाधी अपना ये रामधन।
1: ले आए मेरे गुलाम दे, शाबाश।
0: और कोई हुकुम?
1: अब तुम जाओ।
2: डार्लिंग लक्ष्मी,
1: कहो।
2: मैंने कहा वो देव को तुमने भेजा था?
1: हाँ। अरे मुझे तुम पर रहम आ गया था कि रात तुम्हारी किसी में कत्ल ना कर दे।
2: मगर वो चिराग तो बोगस था, फिर देव कैसे आ गया?
1: अरे वो चिराग तो वाकई बोगस था, लेकिन असली चिराग तो मेरे पास था, मैंने बदल दिया था। नकली चिराग तुम्हारी अलमारी में रख दिया था।
2: इसका मतलब है तुमने मुझसे गद्दारी की थी।
1: क्या करती, तुम भी तो मुझसे गद्दारी करके राजकुमारी से शादी करना चाहते थे।
2: वो तो मेरी जहालत थी।
1: और ये मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हें कत्ल होने से बचा लिया। अब बोलो, करोगे राजकुमारी से ब्याह?
2: मेरी तौबा, 100 जन्म में भी नहीं।
1: नहीं, कम से कम इस जन्म में मत करना, वरना मैं विधवा हो जाऊंगी।
2: इतने जोर से मत हंसो, मुझे डर लगता है लक्ष्मी, मत

0: 오, कितना भयानक हाल था। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी डार्लिंग, तुम कहाँ हो?
1: अरे यहाँ बैठ के आलू छील रही हूँ, क्या हुआ?
2: अरे तुम्हारे माथे पर तो पसीना आ रहा है।
0: पानी पिलाओ, पानी। अच्छा। जल्दी मुझे सुनो लक्ष्मी।
2: हाँ
0: जरा इधर अपना हाथ मेरे हाथ में तो दो।
2: अरे बात क्या है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, अब अपने इस हाथ को मेरे हाथ में ही रहने देना, छुड़ाना मत। देखो बोलो मैं छुड़ाओगी ना लक्ष्मी।

0: पहले मैं कब छुड़ा रही हूँ, लेकिन बात क्या है?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं कल कबाड़ी बाजार से एक चराग लाया था ना, वो कहाँ है?
0: अरे वो सामने ताक पर रखा तो है।
1: उठाकर उसे गली के बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, ये मनुष्य चराग है।
0: मनुष्य? कैसे?
1: तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ।
0: अरे

समय अभी आप सुन रहे थे फिक्र तौसीफ़ी का तहरीर करदा ड्रामा मॉडर्न अलादीन। ड्रामे में हिस्सा लेने वाले फनकारों के नाम थे ब्रजिंदर मोहन, यशोधरा काटजू, शर्मिला मलकानी, हरजीत, सीएस नागर और जतिन दास। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है प्रोग्राम तामील इरशाद।

और समय लगना नगमा हम आपको सुनवाएंगे आप सबकी फरमाइश पर। फिल्म का नाम है मुजरिम, आवाज आशा भोसले की है और मौसीकी तरतीब दी है ओपी नैयर ने। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है अमीर खुसरू रोड गंडनवारा से इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन और बेगम शबन वनवर ने। और ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है धामन गांव महाराज से समर्थ दादा ठेठे भागवत ठेठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल और इनके बहुत सारे साथी। मामूलवाड़ी महाराज से सोपन तायदे वसंतराव भोजने और पीएम पीएस नोहानकर का ये फरमाइशी मेल हमें मौसूल हुआ है। तहसील रोड गंडनवारा से के एच राही गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी, नई बस्ती गंडनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी और इनके कुछ साथी, अनारकली बाजार जलगांव से कमल पाठक, सुनील पाठक और दीपिका मल्होत्रा, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टीके, यशोदा राम टीके और श्रव्या राम टीके, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और इनके साथी, नसवाला चौक मलकापुर से ये हमें फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है संजय पाटिल, उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लाडू कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा का। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से ये अगला फरमाइशी मेल आया है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण का। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा मुनत और दीपक मुनत का। छत्तीसगढ़ चूड़ीगढ़ छत्तीसगढ़

पहुंची है ये आई है, वीरम गांग गुजरात से अजीत भाव सर, प्रमला भाव सर और भावेश सनी की, करूणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान की फरमाइश आई है इसी नगमे को सुनने की, दर्शनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची इसी नगमे को सुनने की वो आई है छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री की, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, माफ कीजिएगा रघुवीर नगर से यह फरमाइश आई है दिलावर खान, हसीना बाना और एलिजा नायाब और लड्डू की। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम अनीता।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा, कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गाँव पहाड़ियों में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत के पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक़िद एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवे, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है। योग का बैनुल अक्वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैनुल अक्वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म, बाविकार बढ़ती उम्र की खास योग की जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैनुल अक्वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरब बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाही बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का एहदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क ही में बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जहाज़ों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS डोंगरी, INS शंखचूड़क और INS अग्रे शामिल हैं। इनका डिज़ाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोशिकन निज़ाम को मजबूत बनाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तहान नीट UG 2026 का कल दोबारा इम्तहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जुबानों में होगा। इम्तहान से कबल इम्तहान के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना शफाफ इम्तहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बहामी महकमे के वजीर अमित शाह ने आज कोल्हापुर में 1,445 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शहरी अंबाबाई मंदिर तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला, दीगर सरकारी शख्सियात भी मौजूद थीं। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि कारवीर के तारीखी शहर में वाक़ श्री अंबाबाई मंदिर मुल्क भर के अकीदतमंदों के लिए अकीदत का एक अहम मरकज है। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट इसे एक जदीद मजहबी मकाम की हैसियत से फरोग देने के साथ साथ इसकी तारीखी, सकाफती और रूहानी विरासत को भी बरकरार रखेंगे। ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया कि आबन हुरमुस को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमेरिका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की और बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। इस हफ्ते के अवाइल में अमरीका और ईरान के दरमियान उबूरी समझौते के तनाजुर में आबन हुरमुस के रास्ते कमर्शियल बहरी जहाजों की आमोदरफ दोबारा शुरू हो गई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों का पहला जत्था आज नथुला पास के रास्ते चीन में दाखिल हो गया। इसके बाद यात्री अपने आगे के सफर पर रवाना होंगे। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने 41 यात्रियों पर मुश्तमिल

0: जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में दो राबता अफसर, एक मेडिकल अफसर और चार माविन एहलकार भी शामिल हैं। इस तरह मस्कूरा जत्थे के अरकान की तादाद मजमूई तौर पर 47 है। मानसरोवर परिक्रमा 27 जून को होना है और पहला जत्था अगले महीने की 1 तारीख को गंगटोक वापस आ जाएगा। आज चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अवी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 46 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रजदी कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते 4 विकेट हासिल किए। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीरों की 2 रोजा मीटिंग का एहतमाम करेगा, जो फिर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफूद की सरबरा दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लगातार अमन मुजाकरात इश्तराक की आवाज के तौर पर बढ़ाए, क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने उड़ीसा में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23% जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अवी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी खिलाफ वर्जी का हवाला देते आबना हुरमुस को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में 3 एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए तामिल इरशाद प्रोग्राम के बकिया नगमे।

नामे को सुनना चाहे जैन मंदिर वाली कुरावड़ी से राशिद हुसैन अंसारी, आशा आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। लीजिए सुनिए संजोग फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

बाला किरण और ठाकुर जी, ये फरमाइश आई है पवन गौड़, तन्मय पूर्व गौड़ और सुयश आशीर गौड़ की, आवाज विकास कॉलोनी कासगंज से। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है आदिपुर अंजार से जगदीश जौहरी, पायल जौहरी और पूजा कुमारी का। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया, मयंक भाटिया भी इनके साथ हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक और पूजा खटक। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी। माल ठेकरी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये अगला नगमा, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद की, आवाज मुकेश की।

और लीजिए, समय अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज में दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। मौसिकार है मदन मोहन, सुनने की फरमाइश की है आप सबने। पुराना तालाब डुमराव से वली अंसारी, सुल्तान अंसारी।

और आसमां नाज अंसारी, सूरत सिटी से ये फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है अल्पना जैन और आदित्य जैन और भूमि जोशी। अगला फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है श्रीमती सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया का फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा शबनम और रईसा बानो। शाहिद अली फत फारूकी और बिटिया हिफ्जा ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ताम्बरम चेन्नई से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सामाइन का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, विलियस डिकेस्ट्रो। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। मीर हसन निदवानी, यार मोहम्मद खान निदवानी और साकिब हसन निदवानी का तंगवानी से ये मेला में मौसूल हुआ है। और कर्नाटक से ये फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है ये हैं फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और शब्बीर मुल्ला जी और इनके कुछ साथी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और नन्हे मुन्ने तनुश्री। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है ये हैं जी हाँ समय सभी मेल तकरीबन शामिल हो गए और अब जो मेल आ रहे हैं वो बराबर रिपीट मेल आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको ड्रॉप करते हैं सारे मैसेज को। और अगला मेल जो हमें अभी मौसूल हुआ ये आए वरुण जलोका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलन सरकटे। और ये अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है यासीन अंजान, साइमा नवाज, बाबू आहत का गिडी झारखंड से। बीपी गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम और शमीम की फरमाइश आई है अमीर खुसरो रोड गंजुनवारा से। मोहम्मद भाई रजा खान, शबाना बेगम, जावेद खान की फरमाइश आई है उमर खीर महाराष्ट्र से। और जाते जाते एक और मेल हम तक पहुंच चुका है वो भी शामिल कर लेते हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से। और अगला फरमाइशी मेल जो आया है वो आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और उनके बहुत सारे साथी तमाम सामाइन का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ये सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामिल इरशाद, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए बज़्म मौसीकी प्रोग्राम के तहत पंडित जसराज का गाया ख्याल राग अलहिया बलावल में।

कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरी के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS डुनागिरी, INS शंडोक और INS आगरे शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोशिकन निजाम को मजबूत बनाना है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अल-अक़वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। सन 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरब बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरक योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब आज सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वह हजारों लोग शिरकत करेंगे, जब मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हमांगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते रोल का इजाजा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया कि अपना हुरमुस को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने अमेरिका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने तंबीह की, अगर बकौल उसके जारियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। इस हफ्ते के अवाइल में अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी समझौते के तनाजुर में आपने हुरमुस के तक कमर्शियल बहरी जहाजों की आमदरफ्त दोबारा शुरू हो गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजबूत और मौसर रहनुमा के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया की सबसे बाएसर शख्सियात में से एक करार दिया। एक अमरीकी न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसे दौर के बाद इस्तेकाम फराहम किया है जब मुल्क में क्यादत बार बार तब्दील होती रही। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी गुज़िश्ता 12 साल से ज्यादा अरसे से इक़्तिदार में है। अमरीका और भारत के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात पहले के मुकाबले ज्यादा मुनसिफाना हो गए हैं और अब दोनों मुल्क बड़े पैमाने पर बाहमी तजारत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर काफी एहतराम हासिल है और वो अपनी पुरसुकून अवामी शख्सियत के बरक्स निहायत मजबूत रहनुमा है। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग का एहतमाम करेगा जो फिर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफ्तों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों का पहला जत्था कल नथुला पास के रास्ते चीन में दाखिल हो गया। इसके बाद यात्री अपने आगे के सफर पर रवाना होंगे। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने 41 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में 2 राबता अफसर, 1 मेडिकल अफसर और 4 माविन एहलकार भी शामिल हैं। इस तरह मस्कुरा जत्थे के अरकान की तादाद मजमू तौर पर 47 है। मानसरोवर परिक्रमा 27 जून को होना है और पहला जत्था अगले महीने की 1 तारीख को गैंगटॉक वापस आ जाएगा। चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में कल 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए दरकार 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे पहले भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर।

0: सदरे जुबरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लगातार अमन मुजाकरात इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका यह मानना है कि मामला को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अवी दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का हवाले देते आमने हुरमुस को बंद कर दिया है। चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में कल 3 एक रोजा बैन अवी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। भारत को जीत के लिए 219 का रन का निशाना मिला था, जिसमें उसने 28 ओवर से 4 गेंदों में सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे पहले भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के इब्तदाई बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए समय, अब सुनिए क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में पंडित VJ जोगी का वायलिन पर बजाया राग कौन सा जोग।

0: के जा जा जा जा जा तू जा।
1: सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा आ जा आ भी जा।
0: जा जा जा जा जा तू जा
1: आ जा आ जा
0: जा तू जा।
2: और लीजिए सामाइन अब सुनिए आखिरी शब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज में सुजाता फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार हैं एस डी बर्मन।

0: जीत के लिए 219 करोड़ का इशारा मिला था, जिससे उसने 28 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के एक बजने को है अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
3: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरूआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि तीन भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रही हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of India's seafarers and energy lifelines. Iran's Joint Military Command announced that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In FIFA World Cup action, the match between Netherlands and Sweden in Group F is underway at NRG Stadium in Houston, United States. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10:15। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का, जी हाँ, गीत सुनहरे, जिसमें आज आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत। जी हाँ, कुछ ऐसी अनमोल रचनाएं जो बिल्कुल सच्चे खरे सोने जैसी होती हैं। न जाने कितने ही संगीतकारों ने, कितने ही गीतकारों ने, कितने ही वाद्य यंत्र प्रयोग करने वालों ने, जो कलाकार हैं, एक से एक बेहतरीन और लाजवाब खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे, संगीत दिया। बिल्कुल हर प्रकार के गीत उन्होंने लिखे, सजाए अपने संगीत से। जी हाँ दोस्तों, वाकई गीत सुनहरे एक अनमोल धरोहर है गीत संगीत की दुनिया का। गीत सुनहरे बिल्कुल खरे सोने की तरह। श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और शानदार खूबसूरत गीत के साथ। सुनाते हैं ये प्यारी सी रचना। ये रचना, ये गीत वाकई बहुत खूबसूरत है। सुनो वजर क्या गाए, फिल्म बाजी से, गीता दत्त और कोरस की आवाज में शानदार रचना। बाजी फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत से सजाया है SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली शानदार गीत रचना।

Rita.

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत, जबरदस्त रोमांटिक खूबसूरत गीत, और रोमांटिक भी के साथ साथ आह्वान भी कर रहे हैं, खो ना जा। जी हाँ वाकई बहुत ही सुंदर। एक और गीत रचना आ रही है बहुत ही प्यारी, कितने जवां हैं रात, फिल्म आजाद से, और जो आजाद फिल्म रही है 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में सुंदर रचना है, गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से संवारा है श्री रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर रात में किसकी याद नहीं आएगी, किसको याद नहीं आएगी। जी हाँ, हर इंसान को याद आती है कि जवां रात है और गीत भी बहुत ही खास है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है शोला जो भड़के, फिल्म अलबेला से, लता मंगेशकर और चितलकर और साथ में जो साथी हैं यानी कि कोरस है उनकी आवाज में शानदार खूबसूरत रचना। अलबेला फिल्म 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है, गीत राजेंद्र किशन के हैं और संगीत से सवारा है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन अनमोल बेमिसाल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा मस्ती भरा खूबसूरत गीत शोला जो बढ़ के दिल मेरा धड़के। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम कभी सोचते हैं कि भाई किसी एक स्पेशल विशेष जो टाइटल होता है तो उस पर कुछ गाने या गीत सुनवाए जाए आप सभी साथियों को। साथियों, हमारी नजरों में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत नजर आ रहा है। ये रात खुश नसीब है। जी हाँ, ये रात खुश नसीब है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप सुनेंगे तो वाकई लगेगा हाँ, कुछ ऐसे गीत हैं जो अक्सर सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहती है हर बार जब हम प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है कि कोई ना कोई टाइटल लिया जाए और उस पर आधारित कोई ना कोई खूबसूरत रचनाएं आपको सुनवाई जाए। ये रात खुश नसीब है फिल्म आईना से, ये शानदार रचना लता मंगेशकर की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना। आइए सुनवाते हैं ये अनसुना सा ये खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, जैसे कि हमने बताया था कि जो स्टार्टिंग में इवनिंग से लेकर और 12 बजे तक जो कार्यक्रम होता है वो होता है इंद्रप्रस्थ चैनल का, और ठीक 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। दोनों ही चैनल एक ही स्टूडियो में है जी, बस डिफरेंट इतना है कि कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ चैनल में प्रोग्राम होते हैं और कुछ समय के लिए AIR लाइव न्यूज 24x7 फ्रीक्वेंसी में होते हैं। दोनों ही एक ही स्टूडियो में कार्यक्रम होते हैं, और शायद हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, सभी से आग्रह कर रहे हैं हम, AIR लाइव न्यूज 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल को यदि आप सहायें, प्यार करें, उसके कार्यक्रम को सुने, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे साथी सुन रहे हैं। और आजकल तो एक नई रवायत शुरू की है हमने, हम सब ने, कि अपने पोस्टर के माध्यम से सूचित किया जाता है, और आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, शायद हमसे पहले किसी ने किया नहीं है, कि हमने अपने स्टेटस पे ही वो पोस्टर डाला था, फिर हमने आकर यानी कि स्टूडियो में आकर हमने वो ग्रुप में, यानी कि जो हमारा जो ग्रुप होता है, और वहीं हमने अपना पोस्टर प्रेषित किया, और आप सभी साथियों ने सराहा।

इतना प्यार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक ऐसा गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। बहुत रोमांटिक और लाजवाब खूबसूरत गीत है। फिल्म मेरे सनम से आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो ये सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद रोमांटिक खूबसूरत गीत।

जी हाँ, चले आइए हमारे पास। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम में यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी आ रहा है बहुत ही प्यारा सुंदर लाजवाब गीत। साथियों, आज हमने गीत सुनहरे कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा सा रात के जो रचनाएं हैं बहुत ही सुंदर और लाजवाब होती हैं, क्यों नहीं हम वो ना सुनवाएं। जी हाँ, तो हम सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का सिलसिला। जी हाँ, एक अंधेरी रात का जो एक आनंद होता है बेहद खूबसूरत लगता है हमें, है ना। तो आइए सुनवाते हैं एक और बेहतरीन लाजवाब रचना आ रही है और ये रचना वाकई बहुत ही खूबसूरत है। ये गीत आ रहा है आपके पास और ये रचना वाकई रातें हैं इकरार की। जी हाँ, प्यार की, इकरार की, मोहब्बत की, अपनेपन की। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये शानदार बेहतरीन रचना। कौन सा? जी हाँ, ये रातें हैं इकरार की।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत, कैसी हसी बहारों की रात है, फिल्म आदमी से मोहम्मद रफी साहब की और तलत महमूद साहब की आवाज में शानदार रचना। संगीत से समाज सजाया है इस खूबसूरत

एक चांद जमीन पर है, माफ कीजिएगा, एक चांद मेरे साथ है। बाकी बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी साहब और तलत महमूद की आवाज में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत रोमांटिक गीत की ओर, तेरा तीर ओ बेपीर। जी हाँ दोस्तों, गीता दत्त की आवाज में शानदार रचना, आज की रात पिया नींद नहीं आएगी। जी हाँ, ये फिल्म एल्बम है, बहुत ही सुंदर है, आज की रात पिया। तो सुनवाते हैं एक खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, आज की रात भी आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही शानदार है, बेहद लाजवाब है। जी हाँ, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। जी हाँ, आधी रात तो हो चली है, 2 बजने को है और बस ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद ठीक 2 बजे समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उससे पहले एक शानदार बेहतरीन रचना आपके लिए हम सुनवा रहे हैं। या दोस्तों, ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा है और हमेशा हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम गीत तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या कहें, हमारे साथी हैं और साथ भी दे रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। हमारे कई साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं लाइव। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। सुनवाते हैं एक और आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहतरीन शानदार रचना।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत कार्यक्रम गीत सुनहरे, आज आपके साथ था मैं आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, 2 बजने को है और कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमरीका

जी दोस्तों, वाकई ये बहुत ही सुंदर गीत, बेहद खूबसूरत रचना। जी हाँ, ये कौन चित्रकार है? बूंद जो बन गई मोती, मुकेश साहब की आवाज में सुंदर रचना। जी दोस्तों, ये वाकई बहुत ही प्यारा गीत है और गीतकार है इस शानदार गीत के भरत व्यास, और संगीत से सजाया है इस बेहतरीन रचना को सतीश भाटिया ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, रोमांटिक गीत है और वाकई, और हमारे साथी सुनना चाहते हैं ये सुंदर बेहतरीन गीत, खासतौर से जितेंद्र को ज्यादा पसंद करती हैं और फैन हैं जितेंद्र की। अरे मैंने तुझको चाहा, यह तेरी मेहरबानी, ढोल सजना ते ढोल जानी। जी हाँ, फिल्म धर्मवीर से, धर्मवीर फिल्म 1977 प्रदर्शित फिल्म रही है और मोहम्मद रफी साहब की सुंदर खूबसूरत आवाज में ये शानदार रचना है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर लव सॉन्ग्स।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। हाँ हो जाए कभी कभी जिंदगी में, तू मैं महलों का राजा तू महलों की रानी, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा। जी हाँ, जाने क्यों जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, हमें नहीं पता बिल्कुल भी जलते हैं या नहीं जलते हैं, लेकिन हाँ जलने वाले को जलना रहने दो और गीत संगीत का आनंद लेते रहिए। और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, तो चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत हमारे साथी की पसंद पर। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना फिल्म आशा से, जाने हम सड़क के लोगों से। मोहम्मद रफी साहब की आवाज एक बार फिर से गूंज रही है। आशा फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

दोस्त, होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी, लेकिन हाँ, सब कुछ बुलाकर यदि आगे बढ़ने का प्रयास करें तो और भी अच्छा होता है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, जलने वाले बिल्कुल जलेंगे, तो जलने की आवश्यकता नहीं है, है ना। एक बहुत ही सुंदर गीत है, हम बंजारों की बात क्या पूछें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है और फिल्म धर्म वीर से सुंदर एक और रचना आ रही है, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में शानदार रचना। फिल्म धर्मवीर 1977 रिलीज फिल्म रही है और वाकई बहुत ही प्यारा गीत भी है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत पहरलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर साथियों। समय हुआ है 2:35 और अब एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर। ये गोटेदार लहंगा निकलू मैं ढार के, फिल्म धर्म कांटा से ये सुंदर रचना आ रही है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। सुंदर गीत, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत नौशाद का। तो वही सुनते हैं एक और शानदार रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, इंस्टेंट नॉनस्टॉप म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति, 3 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है अर्चना कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 22 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। आओ योग करें कार्यक्रम का समय 5:10 का रहेगा। देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं 5:20 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुन सकते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम। 6 बजे हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। छ 6:10 का समय कार्यक्रम वंदना का है। हम आपको बता दें 6:30 पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आप 6:30 पर सुन सकते हैं। 6:40 का समय चिंतन का रहेगा, जिसमें योग और आधुनिक जीवन विषय पर आप विचार चर्चा सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

अकाल पुरख अपने पंत दें सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दें जिन्हां तों पंत नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन।

ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ।

사랑 사적한당 시링하람 만다라 사헤브지 비켄 딴난 딴나 사드그루 시리그루 가람타 사헤브지요 마하라즈 아버지 대하주란 샤벳 짱키 아난드 사헤브지 기 아르다스 चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जिया जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद पेटा कीता गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत नूं अपने दरां करां सिखी सिदका पुरसां नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूरां कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित्त आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ